मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज शुक्रवार है, सत संवत 1948 के आषाढ़ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 और 55 सेकंड हुए हैं। अब आज की हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा में मैं आपके साथ हूँ, आपके रेडियो मित्र रश्मि राहुल। सभी श्रोताओं को रश्मि राहुल का नमस्कार।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। कुछ ही देर में हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र के से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान

0: जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं सामूहिक स्वर में देशगान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, जिसके अंतर्गत आज अभी आपने सुना समूह स्वर में देशगान। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं नरेंद्र चंचल व साथियों के स्वरों में कार्यक्रम का ये पहला भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम और नरेंद्र चंचल का साथियों के स्वर में ये बहुत ही प्यारा सा भजन जिसने हमें कर दिया है भक्ति में सराबोर। तो आइए भक्ति संगीत में कार्यक्रम में अब जोड़ते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में गाया हुआ ये कार्यक्रम का अगला भजन।

श्रोताओं, भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल की मधुर आवाज़ में मन को शांत करने वाला ये प्यारा सा भजन। तो आइए कार्यक्रम को हम इसी तरह आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं अनूप जलोटा की मधुर आवाज़ में कार्यक्रम में गाया हुआ ये अगला भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनूप जलोटा की आवाज़ में ये प्यारा सा भजन। तो आइए, कार्यक्रम में भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में कार्यक्रम का ये अंतिम भजन।

श्रोताओं, इसी अंतिम भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। कार्यक्रम चिंतन में आज सुनिए नकल ना करें, इस विषय पर तुलिका शर्मा के विचार।

0: एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वो अपना पेट भरने के लिए गांव-गांव जाकर टोपियां बेचा करता था। एक सुबह वो अपनी टोकरी में रंग बिरंगी टोपियां लेकर निकला। एक गांव में टोपियां बेचने के बाद जब वो दूसरे गांव की तरफ जा रहा था तो चलते चलते बहुत थक गया था। रास्ते में गुजरते समय एक जंगल भी पड़ता था। जंगल में उसे एक खूब घना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा क्यों ना पेड़ के नीचे बैठकर कुछ आराम कर लें। व्यापारी बहुत थका हुआ था। टोपियों से भरी टोकरी को नीचे रख दिया उसने और फिर सर से टोपी को उतार कर नीचे रखा, गले से गमछे को उतार कर जमीन पर बिछा दिया और उस पर लेट गया। और उसके बाद व्यापारी गहरी नींद सो गया। जिस पेड़ के नीचे व्यापारी सो रहा था उसी पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। व्यापारी के सोते ही बंदरों ने उसकी टोकरी पर हमला बोल दिया। बंदरों ने रंग बिरंगी टोपियों को लेकर खेलना शुरू कर दिया। बंदरों की उछल कूद से वहां शोर हुआ तो व्यापारी की नींद खुल गई। उसकी टोकरी से सारी टोपियां गायब हो चुकी थीं। अब व्यापारी को एक तरकीब सूझी जिससे वो अपनी टोपियां वापस ले सकता था। अब उसने जिस टोपी को सोते वक्त सिर के नीचे रखा था उसे सिर पर पहन लिया। बंदरों ने भी वैसा ही किया, झट से हाथ में पकड़ी हुई टोपियां सर पर पहन ली। अब व्यापारी ने सर पर पहनी टोपी को जमीन पर फेंक दिया। बंदरों ने भी व्यापारी की नकल उतारते हुए अपने सर पर पहनी हुई टोपियां जमीन पर फेंक दी और इस तरह से व्यापारी की ये तरकीब काम कर गई। हालांकि ये कहानी जिस संदर्भ में हमें सुनाई जाती थी वो सूझबूझ का संदर्भ था कि कितनी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों न हो हमें अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए। लेकिन यहाँ जिस संदर्भ में हम आपको ये कहानी सुना रहे हैं वो नकल का संदर्भ है। आपने देखा होगा लोग होड़ करने के लिए दूसरों की नकल करते हैं, लेकिन क्या नकल कर लेने से आप जिस व्यक्ति की नकल कर रहे हैं उसके जैसे बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए यदि हमको किसी का अनुकरण करना है तो उसके जैसा दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए बल्कि उसके जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। और बनने की प्रक्रिया में हमेशा संघर्ष साथ में होता है। बिना संघर्ष के हम अपने व्यक्तित्व को संवार नहीं सकते, बना नहीं सकते। विख्यात लेखक जैक कैनफील्ड कहते हैं कि कोई हमसे हमारा धन, हमारी संपत्ति, हमारी सामाजिक स्थिति, जिस भी वरीयता को हमने प्राप्त किया है, हासिल किया है, सब कुछ छीन सकता है, लेकिन इन सब को हासिल करने की प्रक्रिया में हम जो बन गए हैं ना, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। जो बन गए हैं से उनका आशय था कि जो विशेषज्ञता, जो महारत हमने हासिल कर ली है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। यानी हम अपनी अर्जित वस्तुएं खो सकते हैं जो कि समय के साथ खो भी जाती हैं, लेकिन अपने हुनर को नहीं खो सकते जिसके बूते हमने ये वस्तुएं हासिल की थी। जैक कैनफील्ड ने अपने एक दोस्त का उल्लेख किया था। उनके वो दोस्त भी लेखक थे। उन्होंने 1991 में ऑकलैंड में हुए भीषण अग्निकांड में अपना घर गंवा दिया था और उस घर में लेखक का सामान ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा पुस्तक संग्रह भी नष्ट हो गया था, जिसमें हजारों की तादाद में किताबें थीं, साथ ही उनकी अपनी लिखी हुई किताबों की प्रतियां भी थीं। जाहिर है ये एक बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन उन लेखक ने जैक से कहा था, हाँ मैं दुखी हूँ, मेरा सारा संकलन राख हो गया, लेकिन मैंने महसूस किया है कि मेरे अंदर लेखक बनने के दौरान जो खूबियाँ विकसित हुई हैं, जो कुछ मैंने सीखा है, अपनी किताबों को लिखते हुए जो कुछ मैंने सीखा, अपनी ज़िंदगी में जो कुछ पढ़ा और समझा, आग उसे नहीं छू पाई। जो खोया है वो फिर से पाया जा सकता है, किताबें दोबारा आ जाएंगी जीवन में, लेकिन इस आग ने मेरी सोच को एक नया आयाम दिया है। कितनी सुंदर बात जैक के उस लेखक मित्र ने कही थी, जब नदी मोड़ लेती है तो उसका वेग बढ़ता है। वही सूरत इंसान की ज़िंदगी में भी होती है। जब बाधाएं आती हैं, हमारे रास्ते बदलते हैं, तो हमारी आगे बढ़ने की गति भी बढ़ जाती है। यूं भी हम अपने जीवन में नए नए लक्ष्य बनाकर उन्हें हासिल करने में रोज़ नया कुछ सीखते हैं और जो समझ हमारे अंदर डेवलप होती है वो हमेशा हमारे साथ रहती है, बल्कि हमारे संघर्षों से वो और ज़्यादा निखरती है। सीखते रहने के क्षेत्रों की कोई कमी नहीं है और ना ही हमारे हौसलों में कोई कमी होनी चाहिए। इसलिए चुनौतियों से कभी मत घबराइए। हाँ, यदि घबराना है तो घबराइए इस बात से कि आपकी ये सीखने की ललक और संघर्ष की क्षमता ना ख़त्म हो जाए। अपने जुनून के कम होने से डरिएगा। यदि संघर्ष करने का मादा हमेशा अपने पास रखेंगे तो किसी चीज़ का आपको कभी भी डर नहीं लगेगा और आपके हुनर का खजाना हमेशा बढ़ता जाएगा।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, जिसके अंतर्गत आज आपने सुना नकल ना करें, और इस विषय पर अपने विचार सुना रही थी तुलिका शर्मा। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ।

भगवान शंकर के विवाह का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने इन शब्दों में किया है। जैसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। शिव ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, देवताओं ने हर्ष ध्वनि की, श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और सर्वत्र आनंद छा गया। विदा के समय जामाता को अनेक उपहार देकर हिमाचल ने हाथ जोड़े, हे शिव, आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। हिमाचल पत्नी मैना ने विनती की, उमा मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, आप इसके सभी अपराध क्षमा कीजिएगा। और बेटी के लिए मां के वचन थे, हे पार्वती, तुम सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। तत्पश्चात शिव पार्वती कैलाश पर्वत के लिए विदा हुए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के द्वारा आकाशवाणी ग्वालियर से ये कार्यक्रम। तो लीजिए, प्रस्तुत है कृषि चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे खरीफ दलहनी फसलों की उन्नत प्रजातियों एवं उनकी बुवाइयों के बारे में। तो आइए, जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सुधीर सिंह भदौरिया।
1: किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, उड़द की किस्मों का सवाल है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे T9। यह प्रजाति 70 से 75 दिन में पककर तैयार हो जाती है और 10 से 11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। इसके अलावा पंत U30, यह प्रजाति 70 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज लगभग 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके साथ ही खरगोन 3, यह भी प्रजाति 85 से 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यह इसका पौधा थोड़ा फैलने वाला होता है। इसके साथ ही PDU-1, जिसे किसान भाई बसंत बहार नाम से जानते हैं, और 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज लगभग इससे प्राप्त हो जाती है। इसके साथ किसान भाई जवाहर उड़द 2 बो सकते हैं, जिसकी की पकने की अवधि लगभग 70 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 10 से 11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। इसके अलावा किसान भाई जवाहर उड़द 3 की बुवाई कर सकते हैं, यह 70 से 75 दिन में तैयार हो जाती है और 5 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा TPU-4 नाम की प्रजाति भी बो सकते हैं, यह भी 70 से 75 दिन में तैयार हो जाती है। कि मूंग भी खरीफ की आप जानते ही हैं काफ़ी महत्वपूर्ण फसल है। मूंग की किस्मों में प्रमुख किस्म है ट्रॉम्बे जवाहर मूंग 3, जिसे हम TJM-3 से नाम से भी जानते हैं। इसके पकने की अवधि 60 से 70 दिन होती है। इसकी उपज 10 से 12 क्विंटल के लगभग प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। इसके साथ ही जो दूसरी प्रजाति है मूंग की, वह है जवाहर मूंग 721। किसान भाइयों, यह प्रजाति 70 से 75 दिन में लगभग तैयार हो जाती है और काफ़ी अच्छी उपज, जैसे कि 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। मूंग की एक प्रमुख दूसरी किस्म है किसान भाइयों K-851। यह ग्रीष्म ऋतु में 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है और खरीफ में 70 से 80 दिनों में। इसकी उपज खरीफ के मौसम में 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त हो जाती है। मूंग की एक दूसरी किस्म है HUM-1, जिसे हम 1 के नाम से जानते हैं। यह 65 से 70 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और 8 से 9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त होती है। किसान भाइयों, PDM-11, जो 65 से 75 दिन में पककर तैयार हो जाती है और 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो जाती है। इसके साथ ही मूंग की एक और किस्म है जिसे पूसा विशाल कहते हैं, या 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है और इससे उपज काफ़ी अच्छी 12 से 14 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। किसान भाइयों, मुख्य रूप से यह बताना चाहूँगा कि आप जो भी बीज लें, एक तो उन्नत किस्म का बीज लें प्रजाति का, और उसको आप बीज परीक्षण स्वयं ही कर लें। इसके लिए आप क्या करें, 100 दानों को भिगो कर रख लें। 24 घंटे भिगोने के बाद आप एक कपड़े में लपेट कर उनको 2-3 दिन तक रखें। उसके बाद आप अंकुरण क्षमता उनकी जांच लें। उससे क्या फ़ायदा होगा आपको कि अगर 90 से ज़्यादा बीज आपको अंकुरित मिलें, तो फिर आप उस प्रजाति को बीज उसी हिसाब से बो सकते हैं। अगर 90 से कम मिलते हैं, तो आप थोड़ा ज़्यादा बीज की मात्रा का उपयोग करें। दूसरा, बीज का उपचार भी आप ज़रूर करें, जिसमें आप थायरम 2 ग्राम लें, बाविस्टीन 1 ग्राम, ये दोनों मिलाकर 3 ग्राम मात्रा हो जाती है। किसान भाइयों, इस 3 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज में मिलाकर आप उपचारित कर लें, जिससे कि आपको बीज फसलों को बीमारियों से बचाव में काफ़ी मदद मिलेगी। पहले आप फफूंदनाशक, ये जो बताया गया आपको, थायरम और कार्बेंडाजीम का उपयोग कर, इसके बाद आप उपचारित जब ये बीज हो जाए, तो राइजोबियम कल्चर से 10 ग्राम राइजोबियम कल्चर प्रति किलोग्राम बीज के मात्रा से आप उसको उपचारित करें। इससे क्या फ़ायदा होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, यह नत्रजन वातावरण से शोषित कर फसल को उपलब्ध कराएगा, जिससे नत्रजन की पूर्ति होगी। दलहनी फसलों की यह विशेष विशेषता है।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि

0: चर्चा सामयिक चर्चा के अंतर्गत आज आपने सुना खरीफ दलहनों की उन्नत प्रजातियां एवं बुवाई और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर सुधीर सिंह भदौरिया। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम दर्पण।
1: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: सदियों बाद पैदा होता है एक महापुरुष और हमें दिखा जाता है रोशनी की अनगिनत राहें। आइए हम सब चलें उस मार्ग पर जो दिखाया महात्मा गांधी ने।
1: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
2: वार्ता है श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तस्य जापानस्य समकक्षीया साने ताकाइची इत्येषा पाकिस्तानात् सीमापारे आतंकवादं समेत्य सर्वेषु रूपेषु अभिव्यक्तिषु आतंकवादस्य हिंसक उग्रवादस्य च निन्दां कृतवन्तौ। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य संयुक्त वक्तव्ये द्वौ नेतारौ गतवर्षे अप्रैल मासस्य 22 दिनांके जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातम् आतंक्याक्रमणं कट्वा लोचितवन्तौ। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ हिन्द प्रशांत क्षेत्रस्य उभयोः देशयोः मध्ये सहयोगं विस्तारयितुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ।
3: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
2: भारत जापान विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वस्य आधारस्तंभेषु अन्यतमार्थिक सुरक्षा प्रधानतायाः विषये भारत जापान देशौ परस्परं प्रतिबद्धतां पुनः दृढ़ीकृतवन्तौ। आर्थिक सुरक्षा सहकार विषये भारत जापान संयुक्त घोषणापत्रे अवदतां यत् आर्थिक सुरक्षा सहभागित्वं परस्पर विश्वासस्य सह

0: सहभागी मूल्यानां संबद्ध हितानां च आधारेण वर्तते। उभयोः पक्षयोः समृद्धिः, सुरक्षा, आर्थिक भविष्यञ्च सुदृढतया परस्परं सम्बद्धमस्ति इति मान्यता अस्ति। अद्यतनीकृतस्य मुक्तस्य च इण्डो पैसिफिक इत्यस्य तथा च म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन्स महासागर इति उपक्रमस्य समन्वयः उभयोः पक्षयोः कृते आर्थिक सुरक्षा सहकारं वर्धयितुम् आवश्यकं प्रोत्साहनं प्रददाति इति घोषिता अस्ति। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला अद्य कोलकातायां पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नवनिर्वाचित सदस्येभ्यः द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं नवनिर्वाचितेभ्यः सदस्येभ्यः समिति व्यवस्था, वित्तीय निरीक्षणं, संसदीय विशेषाधिकाराः, विधायकेषु उदयोन्मुख आंकिकीयोपक्रमाः इत्यादीनां संसदीय विधायी कार्याणां विविध पक्षेभ्यः परिचय प्रदानं वर्तते। पंचायती राज मंत्रालयः षोडश वित्तायोगस्य अनुशंसानां विषये विचारार्थम् अद्य नवदिल्ल्यां राज्यस्य पंचायती राज मंत्रिणां एकां राष्ट्रिय कार्यशालाम् आयोजयति। कार्यशालायाः अध्यक्षतां केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंहः, केन्द्रीय राज्य मंत्रिणः प्रोफेसर एस पी सिंह बघेलस्य उपस्थितौ करिष्यति। कार्यशालावधौ चर्चा वित्त मंत्रालयस्य व्यय विभाग द्वारा प्रख्यापितस्य षोडश वित्तायोग ग्रामीण स्थानीय निकायानुदानस्य कार्यान्वयनाय परिचालन दिग्निर्देशेषु केन्द्रता भविष्यति। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा अद्य जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम बालटाल मार्गयोः आरभ्यते। सप्तपञ्चाशत् दिवसीयायां तीर्थयात्रायां सम्पूर्णे भारतदेशात् लक्षोपलक्षाः भक्ताः अमरनाथ गुहातीर्थं प्रति पवित्रयात्रां करिष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। तीर्थयात्रिणः भगवतः शिवस्य आशीर्वादं प्राप्तुं, प्राकृतिकरूपेण निर्मितं हिमशिवलिङ्गं द्रष्टुं च प्रायः 88,000-3,000 मीटर परिमितेषु ऊर्ध्वतायां स्थित पवित्र अमरनाथ गुहायां गच्छन्ति। आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशति विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड दलेन साउथ अफ्रीका दलं 40 धावनांकः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद एक संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवम्बर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का भी उल्लेख किया। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि इस संबंध में ममता बनर्जी और पार्टी नेता

0: ऋणब्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे गए हैं। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांधरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज अंतिम 32 के मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:05 हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले जानकारी हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रमों के बारे में। तो अब से कुछ ही देर में यानी 7:20 पर आप सुनेंगे गांधी चर्चा। फिल्म संगीत का आप आनंद ले पाएंगे 7:30 पर। 8:30 पर होगा सुगम संगीत, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे कुमार सानू के द्वारा गाए हुए कुछ गीत। सूचना और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर आप सुन सकेंगे सुबह 9:00। 9:30 पर होगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आज आप सुन पाएंगे अजीत सिंह पेंटल के द्वारा राग बिलास खानी तोड़ी और तबले पर संगत होगी भोगी राम रतौनिया की। जिले की चिट्ठी आप सुन पाएंगे सुबह 10:00, जो कि हमारे भोपाल केंद्र द्वारा हम आपको सुनवाएंगे। व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 10:05 पर। इसके अतिरिक्त फिल्म संगीत का आप आनंद ले पाएंगे दोपहर 2:30 पर। साथ ही आपको बता दें कि महिला कार्यक्रम आज आप सुन सकेंगे 1:00। 1:30 पर होगा लोक संगीत का कार्यक्रम। 1:45 पर होगा सुगम संगीत का कार्यक्रम। यह तीनों ही कार्यक्रम हमारे छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होंगे और साथ ही यह कार्यक्रम आप सुन सकेंगे हमारे मध्य प्रदेश केंद्र के द्वारा। श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे प्रथम सभा के कार्यक्रमों के बारे में। तो आइए अब जानकारी ले लेते हैं हमारी द्वितीय सभा के कार्यक्रमों के बारे में।

श्रोताओं, शाम 5:02 पर आप सुन सकेंगे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग आप सुन सकेंगे शाम 6:00। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकेंगे 6:30 पर। 7:20 पर होगा ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल, जिसके अंतर्गत चर्चा के विषय होंगे अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस और प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। साथ ही इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे काव्य पाठ, पशुओं में मिल्क फीवर और जानकारी देंगे डॉक्टर रूपेश कुमार जैन। 8:15 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। 9:30 पर आप सुन सकेंगे खेल जगत के बारे में। 9:45 पर होगा आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। साथ ही बता दें कि 10:00 आप सुन सकेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश और 10:30 पर होगा कार्यक्रम राग रजनी। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारी द्वितीय सभा के कार्यक्रमों के बारे में।

श्रोताओं, इसी समस्त जानकारी के साथ ही कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को है। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार हमारे भोपाल केंद्र द्वारा आप सुन सकेंगे। कृपया समाचारों के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में कहा, भारत विश्व की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था। स्कूल चले अभियान के दौरान ही संदीप ने विद्यालय भवनों का लोकार्पण और स्कूलों का युक्तियुक्तकरण होगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटल मार्गों से शुरू। और प्रदेश में मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, आज हरदा नर्मदापुरम समेत कई जिलों में तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषता और निवेश भारत की गति और व्यापकता के साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने आज साझेदारी को और भी गतिशील तथा प्रगाढ़ बनाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा,
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: वहीं जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा है कि सहयोग के कई क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इस अवसर पर दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के चौथे वाहन निर्माण केंद्र का उद्घाटन किया। प्रदेश में इन दिनों स्कूल चले अभियान चल रहा है। 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान अधिकाधिक संदीप ने विद्यालय भवनों को लोकार्पण और स्कूलों का युक्तियुक्तकरण कराया जाए ताकि विद्यार्थियों को इसी सत्र में अधिकतम लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल अलग अलग विभागों की हुई समीक्षा बैठक में इस पर जोर दिया। डॉ. यादव ने कहा कि संदीपनी विद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा उत्कृष्ट नवाचार है। स्कूल शिक्षा विभाग इसकी राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग के लिए कार्ययोजना तैयार करे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के सभी धार्मिक महत्व के तीर्थ स्थलों में धर्मशाला, सराय, अन्य क्षेत्र, प्याऊ, पेयजल टंकी, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माण के लिए धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। ये प्रोत्साहन रजिस्ट्री शुल्क में छूट, अनुदान या अन्य रियायत स्वरूप में किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल मंत्रालय में विभिन्न प्रासंगिक विषयों पर विभागों की प्रगति और आगामी कार्ययोजना के संबंध में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल की भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल को शासन द्वारा दी गई जमीन की भेल के लिए वर्तमान में अनुपयोगी भूमि उनसे वापस लेने के प्रयास किए जाएं। प्रदेश के 18 जिलों में नर्मदा जयंती कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में नर्मदा समग्र की बैठक में अपर मुख्य सचिव ने ये जानकारी देते हुए कहा कि मां नर्मदा की भव्य आरती, नृत्य गायन, प्रदर्शनी, प्रतियोगिता और जागरूकता कार्यक्रम भी किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अब नर्मदा समग्र की बैठक हर महीने होगी। मुख्यमंत्री ने नर्मदा परिक्रमा पथ पर मार्ग संकेतक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी घोषणा की कि अमरकंटक में जैव विविधता प्रबंधन संस्थान और नर्मदा कोष पोर्टल भी बनाया जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देश पर चर्चा होगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू और कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो चुकी है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। श्रद्धालु लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालटल स्थित दोहरे बेस कैंप पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की घोषणा कर दी है। जारी कार्यक्रम के अनुसार 6 जुलाई को गजट नोटिफिकेशन होकर नामांकन भरने की आखिरी तारीख 13 जुलाई होगी। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की छटनी और 16 जुलाई तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को मतगणना की जाएगी।

प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। भोपाल समेत 11 जिलों में कल से रूक रूक कर तेज बारिश हुई। सतना और झाबुआ में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। सतना में बालिका स्कूल परिसर में पेड़ गिरने से 2 युवतियां घायल हो गई हैं। दमोह में लगातार बारिश होने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। इंदौर में भी रात से कई क्षेत्रों में बारिश जारी है। मौसम विभाग ने आज हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, छिंदवाड़ा, पांडुना, बालाघाट समेत 19 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश की भी आशंका है। इंग्लैंड आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन के केनिंगटन ओवल में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। पहली बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने निर्धारित ओवर में 5 विकेट पर 169 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 129 रन ही बना सका। रविवार को लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलस स्टेडियम में कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले के बमन गांव आखई में कल विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबी जी रामजी योजना का जिला स्तरीय शुभारंभ किया गया। आगर मालवा जिला पुलिस को ई विवेचना प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिले के सभी थाना क्षेत्रों के 153 विवेचकों को टैबलेट दिए गए। अशोकनगर जिले में सभी शासकीय विभाग और संस्थाएं अपने अपने स्तर पर नशा मुक्ति से संबंधित जागरूकता अभियान और गतिविधियां संचालित करेंगी। ये निर्देश कर कलेक्टर ने एक बैठक में दिए। भोपाल ने नगर निगम और फायर विभाग ने कल एमपी नगर स्थित 2 कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की। धार जिले में तेजी से विकसित हो रहे देश के महत्वाकांक्षी पीएम मित्रा पार्क का इंदौर संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने कल दौरा किया। इंदौर संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने कल झाबुआ के विभिन्न गांवों का सघन भ्रमण कर कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्थाओं का अवलोकन भी किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20 और 30 सेकंड हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है गांधी चर्चा।

गांधी चर्चा में आज सुनते हैं महात्मा गांधी द्वारा 13 सितंबर 1931 को अमेरिका के लिए प्रसारित वार्ता। ये वार्ता अगले दिन यानी 14 सितंबर 1931 को न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित भी हुई। ये प्रसारण कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सर्विस पर किंग्सले हॉल से किया गया था। ये एक अलिखित भाषण था जिसे रेडियो सुनने वाले लाखों लोगों ने सुना था। आइए आज सुनते हैं अमेरिका के लिए प्रसारित बापू की इस वार्ता का दूसरा भाग। दुनिया के तमाम बड़े राष्ट्रों को

भारत की स्वाधीनता के इस महान संघर्ष में भारत के साथ हार्दिक सहयोग करने के लिए मैं निसंकोच आमंत्रित करता हूँ। करोड़ों लोग अपने राष्ट्र को उचित गरिमा और सम्मान का पद दिलाने के लिए प्रतिशोध स्वरूप अपने हाथ उठाए बिना कष्ट सहन कर रहे हैं। ये दृश्य वास्तव में देखने और अपनी स्मृति में प्यार से संजो रखने लायक होगा। मैंने कष्ट सहन को आत्मशुद्धि की प्रक्रिया कहा है। मेरा यह निश्चित मत है कि यदि कोई अपनी स्वतंत्रता गंवाता है तो अपनी कमजोरी के कारण ही। हम में क्या दोष है ये मैं जानता हूँ और उन पर मेरा मन दुखी होता है। भारत में दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों के लोग बसते हैं और बड़ी लज्जा के साथ हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि हम आपस में ही बंटे हुए हैं। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की जान के ग्राहक बने हुए हैं। ये और भी लज्जा का विषय है कि हम हिंदू लोग अपने कई करोड़ भाइयों को इतना पतित मानते हैं कि उनका स्पर्श भी नहीं करना चाहते। मैं तथाकथित अस्पृश्यों की बात कह रहा हूँ। जो राष्ट्र स्वतंत्र होने के लिए प्रयत्नशील हो उसके लिए ये छोटी कमजोरियाँ नहीं हैं। आप देखेंगे कि आत्मशुद्धि के बल पर किए जा रहे इस संघर्ष में अस्पृश्यता के अभिशाप के निवारण और भारत के विभिन्न धर्मावलंबी तमाम वर्गों और समुदायों के बीच एकता की स्थापना को हमने अपने ध्येय का एक प्रमुख अंग बनाया है। इसी दृष्टि से हम अपने देश से मद्यपान के अभिशाप को भी दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि शराब और मादक द्रव्यों का सेवन हमारे यहाँ बहुत कम लोग, मुख्यतः कारखानों में काम करने वाले मजदूर और ऐसे ही कुछ अन्य लोग करते हैं। हमारे लिए ये भी सौभाग्य का विषय है कि हमारे देश में शराब और मादक द्रव्यों के सेवन को सचमुच एक अभिशाप माना जाता है। फिर भी इसमें संदेह नहीं कि अपने समाज से इस बुराई को दूर करने की हमारी ये लड़ाई बहुत कठिन है। मुझे ये कहते हुए दुख, सचमुच बहुत दुख हो रहा है कि अंग्रेज सरकार ने इस बुराई को राजस्व का एक प्रमुख साधन बना लिया है। इससे प्रतिवर्ष लगभग 25 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं। लेकिन मुझे ये कहते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि भारत की स्त्रियों ने अपने आप को अवसर के उपयुक्त सिद्ध किया है। वे शांतिपूर्ण तरीके से इस बुराई को दूर करने का प्रयत्न कर रही हैं। उनका तरीका ये है कि वे शराबी लोगों से शराब छोड़ देने के लिए पूरी उत्कटता से अनुनय विनय करती हैं और इसी तरह वे शराब विक्रेताओं से भी शराब न बेचने का अनुरोध करती हैं। जो लोग इन दो कुटेवों के शिकार हैं उन पर इन सब का काफ़ी असर हुआ है। काश कि मैं अभी ये कह पाता कि कम से कम इस एक काम में हमें शासकों का हार्दिक सहयोग मिल रहा है। सरकार कोई कानून न भी बनाती और सिर्फ हमें अपना सहयोग देती तो मैं कहने का साहस करता हूँ कि हमने इस सुधार को संपन्न कर दिखाया होता और अपने इस दुखी देश से शराब और मादक द्रव्यों का नामो निशान मिटा दिया होता। गांधी चर्चा में अभी आप सुन रहे थे 13 सितंबर 1931 को गांधी जी की अमेरिका के लिए प्रसारित वार्ता का दूसरा भाग। गांधी चर्चा का समापन करते हैं इस भक्ति गीत से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा। प्रस्तुति थी तुलिका शर्मा की। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं ये पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म राजकुमार से। गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और गीत में आवाज़ है लता मंगेशकर की। तो आइए आनंद लेते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में इस प्यारे से गीत का।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
3: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
4: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड एचआईवी टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एचआईवी एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
3: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस्ड ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
5: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
6: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
7: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए, सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। इस गीत को हमने लिया है फिल्म आए दिन बहार के, इस फिल्म से, और गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आनंद लीजिए लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में इस गीत का।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: अल्प विराम के बाद स्वागत करते हैं श्रोताओं फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में। तो आइए आप सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म देवता से लिया हुआ ये गीत। गीत को लिखा है गुलजार ने, संगीतबद्ध किया है R.D. वर्मन ने। तो आनंद लीजिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में इस प्यारे से गीत का।

एल्बम के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में कार्यक्रम का ये अगला गीत। इसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है SD बर्मन ने। और साथ ही बता दें इस गीत को हमने लिया है फिल्म बम्बई का बाबू। इस फिल्म से तो आनंद लीजिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में इस गीत का।

0: सड़क पर दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। जेब्रा क्रॉसिंग पर अपने वाहन की गति धीमी रखें। हमेशा सड़क के बाईं ओर चलें क्योंकि दाहिनी ओर से वाहन ओवरटेक करते हैं। कभी भी वाहन के बाईं ओर से ओवरटेक ना करें। सड़क के किनारे लगे साइन बोर्ड्स के निर्देशों का पालन करें। बेवजह हॉर्न ना बजाएं और बड़े वाहनों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: उपभोक्ताओं तक पहुँचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। तो फिल्म संगीत के इस प्यारे से कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं बहुत ही प्यारे प्यारे गीत। तो आइए कार्यक्रम में आप सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों के सुरों में फिल्म राम और श्याम, इस फिल्म से लिया हुआ ये गीत। गीतकार हैं शकील बदायूनी और संगीत है नौशाद का। तो आनंद लीजिए कार्यक्रम में, कार्यक्रम के इस अगले गीत का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। तो आइए कार्यक्रम का आप सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म बनारसी ठग। इस फिल्म से एक बार फिर आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया है इकबाल कुरैशी ने। तो आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम के इस अंतिम गीत का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना बनारसी ठग, इस फिल्म से लिया हुआ ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया था इकबाल कुरैशी ने। तो इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है, कुछ ही देर में समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा

मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्लाह हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के

0: अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मेक्सिको से होगा। अमरीका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और
2: न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR
0: मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान के प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है एआई से लिखे गए

0: फर्जी फैसले, जहरीली गैस जैसे। अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्य की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज़्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है ट्रैवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi strongly condemn terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations. Election Commission seeks responses from rival factions of Trinamool Congress regarding competing claims about parties' organizational elections and authorized signatories. Annual Sri Amarnath Yatra begins from both Pehalgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei to skip father Ali Khamenei's funeral over security fears. Spain beat Austria 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup. And BCCI announces schedule for India's 2-match test series against Sri Lanka to be played from the 15th to the 27th of next month. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th India-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pehalgam, Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council monitoring team report of 29 July 2025 mentioning the resistance front. We have a report.
3: Prime Minister Narendra Modi and Japanese Prime Minister Sanae Takaichi also strongly condemned the terrorist attack in Delhi on November last year. The two leaders called for the perpetrators, organizers and financiers of the reprehensible act to be brought to justice without delay. They also called for concerted action against all UN-listed terrorist groups and entities including Al-Qaeda, ISIS, Lashkar-e-Tayyaba, Jaish-e-Mohammed and their proxies. The two Prime Ministers stressed the need for resolute action to eliminate terrorist safe havens, dismantle terrorist financing networks and their nexus with transnational crime and halt the cross-border movement of terrorists. Towards the shared goal of a resilient and prosperous Indo-Pacific, the two Prime Ministers reiterated their commitment to advancing

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू के द्वारा गाए हुए कुछ गीत। तो आइए कार्यक्रम का सुनते हैं ये अंतिम गीत कुमार सानू की आवाज़ में।

संयुक्त आर्थिक मंच में कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश भारत की गति और व्यापकता के साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, स्कूल चले अभियान के दौरान अधिकाधिक संदीपनी विद्यालय भवनों का लोकार्पण और स्कूलों का युक्तियुक्तकरण कराया जाए ताकि विद्यार्थियों को इसी सत्र में अधिकतम लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी धार्मिक महत्व के तीर्थ स्थलों पर विकास के लिए धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। ये प्रोत्साहन रजिस्ट्री शुल्क में छूट, अनुदान और अन्य रियायत स्वरूप में दिया जा सकता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू और कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो चुकी है। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की घोषणा कर दी है। जारी कार्यक्रम के अनुसार नामांकन भरने की आखिरी तिथि 13 जुलाई है। और मौसम विभाग ने आज हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, बालाघाट समेत 19 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आइए पुनः रुक करते हैं कार्यक्रम सुरमई सवेरा की ओर। श्रोताओ, कहते हैं कि विश्वास वह शक्ति है।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजे हैं। तो आइए रुक करते हैं आज के कार्यक्रम सूचना और समाचारों पर आधारित इस कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर की ओर।

गुड मॉर्निंग वाले सुनने वाले सभी श्रोताओं को रश्मि राहुल का प्यार भरा नमस्कार। तो श्रोताओं, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि हम हर बार आते हैं आपके लिए कुछ नया लेकर। तो जैसा कि तापमान बदल रहा है, हम नहीं बदलेंगे, चिंता मत कीजिए, लेकिन जैसे कि तापमान दिन ब दिन बदलता जा रहा है और भी मौसम खुशनुमा होता जा रहा है, हम तो चाहते ही हैं कि इतनी गर्मी और परेशानी से आपको भी राहत मिले, क्योंकि मौसम ने करवट ले ली है तो तापमान में कुछ गिरावट भी देखी जा रही है। तो आइए बात करते हैं आज के मौसम और तापमान के बारे में। तो अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो है 32.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान होगा 27.4 डिग्री सेल्सियस। साथ ही बता दें कि इन 24 घंटे के अंदर में बादल छाने की और बारिश होने की भी संभावनाएँ लगातार लगी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार जाने तो अब तक मानसून जो है धीरे धीरे दस्तक भी दे चुका है, यानी कि कल की हल्की बारिश और मौसम के इस बदलाव ने यह दस्तक दे दी है कि अब लगातार आगे कुछ दो दिनों तक बारिश इस तरह से ही होने वाली है। तो अच्छा है कि इस मौसम में जिस तरह से हम खुश हो गए हैं, मौसम के बदलाव से हमारे शरीर को कुछ राहत मिली है, हमें कुछ खुशनुमा सा मौसम मिला है, तो क्यों ना इस मौसम का फ़ायदा उठाया जाए। यानी कि हम कहना चाहते हैं, हमारी अगली खबर के बारे में जानकारी आपको देना चाहते हैं कि हर बार जब बारिश होती है तो जितना हमें अंदर से अच्छा लगता है कि तापमान कम हो गया, हमारे लिए थोड़ी पसीने और परेशानी कम हो गई, उतना ही हमें ये भी अच्छा लगता है कि हमारे आसपास जो है ना हरे भरे पेड़ भी हो गए। तो क्यों ना हम इस बारे में और भी सोचें। यानी कि अक्सर करके जितनी हमें खुशी होती है उतनी थोड़ी सी परेशानी भी हमें उठानी पड़ती है। यानी कि कई बार हम देखते हैं कि आसपास पानी जमा हो जाता है, नालियां साफ़ नहीं होती हैं, या फिर चैम्बर इस तरह से खुले हुए होते हैं जो कि हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं, और जहाँ पर पानी भरता है वहाँ पर तो इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि आसपास लोगों को निकलने में परेशानी होती है, जगह का और ज़मीन का संतुलन नहीं पता होता है, तो अक्सर करके लोग गिर जाते हैं, टूट

लग जाती है। तो ऐसे में कुछ राहत शायद आपको ये खबर भी दे जाए। हर बार बरसात में शहर की सड़कों में बहने वाले पानी कई बार नई भूमिका निभाएगा, यानी कि अब जो पानी है उसे भरने से रोकने के लिए हार्वेस्टिंग सिस्टम का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का एक नई पहल को शुरू किया गया है। और यह न केवल एक जगह पर बल्कि कई जगहों पर, 60 से ज़्यादा अधिक जगहों पर यह काम चल रहा है। 125 से ज़्यादा अलग जगह पर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में सूचना दे दी गई है, वहाँ पर काम शुरू कर दिया गया है। बल्कि 100 फीट तक की ज़मीन की में बोरिंग की तरह से किया जाएगा और 15 जुलाई तक यह 70 से 75 जगह पर यह काम पूरा हो चुका होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जैसा कि हम देखते हैं कि गर्मियों में अक्सर करके पानी की परेशानी होती है हमें, यानी कि हम जितना पानी प्रयोग करते हैं कई बार प्रयोग भी नहीं करते, वेस्ट भी हो जाता है, तो फिर इसके बाद क्या होता है, कई जगहों पर पानी नहीं आता है। तो ऐसे में हम ये बरसात का जो पानी है इसे बड़े बड़े बोरवेल की तरह गड्ढों में एकत्र करने के लिए वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रयोग करेंगे, यानी कि वहाँ पर कुछ लेयर्स लगाए जाएंगे जिनके द्वारा पानी नीचे की तरफ जाएगा और ये पानी हमें बाद में हमें ही काम आने वाला है। अब वो कैसे, ये हम बता देते हैं। इस व्यवस्था को, बारिश का पानी सड़कों पर काम कहीं रुके ना, इसके लिए कई जगह पर ऐसी जगह को चुना गया है जहाँ पर पानी अक्सर करके रुकता है, परेशानी का सबब बनता है, ऐसी जगह को हार्वेस्टिंग के लिए चुना गया है। वर्क ऑर्डर मिलने के करीब 15 दिन के भीतर ही यह काम कई जगह पर पूरा हो चुका है, जैसे कि हरिशंकरपुरम में ब्लू वर्ल्ड पार्क, श्रीराम कॉलोनी सहित करीब 15 स्थानों पर सिस्टम तैयार किए गए हैं। कोशिश है कि 15 जुलाई से तक 70 से 75 जगहों पर यह काम पूरा किया जा चुका होगा। मानसून आने से पहले से लेकर मानसून रहने तक उन जगहों को सुनिश्चित किया जाएगा, यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है। और जहाँ तक हम आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात बताएं, तो वाटर हार्वेस्टिंग चैम्बर के भीतर गिट्टी, ईंट के टुकड़े, चारकोल और रेत की अलग अलग परतें डाली जाएंगी। इनसे होकर गुजरने के बाद पानी काफ़ी हद तक साफ हो जाएगा। ऊपर मजबूत जाली लगाई जाएगी जिससे कि ऐसा ना हो कि मिट्टी के धसकने से वहाँ गड्ढा हो जाए, या फिर आप जब कोई भी वाहन लेकर आते हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार की घटना या दुर्घटना का सामना आपको करना पड़े। तो इसके लिए इन लेयर्स को बहुत मजबूती से दबाकर उसके ऊपर एक जाली लगाई जाएगी जिससे कि वहाँ पर गड्ढा भी ना रहे और पानी भी, एक जहाँ पर पानी भरता है वहाँ से पानी का निकास सीधे उस गड्ढे में किया जा सके। और आस पास पेवर लगाया जाएगा जिससे कि ताकि पार्क या सार्वजनिक स्थानों की जगह की सुंदरता भी ख़राब ना हो और आपको पता हो कि इस जगह पर इस तरह की जो व्यवस्था है वो क्यों की गई है। तो ये है बारिश में आने वाले समय में आपके लिए बारिश की तैयारी, लेकिन हमने भी कुछ तैयारी की है इस गीत के साथ आपके लिए मनोरंजन की। तो आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम में इस प्यारे से गीत का, और हाँ बाहर आनंद लीजिए कुछ बारिश के लिए, कुछ इस गीत के लिए, इस गीत के साथ।

0: बिल्कुल, होती हुई बारिश बिल्कुल ऐसे ही महसूस कराती है जैसे इस गाने से हमारा दिल मन सराबोर हो गया है। वैसे ही हम भी चाहते हैं कि बारिश ऐसे ही झूम कर आए और ऐसे ही मस्ती भरे गीत हमारे मन में आए। बिल्कुल, और कार्यक्रम में जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, नगर निगम द्वारा जो पहल की गई है उसमें एक सूचना आपके लिए भी है। यानी कि नगर निगम द्वारा ये सूचना दी जा रही है कि यदि आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में कोई ऐसी जगह जहाँ पर चैम्बर खुले हुए हैं या पानी भरने की आशंका होती है और बार बार वहाँ से निकलने पर किसी प्रकार का कोई गड्ढा है जहाँ पर हादसे हो जाते हैं अक्सर करके, तो ऐसी जगह को अगर यदि आपने सुनिश्चित कर लिया है तो उससे राहत पाने के लिए आप नगर निगम को सूचना दे सकते हैं। अगर यदि वहाँ पर किसी प्रकार की ऐसी व्यवस्था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऐसी व्यवस्था की जा सकेगी तो वह ज़रूर करेगी। और बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, ऐसे ही प्यार से झूमते रहें, लेकिन इस कार्यक्रम में जब हम आगे बढ़ें तो एक छोटे से विराम के बाद फिर से हाजिर होते हैं। तो लीजिए कार्यक्रम में छोटा सा विराम और फिर हाजिर होते हैं।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: बिल्कुल, जानकार, जागरूकता और सतर्क रहना तो हमारी जिम्मेदारी है ही, पर आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। तो आइए कार्यक्रम में अब जोड़ते हैं ये अगली खबर। जैसे कि हम कह रहे हैं कि आगे बढ़ना ज़रूरी है तो हर क्षेत्र में ही आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो।

या आपकी सुख सुविधाओं की बात हो। बिल्कुल, जिस तरह से बैंक को हम बहुत आगे बढ़ते हुए तरक्की करते हुए यानी कि हमारे काम जो है बैंक में इजीली हो जाते हैं, और कई बार हमें ऐसा लगता है कि डाकघर में यानी कि पोस्ट ऑफिस में जाने पर हमें बहुत आराम से काम करना पड़ता है, वो खुले की चिक चिक, वो कभी काम ना हो पाना, स्टैम्प नहीं लग पाना, ऐसी चीज़ों से कई बार हमें परेशानियाँ से जूझना पड़ता है। तो ऐसी राहत के लिए अब डाकघर में भी आपको कैश नहीं देना होगा, यानी कि खुले की चिक चिक से थोड़ा सा बच जाएंगे आप। कैसे, यह हम जानकारी आपको देते हैं कि अब ग्वालियर के डाकघरों में पिछले कई समय से छुट्टे पैसे ना होना पर होने पर नकदी ना होने पर कई बार उपभोक्ताओं का काम जो है समय से नहीं हो पाता। तो ऐसे में उस रफ्तार, उसे सुस्त की जगह रफ्तार देने के लिए सभी जो है डाकघर विभाग है उन सभी में एक QR कोड या UPI के थ्रू अब पेमेंट किया जा सकता है। यानी कि आप यदि पैसे जमा करने आए हैं या निकालने आए हैं, किसी स्टैम्प को लेने आए हैं या फिर आप स्पीड पोस्ट करने आए हैं, तो आपको एक स्कैनर दिया जाएगा, वहां पर आप QR कोड को सिलेक्ट करके और जितने भी पैसे उस समय लग रहे हैं या फिर आपको सेंड करने हैं तो आप उसमें ईजीली कर सकते हैं। यह केवल आपको ये नहीं दिखाता कि आपको सुविधा मिल रही है, बल्कि ये भी बताता है कि डाकघर में भी इस तरह की सुविधाओं से उपभोक्ताओं को आसानी से काम करने को मिलता है, जल्दी काम हो जाता है, समय की बचत होती है। तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि ऐसे ही हमारा जो है इंडिया जो है कैशलेस बनता रहे और आगे बढ़ता रहे, जैसे कि हम भी इस कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब कार्यक्रम में जोड़ते हैं ये अगली खबर, जैसा कि हम कह रहे हैं कि रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है और बिल्कुल भी अपनी परेशानियों को अपने सफलता के आगे नहीं आने देना है। तो ऐसी ही पहल की है नियमित परीक्षा में जो लोग असफल रहे हैं विद्यार्थी, उन्हें अब दूसरा मौका दिया जा रहा है, यानी कि उनके लिए है कार्यक्रम रुक जाना नहीं, परीक्षा आज से शुरू हो रही है। जिले के 13 केंद्र पर 4200 विद्यार्थी इसमें शामिल हो सकेंगे और उन्हें कोई असुविधा ना हो इसके लिए उन पर पूरी तरीके से जो है केंद्र पर कड़े इंतजाम और अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। यह योजना जो है मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा चलाई जाती है। इसका उद्देश्य ऐसा होता है कि विद्यार्थियों को का जो 10th या 12th का जो साल होता है वो बचाया जाता है। इसमें जो मुख्य बोर्ड परीक्षा में फेल हो गए थे, इस परीक्षा के माध्यम से उन्हें जो है दोबारा से परीक्षा देने का मौका मिलता है और परीक्षा को पास करके विद्यार्थी बिना समय गंवाए अपने आगे की पढ़ाई जो है जारी रख सकते हैं। यही वजह है कि विद्यार्थियों में इस परीक्षा को लेकर खासा उत्साह रहता है और वे बेहतर परिणाम के साथ अपने आने वाले साल को बचा लेते हैं, इसी तरह से वो आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए, अच्छा है ना कि हमारे विद्यार्थियों की साल भी ख़राब नहीं हो रही है और एक तरीके से यह सुविधा जो है जब विद्यार्थियों को दी गई है, तो बिल्कुल आगे बढ़िए, कभी मत रुकिए और इसी तरह से चलते रहिए। तो आइए कार्यक्रम में भी हम आपको ले चलते हैं कुछ गीत संगीत मनोरंजन की ओर, क्योंकि हमें भी तो कार्यक्रम में कुछ कुछ आपको नया देना है।

बिल्कुल, आपका मन ऐसे ही प्रसन्न रहे, ऐसे ही आप खुश रहे, और हम आपका स्वागत एक बार फिर से करते हैं गुड मॉर्निंग ग्वालियर के इस कार्यक्रम में जो आपको पसंदीदा है। और मैं आपकी रेडियो मित्र रश्मि राहुल आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में। जैसा कि हम चाहते हैं कि आपका मन खुश रहे, आप स्वस्थ रहें और आने वाली परेशानियों से थोड़ा सा दूर रहें, यानी कि बारिश का मौसम है तो किसी प्रकार की असुविधा ना हो और सारी सुविधाएं आपको प्राप्त हो पाएँ, इसके लिए सजग, सतर्क और जागरूक रहें। बिल्कुल, ऐसी ही जागरूकता की इस कड़ी में हम जोड़ते हैं ये अगली खबर। अक्सर करके हमने देखा है कि कई बार घरेलू चीज़ों का उपयोग करते हुए, यानी कि गैस या ऐसी चीज़ें, आधुनिक चीज़ें या फिर आप जो है इलेक्ट्रिक चीज़ों का यूज़ करते हुए कई बार ना चाहते हुए भी कुछ परिस्थितियां या घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिसमें हमें कई बार बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में एक समस्या जिसके बारे में हम आमतौर पर बात करेंगे, जो घरेलू उत्पाद या घरेलू गैस सिलेंडर लीकेज होने पर आप किस तरह से स्वयं भी और दूसरों को भी मतलब बचा सकते हैं, क्योंकि सिलेंडर एक ऐसी चीज़ है जो घर में हर किसी के घर में यूज़ होती है और अक्सर करके हमें उसे उसका यूज भी आता है, फिर भी कई परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जिनमें हम उसका यूज़ सही कर रहे होते हैं, कई बार लीकेज हो रहा है, कई बार उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है और हमने उसको जान भी लिया और हम नहीं चाहते कि कोई दुर्घटना हो, तो हम बचे कैसे, यानी कि हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हमें किसी घटना का सामना ना करना पड़े। तो ऐसे में घरेलू गैस सिलेंडर लीकेज होने पर 1906 पर आप कॉल करके मदद मांग सकते हैं। ये सभी कंपनियों का एकीकृत कॉल सेंटर है। यहाँ पर आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से यदि कॉल करते हैं तो आपको उपभोक्ता से जुड़ी हुई जानकारी भी नहीं देनी होगी, यानी कि यदि आपके यहाँ पे कोई ऐसी परेशानी है, गैस सिलेंडर लीक हो रहा है या गैस सिलेंडर में किसी प्रकार की कोई परेशानी है, नोज़ल पिन ठीक से काम नहीं कर रही है और कोई दुर्घटना होने की संभावना है, तो आप इस नंबर पर कॉल करेंगे तो यहाँ से कंपनी द्वारा एक पर्सन को आपके यहाँ भेजा जाएगा लीकेज की समस्या और नोज़ल पिन अगर ठीक से काम नहीं कर रही है, ऐसे में दुर्घटना ना हो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए सचेत करने के लिए कंपनी आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी। और यदि आप रजिस्टर्ड नंबर से फ़ोन करते हैं तो आप उपभोक्ता जो है उस

0: का उपभोक्ता है उसकी जानकारी पूर्णतः आपके उनके पास पहुंच जाएगी। यदि अगर आप रजिस्टर्ड नंबर से कॉल नहीं करते हैं तो आपको सारी जानकारी यानी कि स्थान, नेम और किसके नाम से सिलेंडर है, कब आया है, तो उन्हें लोकेशन जानने में और पूर्णतः जानकारी को नोट करने में परेशानी नहीं होगी। तो ऐसे में यदि आपको या आपके आसपास किसी को इस प्रकार की जानकारी नहीं है तो उसे अवश्य दें। और जानकारी बिल्कुल जितना फैलाएंगे उतना जागरूकता बढ़ेगी दोस्तों। इसलिए क्या है कि आप भी सुरक्षित रहें और घरेलू गैस सिलेंडर, इलेक्ट्रिक चीज़ों का बहुत ही संभाल के इस्तेमाल करें। तो जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि सुख सुविधाएँ और जानकारियाँ हमें होनी चाहिए, तो बिल्कुल इसी कड़ी में जोड़ते हैं ये अगली खबर। आज जब अधिकांश शिक्षण संस्थाओं में फोकस किया जाता है परिणाम, रिजल्ट और एग्ज़ाम और इन सब चीज़ों पर, तो ऐसे में जीवाजी विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य परिसर में संचालित व्यवसाय एवं वाणिज्य अध्ययनशाला शिक्षा के साथ जीवन जीने की कला भी सिखाई जा रही है। यहाँ विद्यार्थियों को केवल किताबों का ज्ञान नहीं दिया जाएगा बल्कि अनुशासित दिनचर्या, पारिवारिक संस्कार, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस कोर्स का नाम है लाइफ मैनेजमेंट। यानी कि हम अक्सर करके देखा जाए आधुनिक समय में तो अक्सर करके हम देखते ही हैं कि हर कोई अपने मोबाइल में व्यस्त है, कामों में होगा, अपनी पढ़ाई में भी होगा, लेकिन मोबाइल को भी हम एक ऐसा समय देने लगे हैं जब हम दूसरों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, दूसरों से बात कर सकते हैं, दूसरों के साथ बैठकर अपनी परेशानी या अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे समय में हम अक्सर करके मोबाइल में घुसे होते हैं। कई बार मोबाइल हमें इतना ज़्यादा अच्छा लगा होता है कि उसमें हम गेम खेल रहे हैं, घंटों उस पर समय बिता देते हैं। जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो हो ही रही हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, नसों का ब्लॉक होना हो रहा है क्योंकि घंटों तक हम एक ही हाथ से मोबाइल चला रहे हैं और एक ही कंडीशन में बैठे हुए हैं, तो कमर में प्रॉब्लम हो रही है, कई सारी जगह पर हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रिक चीज़ें या फिर आधुनिक चीज़ जो प्रयोग की जाने वाली चीज़ें हैं वो सही नहीं है, बल्कि उनका एक लिमिटेड या नियमित प्रयोग जो है आपका एक लिमिट के साथ किया जाए तो वो आपके लिए उपयोगी रहेगी। ऐसा कहना है हमारे जीवाजी विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र परिसर में संचालित इस कार्यक्रम के अंतर्गत वाणिज्य अध्ययनशाला के शिक्षकों का कि मोबाइल चलाना ठीक है, आप अपने कामों को इजीली कर पाते हैं, पेमेंट कर रहे हैं या पढ़ाई से संबंधित कुछ जानकारियाँ ले रहे हैं और आपको लंबे समय तक उस पर बैठना भी पड़ रहा है, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं, लेकिन जब हम अपनी बातों को दूसरे से शेयर कर करके अपने मन को हल्का कर सकते हैं, बाहर के बारे में और चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, उस समय को भी यदि हम मोबाइल में लेते हैं तो ऐसे में आपके अंदर जागरूकताएँ नहीं आती हैं, आप व्यवस्थित चीज़ों को नहीं करते हैं, कई बार आपका मन चिड़चिड़ा हो जाता है और अकेलापन भी तो महसूस होता ही है। तो ऐसे में ये जो पहल है ख़ास तरीके से कि लाइफ मैनेजमेंट कैसे करना है, किन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना है, सांस्कृतिक नागरिक जो है कैसे तैयार करने हैं, अपनी जीवन शैली में कैसे सुधार करना है, लाइफ मैनेजमेंट कोर्स ये सारी चीज़ें सिखाता है। और बल्कि आपको जो आपके मोबाइल से जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में भी अवेयर कराता है। तो हम तो चाहते ही हैं कि ऐसी चीज़ें जो है हमारे दोस्तों, बच्चों और सभी के अंदर आएँ जिससे कि उन्हें लगे कि हाँ उन्होंने कुछ अच्छा किया है, कुछ नया सीखा है, और जितना बेहतर अपने आप को एक अच्छा नागरिक बना सकें उतना अच्छा नागरिक बनने के हमें प्रयास हमेशा करने ही चाहिए दोस्तों। और ये लाइफ मैनेजमेंट कोर्स आपकी लाइफ में कितना सुधार ला पाता है ये तो आप जब उसे प्रयोग, जब उसमें अध्ययन करेंगे या इस तरह के किसी प्रोग्राम से जुड़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे। लेकिन अच्छा है यदि इस तरह के प्रोग्राम करवाए जाते हैं तो ऐसे में कई सारे छात्रों को उनका लाभ लेना चाहिए। तो श्रोताओं, हमें भी कार्यक्रम में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं एक छोटा सा संदेश और फिर से हाजिर होते हैं कार्यक्रम में।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424। 4-2।

ओ 8700014242 लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

मैनेजमेंट के थ्रू सीखने से अच्छा है लाइफ मैनेजमेंट के अध्ययन कार्यक्रमों में जुड़ने से पहले हमें खुद भी तो खुद सुधार करने चाहिए। यानी कि यदि आदतें ये हमारी बचपन से ही शुरू हो जाएं तो कितना अच्छा हो। बिल्कुल, हमारे सुधार का कोई समय नहीं होता, ये मैं मानती हूँ। हमारे द्वारा अगर कुछ किया, ऐसा कुछ गलत निर्णय या काम किए जा रहे हैं तो उनमें हम कभी भी सुधार कर सकते हैं, और जीवन सीखने का नाम है तो कभी भी सीख सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर ये शुरुआत जो है बचपन से की जाए, यानी कि हमारे अपने घर से की जाए, अपने घर का मैनेजमेंट देखा जाए, घर में सामान व्यवस्थित है या नहीं, हमें व्यवस्थित रखने की आदत हो, खाने की प्लेट्स हुआ, कपड़े हुए, जूते हुए, बैग्स हुए, किताबें हुई, इनका एक बढ़िया से सेटलमेंट मैनेजमेंट किया जाए, और हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उन्हें किस जगह किस तरह से मैनेजमेंट से रखनी है, ठीक है, मौसम बदलते समय किस तरह के कपड़ों को पहनना है, किस तरह के कपड़ों को रखना है, कैसी चीज़ों का प्रयोग करना है, कैसे लोगों से बातचीत करनी है, अपने अच्छे गुणों को बढ़ाने के लिए कैसी किताबें पढ़नी है, इन सब के बारे में तो हमें बचपन से यदि अगर नॉलेज दी जाए और जानकारियाँ हम इकट्ठा करते रहें तो भी हम इन तरह के कोर्सेज के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और हम तो चाहते ही हैं किसी तरह से आप और हम मिलकर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करें, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें, लेकिन घड़ी की सुइयों ने इशारा कर दिया है कि ये बातें, ये जानकारियाँ अगले दिन के लिए भी कुछ बचा कर रखते हैं, कल आपसे मिलते हैं इसी कार्यक्रम में एक बार फिर से। लेकिन आज दे दीजिए हमें इजाज़त। सभी श्रोताओं को रश्मि राहुल का नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सूचना और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज सुनिए अजीत सिंह पेंटल के द्वारा राग बिलास खानी तोड़ी। तबले पर इन्हें संगत दी है भोगीराम प्रतोनिया ने।

0: आकाशवाणी है भोपाल की चिट्ठी।
1: ताहिर खान, चिंत दीपक सिंह। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। भोपाल जिले में कल झमाझम मौसम खुश प्रदेश में प्रवेश किया। इसके बाद करीब 9 दिन में पूरे मध्य प्रदेश में मानसून फैल गया। हालांकि इसकी एंट्री सामान्य समय से करीब 9 दिन देरी से हुई है। देरी की वजह से किसान समय पर फसल की बुआई नहीं कर पाए। हालांकि अब निरंतर बारिश होने के चलते किसान फसल की बुआई में लग गए हैं। मानसून की दस्तक के साथ ही नगर निगम एक बार फिर जर्जर भवनों को लेकर हो गया है। हर साल की तरह इस बार भी भवन मालिकों और सरकारी विभागों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नगर निगम के सर्वे के मुताबिक भोपाल में 3,435 भवन जर्जर हैं। इनमें 2,464 सरकारी और 971 निजी भवन शामिल हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि 740 सरकारी और 17 निजी भवन अति जर्जर श्रेणी में हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा सुविधा और बढ़ती यात्रा मांग को देखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। रेलवे प्रशासन ने रानी कमलापति अगरतला स्पेशल ट्रेन में LHB कोच लगाने का निर्णय लिया है। भोपाल रानी कमलापति से ये ट्रेन 9 जुलाई और अगरतला से 12 जुलाई से LHB रैक के साथ चलेगी। वहीं 23 जुलाई और 26 जुलाई से संशोधित LHB कोच संरचना लागू होगी। इसके अलावा इंदौर जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस का सीहोर स्टेशन पर प्रायोगिक ठहराव देने और पुणे दानापुर दैनिक स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि 30 सितम्बर तक बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया है। महिला बाल विकास विभाग ने प्रदेश की विभिन्न बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 2,548 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। भर्ती का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ साथ समिति स्तर पर पोषण विकास को अधिक प्रभावी बनाना है। भर्ती के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 1,767 पद आंगनवाड़ी सहायिका के लिए निर्धारित किए गए हैं। डॉक्टर्स के अवसर पर भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सकों के सम्मान और मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व शुभारंभ डॉक्टर तृप्ति सक्सेना के स्वागत सर्वधर्म प्रार्थना और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। सत्र को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। 5 दिवसीय मानसून सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रख सकती है। विभिन्न विभागों द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों की सूची के अनुसार करीब 11 अहम विधेयकों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। भोपाल की RCVP नरोना प्रशासन और प्रबंधकीय अकादमी में विगत रविवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने पल्स पोलियो अभियान सुमन पंचायत कार्यक्रम की शुरुआत की और स्टेट टी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट 2.0 पॉलिसी का अनावरण किया। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत बीते रविवार को भोपाल में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा दी गई। भोपाल जिले में करीब 3.32 लाख बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने का लक्ष्य रखा गया था। भोपाल के रविन्द्र भवन में बीते दिन अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित समिट में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के उद्योग निवेश और युवाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने ऐलान किया कि वर्ष 2027 को मध्य प्रदेश में युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही जनवरी 2027 में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित की जाएगी। भोपाल में मुहर्रम पर्व अकीदत के साथ मनाया गया। इस अवसर पर निकले मातमी जुलूसों में जहाँ करबला की शहादत को याद किया गया, फतेहगढ़ इमामी गेट, हमीदिया रोड, करोल और पुराने शहर के अन्य

इलाकों से सुबह से ही ताजिए निकले, अलम बुराक और धार्मिक परचमों के साथ जुलूस निकाले गए। जिला प्रशासन द्वारा भोपाल शहर के विभिन्न इलाकों में कोचिंग संस्थानों की फायर सेफ्टी व्यवस्था की व्यापक जांच की जा रही है। संचालित कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण कर कमियां मिलने पर कोचिंग संस्थान को सील करने की भी कार्रवाई जारी है। भोपाल में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में बिना अनुमति विकसित की जा रही 6 कॉलोनियों पर एक साथ बुलडोजर कार्रवाई की है। करीब 82 करोड़ रूपए मूल्य की जमीन पर किए गए अवैध विकास कार्यो को हटाते हुए प्रशासन ने सड़कें, गेट और बाउंड्री वॉल ध्वस्त कर दी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे भोपाल जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम महिला संसार।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:05 हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म राजा हिंदुस्तानी से। गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। साथ ही आपको बता दें इस गीत में आवाज़ है उदित नारायण की और इस गीत को पसंद किया है मोहाली पंजाब से बब्बर मल्होत्रा ओम प्रकाश मल्होत्रा, मजनू का टीला से कमल बलूजा मधु बलूजा सागर बलूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक आशंका मलिक आकांक्षा मलिक और मलिक माही मलिक ने, कुमार गली कोलगांव से पांडुचंदन उषा रानी प्रतीक्षा अभिषेक सार्थक प्रथमेश संतोष और पांडुरंगन इन सभी चंदन परिवार ने, बिहार कॉलोनी महासमुद्र से मोहम्मद याशुक मोहम्मद आसमा कुरैशी मोहम्मद याशुक, जेल रोड मथुरा से सरफुद्दीन बेलदार अफ्ताब बेलदार कुल्लू मल्लू कलिया बेलदार ने, छठिया पोखर डुमराव से फातिमा बली बेलदार डब्बू बली बेलदार आसमा बली बेलदार सोनम बली बेलदार, बिहार भवन दिल्ली से अकरम कुटरिया उल्लाह कुटरिया ने, जेल रोल जालंधर से अमरजीत सोनम कौर परमजीत आसमा कौर धर्मजीत फातिमा कौर ने, सरगुजा मेन पार्ट से रूबीना थापा सोमन थापा सोनम थापा फातिमा थापा और रेशमा थापा ने, झांसी से फकरुद्दीन अंसारी बदरूवली अंसारी फर्जीवली अंसारी और फर्जूवली अंसारी ने, छत्तीसगढ़ से कालिमा आसमा डोमा डोम सलीम आसमा डोम यासुफ आसमा डोम और यूसुफ आसमा डोम ने, चांदनी चौक बिहार से सराफुद्दीन जाटव फातिमा जाटव डब्लू वली जाटव सोनम वली जाटव इन सभी ने, बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद खंडवा मध्य प्रदेश से सालिया हलीमा जिकरा आयशा खत्री इन सभी खत्री परिवार ने, घूंघट रेडियो श्रोता संघ जिलाधार धर्मपुरी से मूसा जी खत्री ईशा जी खत्री और जाकिर खत्री ने। तो आइए इन सभी की फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं इनके पसंद का गीत फिल्म राजा हिंदुस्तानी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। और अभी आपने सुना फिल्म राजा हिंदुस्तानी से लिया हुआ ये गीत आपकी फरमाइश पर। तो आइए आपकी फरमाइश को एक बार फिर से पूरा करते हैं कार्यक्रम में ये अगले गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म क्रुक्स

गीत को लिखा है कुमार ने, संगीत दिया है प्रीतम ने, और गीत में प्यारी सी आवाज़ है मोहित चौहान की। तो आइए आपको साथ ही बता दें कि इस गीत को फरमाइश की है कभी रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा मलौदा छत्तीसगढ़ से देव शंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी तामुरिया, पोता मास्टर अलकबीर ने। गांव कोहार हैड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना मसरूर, आकसा नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम और आदिब ने इसी गीत के लिए हमें लिख भेजा है। बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता बमारकंडे, संजय बमारकंडे और बेबी किट्टू ने इसी गीत के लिए एकता कॉलोनी रोहतक से हमें लिखते हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोर्ड, निखिल कांगड़ा, नेतविना बोर्ड और अंकिता कांगड़ा। रामदेव देवरा से दिनेश चौहान, डंगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डोनी पवार और मनीष पवार ने इसी गीत के लिए हमें लिखा है बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, मकरू निशा, सविता मोहम्मद नसीब, पलक लुडना, यस मंसूरी ने इसी गीत के लिए। अगले पसंदीदा करता है गांव खारिया ठाड़ी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू, नव्या बिजारनिया परिवार ने। तो आइए इन सभी की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म क्रुक का ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। तो आइए कार्यक्रम में जोड़ते हैं ये गीत जो कि आपने ही फरमाइश की है, और हम बताना चाहेंगे कि हमारे किन श्रोताओं ने इस फरमाइश को लिखा है हमें। मरहरा दरवाज़ा ईटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम सयसफ, रशीद वारसी, प्रकाश बोरेगांवकर, सुषमा बोरेगांवकर, प्रांजल, सोहम, सदानंद, विराज, स्वीट, स्वीटी, अंशुमन देवी ओबी, छत्रपति संभाजी नगर, शेरवाड़ी, औरंगाबाद से। इसी गीत के लिए हमें लिख भेजते हैं गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दाताराम शेखावत, संगीत कंवर तुषार सिंह और रिंकी शेखावत, जिला खरगोन सलामत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयशी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेखा मूसा भाईजान और राजकुमार बड़ोना। इन सभी ने सुदामा नगर खंडवा से हमें लिख भेजा है। तो आइए इनकी फरमाइश पर हम पूरा करते हैं। फिल्म फना का ये गीत इन्होंने पसंद किया है, जिसमें आवाज़ें हैं सोनू निगम और सुनिधि चौहान की। गीत को लिखा है प्रसून जोशी ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने। तो आनंद लीजिए फिल्म फना के इस गीत का।

0: सो योर प्लेस और माइन।
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम
1: तो क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: अल्पविराम के बाद स्वागत करते हैं श्रोताओं व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में। तो श्रोताओं लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, फिल्म जब भी मिट से इसे हमने लिया है और गीत में आवाज़ है शान और उस्ताद सुल्तान खां की। गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत दिया है प्रीतम ने, और साथ ही आपको बताना चाहेंगे इसकी फरमाइश की है मालियाना सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, सैयन जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन ने, सब्जी मंडी झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, जयंत भाटिया, रयंत भाटिया, मयंक भाटिया, इन सभी ने, मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली निशा बेबी और परिवार के सभी सदस्यों ने, सनावत से शेखा मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बड़ौना ने, एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी खुराना, किरण खुराना, लाव्या आरव खुराना, एस के पप्पी ने, न्यू सुरेश नगर ठाटीपुर से पीडी राहुल, स्तुति भौमिक, आशी राशि और छोटू ने। साथ ही आपको बता दें इस गीत के लिए हमें लिख भेजा है भटिंडा पंजाब से परेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर घोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलप्रीत, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजीत ने। राजधानी जयपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार ने, गोविंदपुरा अहमद से जुनेद मुजावर, सबिहा मुजावर, मिखाइल मुराद मुजावर, जैना मुजावर ने, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया शेख, नासिर शेख, शाहिद शेर और शाहिद शेख ने, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी ने। तो आइए इनकी पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म जब भी मीट कर ये प्यारे से।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश के गीत। तो आइए कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा विराम और फिर हाजिर होते हैं कार्यक्रम में एक बार फिर से आपकी फरमाइश को लेकर।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे

0: कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
3: ए भाई,
4: सड़क पर चलते समय अपने वाहन की गति नियंत्रित रखें। किसी भी प्रकार का स्टंट करने की कतई कोशिश न करें। हो सकता है आप कुशल चालक हों, लेकिन दुर्घटना सिर्फ हमारी गलती से नहीं होती, दूसरों की लापरवाही भी हादसों का कारण होती है। दाहिने या बाएं मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग अवश्य करें। खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
3: ए भाई।

अल प्रोग्राम के बाद एक बार फिर से स्वागत है व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, डीजे सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म राधे श्याम से। गीत और संगीत दोनों ही लिखा है और संगीत दिया है मिथुन ने। गीत में आवाज़ है जुबेन नौटियाल की। कार्यक्रम में डीजे सुनिए ये कार्यक्रम का जो गीत जिसकी हम बात कर रहे हैं, और साथ ही बता दें कि इसकी फरमाइश की है गंज डुंडवारा से मशहूर कमर राही ने शाहिन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी ने। गाड़गे नगर यतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षता और पूरे लोखंडे परिवार ने। इसी गीत के लिए हमें लिख भेजा है संदीप मकर, ज्योति मकर, मनंत मकर, भारत मकर, कमल साहिनी, इन सभी ने पिंगावाला चौक गोरेगांव जालंधर पंजाब से। इसी गीत के लिए अगली फरमाइश है लुम्बिनी नगर अकोला से राहुल बंसोड़, सम्यक बंसोड़, शरण बंसयोग, मीरा वंसूर ने। इसी गीत के लिए हमें लिख भेजा है गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी ने। इसी गीत के लिए अगली फरमाइश की है विक्रम, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव कड़वासरा परिवार ने हनुमानगढ़ राजस्थान से। अगली फरमाइश करता है आज़ाद नगर लक्सकर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साविराही, महराज जहां, बिहार स्टेट डुमराव से बली अल्लाह अंसारी, आसमा परवीन, नाशमा परवीन, नशरीन परवीन, आमना और अनुश्री वली ने। हरियाणा से जसविंदर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र सिंह अरोड़ा, गुरप्रीत कौर, संगीत कौर, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर, इन सभी ने गांव और डाकघर निमनाबाद, जिला जिंद हरियाणा से। शेरवानी स्कूल गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबाना अंसारी, आलिया अंसारी ने इसी गीत के लिए हमें लिख भेजा है। साथ ही लिख भेजा है हमें पटियाला से बत्ता परिवार ने, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन बत्ता, पाल पलक, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता ने। तो इन सभी की फरमाइश को हमें पूरा करना है। हमें सुनते हैं राधे श्याम फिल्म।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। कार्यक्रम में हम आगे भी आपको कोई गीत सुनाएं और आपकी फरमाइश के कुछ और रंग में बताएं। उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम और हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट

0: aakashwani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्लास्टिक पॉलीथीन का छोड़ो साथ, प्रकृति से मिलाओ हाथ। प्लास्टिक पॉलीथीन थैलों का उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए है रोग। खरीदारी करते समय कपड़े से बना थैला हमेशा साथ रखें। यदि पर्यावरण बचाना है, पॉलीथीन दूर हटाना है।
2: अल्पविराम के बाद स्वागत करते हैं श्रोताओं आपके व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित इस कार्यक्रम में। तो आइए साथ ही आपको बता दें कि इस गीत को हम सुनवाने वाले हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म रामलीला से। गीत में आवाज़ें हैं ओसमार मिर और अदिति पॉल की। इस गीत की फरमाइश की है दादा बाबू रोड गिरहड़ी झारखंड से यासिन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत ने। इस गीत के लिए लिखा है ऑरेंज सिटी नागपुर महाराष्ट्र से बिट्ठल जाधव, अनसुईया जाधव, पवन राजे जाधव ने। छत्रपति संभाजीनगर से मंगेश इंगले, संध्या इंगले और स्वराज इंगले ने। और साथ ही इस गीत के लिए हमें लिख भेजते हैं पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा ने। सालर पहलगाम कश्मीर से परजिंदर मिर्जा और महबूब मिर्जा ने। पार्थ रेडियो क्लब छत्तीसगढ़ छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावेल पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, राजदीप राजेश ने इस गीत के सुनने की फरमाइश की है। मलियान सरधना मेरठ, अनिल जैन जैन साहब, सैयद जैन, मुस्कान जैन ने। अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, करमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गवैया मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव ने इसी गीत के लिए लिख भेजा है गांधी चौक रोपर पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर मीका, जयदेव मीका और मीका विराग ने। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकर, पिंकी स्वर्णकर, आर्यन कृष्णा पीहू, इन सभी स्वर्णकर परिवार ने। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैरिस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कीर्ति आर्यन वर्मा ने इसी गीत के लिए हमें लिख भेजते हैं यतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से, विनोद खड़से ने। तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुधन धाड़े, वकील वाल्मीकि धाड़े, नीना जी धाड़े और स्वप्निल धाड़े ने। तो आइए इन सभी की फरमाइश को पूरा करते हैं और सुनवाते हैं फिल्म रामलीला का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं आपके पसंद के गीत। तो आइए कार्यक्रम में सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, जिसे हमें लिया है फिल्म रेड से। गीत को लिखा है मनोज मनसर ने, संगीत दिया है तनिष्क बागची ने और संगीत गीत में आवाज़ें हैं राहत फ़तेह अली खान की। तो आइए, साथ ही आपको बता दें कि इस गीत के लिए हमें फरमाइश किसने की है। तो हमें फरमाइश की है झटिया पोखर डुमराव से, फातिमा अली बेलदार, डब्लू अली बेलदार, आसमा अली बेलदार, सोनम अली बेलदार, अकरम कुटरा और उल्लाह कुटरा ने, बिहार कॉलोनी महासमुंद से मोहम्मद यूसुफ याकूब आसमा कुरेशी ने, जलरोड मथुरा से सरफुद्दीन बेलदार, आफ्ताब बेलदार, कुल्लू मलिया बेलदार ने, झांसी से फकरुद्दीन अंसारी और बदरूम अंसारी ने। इसी गीत के लिए हमें लिख भेजा है अडार नंदगांव छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी वर्मा, इन सभी ने, शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, शेख रहम मुन्ना और दानिश आशिफ शेख ने, भागवत वर्मा, शांति देवी वर्मा, लीलावती वर्मा, विनीता वर्मा और रुद्र कुमार वर्मा ने ददरेंगी से। इसी गीत के लिए फरमाइश करता है कुमार गली बड़वाह जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली ने, शरीमपुरा बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, श्रद्धानंद आर्य और अभ्यानंद आर्य, परमानंद आर्य ने, गोल बाजार बक्सर से और डुमराव में डॉक्टर डब्लू अंसारी ने, सोनम अब्दाली और दानिश अंसारी ने, डुमराव बिहार से। तो आइए इन सभी की फरमाइश पर आपको सुनाते हैं फिल्म रेड का ये गीत।

श्रोताओं, इसी अंतिम गीत के साथ ही फिल्म व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10:58 होने को है, तो कुछ ही देर में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। प्रदेश के 18 जिलों में नर्मदा जयंती कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नर्मदा समग्र की बैठक हर महीने होगी। प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। जारी कार्यक्रम के अनुसार नामांकन भरने की आखिरी तारीख 13 जुलाई है। 30 जुलाई को मतदान होगा। 3 अगस्त को मतगणना के साथ नतीजों की घोषणा की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आजीविका सृजन और टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण को नई गति प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन का कल प्रदेश भर में उत्साहपूर्ण शुभारंभ किया गया। इस मौके पर प्रदेश के सभी जिलों में जिला प्रशासन द्वारा जन सम्मेलन सह लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। और मौसम विभाग ने आज हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, छिंदवाड़ा, पांडोना

0: और बालाघाट समेत 19 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश की आशंका है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: श्रोताओं नमस्कार, हमारे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो सखी कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। तो देर किस बात की, जल्दी से डायल कीजिए 2660902 और एसटीडी कोड आप जानते ही हैं 0755। हमें आपके फोन कॉल्स का है बेसब्री से इंतजार, तो कीजिए कॉल और सुनिए अपनी पसंद के गीत। जी
2: ग्राम सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहा हूँ।
1: शेख हैदर खान रतलाम से?
2: हाँ, सुराना जिला रतलाम।
1: रतलाम से तो कैसे हैं आप?
2: बस बढ़िया है, खैरियत में है मैडम।
1: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। मौसम कैसा है आपके यहाँ का?
2: मौसम तो मैडम आज 5:30 बजे से करीबन 2 घंटा मतलब अच्छी बारिश हो गई है।
1: हाँ हाँ,
2: और पानी की जरूरत भी थी। सोयाबीन की बोनी भी हो चुकी है।
1: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। ये तो कई जगह पर हमने सुना है कि लोगों ने अभी तक सोयाबीन की बोनी नहीं कर पाए हैं कि पानी बार बार गिर रहा है।
2: हाँ, मैं कई जगह तो मैडम पानी अभी तक गिरा भी नहीं है।
1: सही कह रहे हैं।
2: हाँ, हमारे आसपास भी मतलब ये जावरा तहसील है, इसमें भी पानी नहीं है फिलहाल।
1: हाँ चलिए, तो शेख साहब आज कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं?
2: फिल्म का नाम है
1: हाँ
2: नदिया के पार।
1: अरे वाह, नदिया के पार के तो सभी गीत बड़े प्यारे हैं।
2: हाँ, सचिन और साधना की फिल्म थी है।
1: हाँ जी,
2: तो उसका गीत है कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया।
1: बिल्कुल, ये गीत आप बिल्कुल सुन पाएंगे, लेकिन कल सुबह 11 बजे से जो प्रोग्राम आएगा उसमें।
2: हाँ हाँ,
1: है ना। चलिए, अच्छा कॉल आपने कब किया? एक हफ्ते तो हो चुके होंगे ना आपके कॉल को?
2: नहीं, मैं तो ज्यादा दिन हो गए मैडम, 15-20 दिन हो गए, मैं तो बोनी में लगा हुआ था।
1: चलिए कोई बात नहीं,
2: 2-4 दिन से।
1: बिल्कुल, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ कॉलर्स है ना, जैसे कल लगाया आज फिर लगा दिया, तो हम उनसे बात तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम अपना रजिस्टर चेक करते हैं तो पता पड़ता है उन्होंने तो कल ही बात की थी, तो हमें उनका प्रोग्राम में फिर उनका कॉल नहीं ले पाते।
2: तो वो सही है ना, मतलब 15-20 दिन की गैप भी देनी चाहिए हर श्रोता।
1: बिल्कुल
2: को मौका मिले।
1: सही बात है, इसी वजह से हम लोगों ने ये सिस्टम किया है कि हर श्रोता को मौका मिल सके।
2: सही है
1: ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच शेख साहब।
2: ओके ओके, थैंक यू है ना मैडम
1: जी, नमस्ते,
2: शुक्रिया।

0: हेलो
1: हेलो,
0: परम आदरणीय दीदी, सादर सप्रेम, प्यार से नमस्कार।
1: नमस्कार। इतने जोश से कौन साहब बोल रहे हैं?
0: जी दीदी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप लोग कैसे हैं?
1: हम बहुत अच्छे हैं। मथुरा में तो भयंकर गर्मी पड़ रही है शारदा जी।
0: जी, बिल्कुल आपने सही कहा। बारिश नहीं हुई है अभी तक मानसूनी,
1: हाँ
0: और मानसून पहले भी वर्षा नहीं हुई थी। हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं तो चमचमाती हुई धूप है, हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं,
1: हाँ
0: लेकिन उमस भरी गर्मी बरकरार है।
1: बहुत तेज, क्योंकि अभी जस्ट हम मथुरा से होकर ही आए हैं 2-3 दिन पहले, और सब बीमार पड़ गए हैं। इतनी भयंकर गर्मी है वहां पर।
0: जी, गर्मी तो बहुत है दीदी, और उमस वाली गर्मी अब परेशान कर रही है। आसपास के क्षेत्रों में कुछ कुछ वर्षा हो जाती है, बूंदाबांदी
1: हाँ
0: होती है, जिसके कारण से उमस काफी बढ़ गई है, और उमस जो है बहुत गर्मी के साथ साथ में बेचैनी उत्पन्न करती है।
1: बेचैनी, बिल्कुल। चलिए शारदा जी, बताइए अपनी पसंद का गीत।
0: दीदी आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है संगीत।
1: संगीत।
0: जी, इसका शीर्षक गीत है
1: हाँ जी।
0: संगीत जहाँ है गीत वहाँ है, गीत जहाँ है प्रीत वहाँ। बहुत ही सुंदर प्यारा सुरीला गीत है,
1: हाँ, अनुराधा
0: मेरे स्वर के
1: पौडवाल
0: साथ के
1: और
0: साथ में लता
1: सुरेश,
0: जी जा रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की आवाजें हैं ये।
0: और सारी दीदी आपने हमारी गलती को सही कर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आपको।
1: कोई बात नहीं, तो ठीक है शारदा जी, कल के प्रोग्राम में आप अपनी पसंद का गीत जरूर सुन पाएंगे। ठीक है, कॉल करने
0: जी,
1: के लिए
0: हृदय से
1: बहुत बहुत
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। सादर नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो,
1: हाँ नमस्कार।
0: नमस्ते।
1: आज मैं ग्राम बालोगा लखा जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति बोल रहा हूँ। हाँ
0: जी कन्हैयालाल जी, कैसे
1: जी
0: हैं?
1: मैडम। हाँ मैडम, भाई बढ़िया आनंद मंगल।
0: कॉल आपने एक हफ्ते बाद ही किया है ना?
1: हाँ
0: हाँ जी, चलिए और सुनाइए, क्या हाल है आपके?
1: बढ़िया है, आनंद मंगल है। सफर कर रहे हैं अब।
0: आज कहाँ जा रहे हैं?
1: हम वहाँ से आए हैं, शीतला मंदिर से वापस धर्मगढ़ के पास जा रहे हैं, बालोदा लखा।
0: अच्छा, तो कन्हैयालाल जी कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: बरखा रानी जरा झुमका बरो, सबक फिल्म का है ना।
0: सबक?
1: हाँ सबक, बरखा रानी जरा
0: हाँ
1: झुमके बरसो, मेरा दिल बरसा लगा है, जरा
0: हाँ
1: झुमके
0: जी,
1: बरसो।
0: बहुत अच्छा गाना है ये, मुकेश की
1: हाँ
0: आवाज़
1: सबक,
0: में।
1: हाँ सबक फिल्म का बहुत
0: हाँ
1: पुराना
0: हाँ बिल्कुल, आपका प्रोग्राम में, ये कल के प्योग्राम में आप अपना गीत सुन पाएंगे,
1: आज
0: ठीक है?
1: कितने बजे आए?
0: कल 11 बजे से प्रोग्राम आएगा, तो आप सुनिएगा अपनी पसंद का गीत, और हमारे बीच जो बातचीत हो रही है वो भी आप सुन सकेंगे।
1: आप तो कैसे अलसा लाल
0: आवाज़ में बहुत डिस्टरबेंस है, इसलिए मैं आप माफ़ी चाहूँगी
1: बढ़िया है, आनंद मंगल है। और
0: जी।
1: क्या?

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, नमस्ते
1: जी, नमस्ते मैम
0: जी। शुभ नाम
1: जी। मैं अरविंद अग्रवाल
0: जी। अरविंद जी, क्या हाल हैं आपके?
1: जी। एकदम बढ़िया है, आप भी अच्छी होंगी ऐसी आशा करते हैं
0: बिल्कुल, आपकी
1: जी।
0: आशाओं पे।
1: कविता जी से बात हो रही है आज?
0: जी,
1: कविता रावत जी से बात हो रही है
0: थैंक यू वेरी मच आवाज पहचानने के लिए।
1: जी।
0: कहाँ से बोल रहे हैं अरविंद जी?
1: जी मैं श्रीनगर जिला महोबा उत्तर प्रदेश से। जी
0: बहुत बढ़िया। कैसा माहौल है उत्तर प्रदेश में बारिश का?
1: कल तो हुई थी थोड़ी बारिश, लेकिन उमस फिर भी है अभी।
0: अभी वो लगकर जो मानसून आना चाहिए ना, लगातार बारिश होती है और ठंडक हो जाती, वो मौसम नहीं आ पा रहा ना।
1: जी मोबाइल तो वैसे दिखा रहा है कि आज भी बारिश होगी।
0: हाँ, लेकिन अभी लगातार बारिश नहीं हो रही है, इस वजह से हर जगह उमस के कारण सभी परेशान हैं, है
1: जी
0: ना। और परिवार में सब कुशल मंगल?
1: सब आशीर्वाद है आपका, भगवान की कृपा है जी।
0: चलिए, हमेशा बनी रहे। और बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम रहेगा घात
0: घात।
1: जी।
0: उसका कौन सा गीत?
1: झुमका चांदी का जी।
0: अच्छा, हाँ बिल्कुल, मिल गया हमें ये गाना तो।
1: मिल तो जाएगा ही
0: हाँ, बड़ी अनोखी चॉइस है आपकी।
1: जी, थोड़ी आज अलग हटके सुन रहा हूँ,
0: बहुत अच्छी बात है,
1: फास्ट संगीत थोड़ी।
0: बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। और हर टाइप का संगीत हमको सुनना ही चाहिए, है ना। तभी तो हम अपने बच्चों को भी ये सिखा पाएंगे कि ये इसमें क्या है, इसमें कौन सा राग है, क्या है, ये सारी बातें, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी कॉल करने के लिए।
1: जी आपका भी धन्यवाद कॉल लेने के लिए।
0: जी नमस्कार,
1: आपका दिन शुभ हो।
0: आपका भी दिन शुभ हो। हेलो हेलो हेलो हेलो।

0: हेलो,
1: नमस्कार दीदी, मैं
0: नमस्ते जी।
1: बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से। जी
0: बाबू यादव, सारनाथ वाराणसी।
1: जी
0: पहली बार बात हो रही है ना बाबूनाथ जी आपसे? होती
1: नहीं ये बनी रहती है।
0: रहती, मतलब मेरे से नहीं हुई है।
1: आपका परिचय जानना चाहूंगा।
0: कविता रावत
1: ओ हाँ दीदी, ठीक करें, पहली बार हो रही है।
0: ना, अपनी पहली बार बात हो रही है।
1: हाँ
0: सोचिए,
1: जी दीदी,
0: इतने सालों में पहली बार आपसे बात हो रही है।
1: आपकी वो जो गीत सागर में आप जो कार्यक्रम देती थी
0: हाँ जी,
1: उसमें आपका गीत सागर में मतलब सुनता था, अच्छा लगता था, और
0: अच्छा
1: मैं पत्र भी भेजता था।
0: अच्छा
1: हाँ
0: चलिए, थैंक यू वेरी मच।
1: तो वहाँ आपका नाम सुन,
0: जी,
1: और हम पत्र भी भेजते थे, अच्छा लिखते थे आप थी। और वही वो क्या थी, सिंह थी, सरिता सिंह थी क्या थी? हाँ सुनीता सिंह जी। तो आप लोगों के विचार जो है बहुत अच्छे लगते थे गीत सागर में।
0: अभी भी प्रोग्राम आता है लेकिन शिफ्ट
1: हाँ जी
0: ड्यूटी रहती है तो किसी कारण से अभी नहीं कर पा रहे हैं।
1: जी
0: तो
1: जी
0: बस आप सबका स्नेह ऐसे ही हम लोगों के साथ बना
1: जी बहुत अच्छा लगता है आप लोग प्रस्तुत करती हैं, अच्छा लगता है, आपसे सीख मिलती है, ज्ञान
0: है।
1: मिलता है।
0: ये बात सही है।
1: हाँ
0: और आपस में बातचीत करके ना अपने बहुत सारे समस्याओं का हल भी निकलता
1: जी, बिल्कुल
0: है ना? बस यही तो उद्देश्य है हमारे रेडियो का।
1: जी। दीदी
0: चलिए बताइए बाबूजी, आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: देखिए, मेरे यहाँ कल से बारिश हो रही है, तो बनारस का मौसम बहुत अच्छा हो गया है, तो
0: हाँ
1: इस अवसर पर हमको एक गाना सुनवा दीजिए, फिल्म जुर्माना का है,
0: हाँ
1: और वो आपकी सजन सावन में
0: अच्छा,
1: इलाहाबादी ने
0: जुर्माना का।
1: गाया हुआ है, तो
0: देखिए,
1: वही
0: हो
1: वाला
0: गए।
1: सुनवाइएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: और दो लाइनें कहना चाहूंगा इजाजत देंगी तो, कि
0: हाँ
1: कहते हैं कि अशकों की जुबान नहीं होती और लफ्जों में मोहब्बत बयां नहीं होती, और मिले जो प्यार से तो कद्र करना यारों, मोहब्बत हर किसी पर मेहरबान नहीं होती।
0: बिल्कुल सही कहा है आपने, बहुत सही बात। अच्छा बाबू यादव जी, एक बात बताइए, ये जो गीत के बोल है ना, ये है सावन के झूले, है
1: जी जी
0: ना? चलिए ठीक
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: बिल्कुल
1: नहीं
0: बिल्कुल।
1: बहुत बहुत खूबसूरत है, मौसम के अनुरूप है।
0: अच्छा,
1: हाँ मेरे यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो गया है।
0: हाँ,
1: हाँ
0: चलिए ठीक है, चलिए
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्ते मैम
0: नमस्ते
1: जी। मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन
0: जी। जीनत जी कैसी हैं?

0: लव स्टोरी का है ना,
1: अच्छा।
0: रिम झिम रिम झिम
1: सबके
0: रिम
1: मन में आजकल यही
0: झिम।
1: चल रहा है ना।
0: जी जी
1: तो बारिश मतलब रिमझिम रिमझिम शुरू हो गई है।
0: जी हो गई ना, इंदौर में भी आ गया पानी।
1: हाँ, आ तो गया लेकिन अभी उतना फुर्ती से नहीं आया।
0: जी उतना तो नहीं हुआ, मगर थोड़ी ठंडक रात
1: हल्की
0: हो गई
1: पुल्की,
0: गर्मी से।
1: हल्की पुल्की कह सकते हैं।
0: जी
1: हाँ ठीक है, चलिए धीरे धीरे ही सही आएगा, तो आ ही रहा है।
0: जी जी
1: चलिए जीनत जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, कॉल करने के लिए
0: जी
1: धन्यवाद। और कल 11 बजे अपना प्रोग्राम आप सुन सकती हैं।
0: जी शुक्रिया मैम,
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्ते।
1: नमस्कार मैडम जी। जी
0: शुभ नाम बताइए अपना।
1: मैं राम बाबू मालवी बोल रहा था, कोलार रोड भोपाल से। हाँ,
0: आपसे तो पहले भी बात हो चुकी है।
1: पहले बात हुई होगी 1 या 1.5 महीने पहले।
0: हाँ, और क्या हाल है आपके?
1: एकदम बढ़िया, और काम वाम भी अच्छे से चल रहा है, और मौसम भी अब थोड़ा बहुत अच्छे से हो गया है, मतलब ठंडा मौसम हो गया है, बारिश भी हो गई
0: चलिए, राम बाबू जी, आपको हमारी आवाज पसंद नहीं है क्या? तो
1: है। जी जी बिल्कुल है ना पसंद।
0: आपने हमारे सारे सवालों के जवाब लगातार दे दिए, हम तो कोई सवाल ही नहीं कर पाए आपसे।
1: नहीं,
0: चलिए कोई बात नहीं, और बताइए कौन से गीत सुनना चाहते हैं।
1: बिल्कुल सब बढ़िया है,
0: हाँ।
1: और मौसम मौसम सब अपना भोपाल का तो सब ठीक ठाक है, अभी तो नॉर्मल है, ना ज्यादा बारिश ना कुछ भी नहीं, अभी शुरुआत हुई
0: बिल्कुल सही
1: है
0: बात
1: ना।
0: है।
1: और आपकी आवाज की रही बात, तो आपकी आवाज बहुत बढ़िया है, और आपकी जो प्रस्तुति है प्रोग्राम की
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: अच्छी सी है, कोई बात की दिक्कत नहीं, हमको बहुत पसंद है, सभी श्रोताओं को पसंद है।
0: जी, थैंक यू वेरी मच।
1: जी,
0: बताइए कौन से गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म है आज की आवाज।
0: आज की आवाज।
1: हाँ, उसमें एक गाना बहुत प्यारा गाना है, दिल ही दिल में ले लिया, दिल मेहरबानी आपकी, ये वाला गाना
0: बिल्कुल सही बात है, ये बहुत प्यारा गाना है और ये
1: है। हाँ
0: मिल भी गया मुझे।
1: जी जी जी बिल्कुल,
0: तो कल
1: मुझे
0: 11 बजे।
1: विश्वास है अपने आकाशवाणी के मध्य प्रदेश में जरूर बिल्कुल बराबर मिलता है, ये हर एक गाने मिल जाते हैं।
0: हाँ, हर गाना।
1: हाँ, वो कभी कभी सर्चिंग में हो जाता है, कभी नहीं भी आ पाते, लेकिन रहते
0: बिल्कुल
1: जरूर है बराबर। जी
0: सही बात है ये तो।
1: जी
0: बिल्कुल कल 11 बजे से प्रोग्राम में आप सुन सकेंगे अपनी पसंद का गीत।
1: जी बिल्कुल,
0: कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: धन्यवाद जी,
0: जी।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी
1: फोन करें जी। सुनो जी,
0: जी हाँ
1: लगता है कि कविता जी बोल रही, क्या
0: हाँ जी
1: बात है। नमस्ते
0: नमस्ते
1: कविता जी, अब आप भी बताइए कि मैं कौन बोल रहा हूँ।
0: मैं बहुत अच्छे से पहचान रही हूँ, लेकिन माफी चाहती हूँ, नाम याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी।
1: चलो थोड़ी सी ऑप्शन दे रहा हूँ, फूल।
0: हाँ जी, फूल सिंह जी, खजुराहो से।
1: अरे नहीं,
0: देखिए हमें एकदम आवाज सुनते ही लगा कि ये आवाज तो बहुत जानी पहचानी है, लेकिन नाम क्लिक नहीं हो रहा था
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: कोई
1: होता है,
0: बात,
1: बहुत सारे श्रोता हैं।
0: बहुत सारे श्रोता हैं, लेकिन हमारे सभी श्रोता बहुत अच्छे हैं।
1: जी, हमारे जितने उद्घोषक हैं बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी है।
0: थैंक यू वेरी मच हम सभी की तारीफ के लिए। और बताइए क्या हाल है आपके, और खजुराहो का मौसम कैसा है?
1: खजुराहो का मौसम, तो अब तो खजुराहो का मौसम दिलदार है, बिल्कुल झूमता हुआ। कितना प्यारा मौसम, के बढ़िया। अब पानी गिर गया है, दो
0: हाँ
1: एक दो पानी गिर गए अभी तो। कल भी पानी बहुत बरसा हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर जिले में,
0: हाँ हाँ
1: और अब तो खजुराहो का मौसम बहुत दीवाना है। हाँ,
0: अरे वाह क्या बात है
1: अब
0: मतलब अब
1: देखिए
0: तो
1: घूम,
0: घूमने लायक मौसम बन गया।
1: जी, बिल्कुल गर्मियों भर छोड़ के जो है बरसात में और ठंडियों में तो घूमने का, खजुराहो का आनंद कुछ और ही हो जाता है।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: हाँ,
0: चलिए
1: और
0: अब
1: जो
0: बहुत
1: आगे
0: जल्दी।
1: पार्किंग है, जो वहाँ की खजुराहो की जो पार्किंग है, वहाँ की जो पेड़ पौधे, जो छटाएं हैं, वो इतनी मनोहर, इतनी मनमोहक लगती हैं कि लगता है कि देखते ही रहे। जी
0: आपकी शब्दावली बहुत अच्छी है
1: जी
0: चलिए
1: जी
0: फूल सिंह जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मैं अब श्रोताओं को बता दूं कि मैं श्रोताओं, मैं फूलचंद पाल छतरपुर जिले के मनकारी गांव से बोल रहा हूँ। और देखिए कविता जी, क्या है कि अब ऐसा मधुर मौसम, इतना प्यारा मौसम हो हमारे यहाँ, तो क्या पूरा मध्य प्रदेश में भी बारिश हो रही होगी शायद।
0: आज तो नहीं हुई है, लेकिन रात को थोड़ा बहुत पानी गिरा है।
1: जी, हमारे यहाँ तो मनकारी में, खजुराहो में बहुत पानी गिरा है रात में, अभी भी पानी बादल है और रिमझिम रिमझिम बारिश भी हो रही है। तो ऐसे में बार बार मन कह रहा है कि एक गीत है, फिल्म का नाम है खतरों के खिलाड़ी।
0: अच्छा
1: हेलो,
0: हाँ जी, आवाज आ रही है मुझे।
1: हाँ, खड़खड़ की आवाज आई कुछ।
0: वो अब थोड़ा डिस्टरबेंस तो होगा, मौसम चेंज हो रहा है ना, तो
1: हाँ
0: थोड़ा सा तो होगा।
1: जी, फिल्म का नाम है खतरों के खिलाड़ी
0: हाँ जी
1: और गीत की बोल है कि तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लग गई जी बरसातों में।
0: हाँ मिल गया हमको ये गाना, और बहुत अच्छा गाना है,
1: अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज साहब की
0: मोहम्मद
1: आवाज
0: अजीज
1: है।
0: जी। तो बिल्कुल कल के प्रोग्राम में आप अपना गीत जरूर सुनिएगा।
1: और कविता जी, ये गीत आपको डेडिकेट रहेगा, और हमारे प्रेमदास बाबा जी हैं, बेटा सिंह यादव जी हैं, मनीराम पाल, जीतन पाल जी हैं, वो दिनकर सिंह चित्रकूट धाम से हैं, मांगीलाल चंदेल जी हैं,
0: बिल्कुल जी,
1: और हमारी
0: धन्यवाद।
1: बहन है पूनम सिंह कानपुर से, उनको भी डेडिकेट, सभी को डेडिकेट रहेगा ये गीत।
0: चलिए बहुत बहुत आभार,
1: बहुत बहुत कविता जी, आइए, स्वागत है, बार बार स्वागत है, बहुत बहुत
0: बिल्कुल
1: स्वागत है, आइए स्वागत है,
0: बिल्कुल आएंगे, धन्यवाद।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: पांडे।
0: श्रीवास देश पांडे, कहाँ से? अच्छा, इंदौर से बोल रहे हैं। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: परछाइयाँ
0: ठीक है, आपकी परछाइयों का मिल जाएगा, हम जरूर सुनवाएंगे।
1: मुंडे
0: आपकी परछाइयाँ, मैं देख के बताती हूँ कौन सा गीत है। कौन सा?
1: मुंडे
0: अच्छा, अगर मुझसे मोहब्बत है, बिल्कुल ये गीत आप बिल्कुल सुन पाएंगे कल के प्रोग्राम में। ठीक है, मैं कविता रावत बोल रही हूँ, और कल,
1: बीमार हुआ था।
0: हाँ मैं समझ सकती हूँ आपकी आवाज़ से मुझे लग रहा है, लेकिन आप अपनी, बिल्कुल
1: आपको कभी
0: अब वो मिलेगा तो मैं कभी फिर सुनवाऊंगी, लेकिन आज आपकी परछाई फिल्म
1: आसमान
0: का ये गीत आप जरूर सुन सकेंगे कल
1: हमको
0: 11 बजे, सुनिएगा
1: मिला
0: जी। चलिए, धन्यवाद।
1: मालूम है। हाँ ओके।
0: ओके।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते बहन जी, नमस्ते।
0: कौन सा आप बोल रहे हैं?
1: ग्राम सनोतिया, जिला गुना, मध्य प्रदेश से आपका भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ बहन जी।
0: अच्छा मांगीलाल जी, कैसे हैं
1: जी
0: आप?
1: बस बढ़िया हूँ दीदी, आपकी दुआ से बढ़िया हूँ, भगवान की कृपा से। और मैं ईश्वर से आशा करता हूँ कि आप भी बढ़िया हो।
0: हाँ हम बहुत बढ़िया हैं। आप सभी का प्यार हम सभी के साथ है।
1: जी
0: बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: बहन जी, फिल्म का नाम रहेगा चित्रलेखा,
0: अच्छा।
1: और गाने के बोल रहेंगे, छा गए बादल नील गगन पे, घुल गया कजरा सांझ डले। जी
0: वाह, बहुत ही प्यारा गीत है ये। मतलब बहुत कम लोगों ने इसको सुना होगा,
1: हाँ हाँ
0: है ना?
1: जी
0: ठीक है, तो ये गीत ज़रूर हमको मिल भी चुका है, और कल के
1: जी
0: प्रोग्राम में आप अवश्य सुनिएगा अपनी पसंद का ये
1: जी
0: गीत।
1: जी बहन जी, कुछ मित्रों को याद कर सकता हूँ?
0: बिल्कुल कर लीजिए।
1: फूलचंद पाल जी है मनकारी से, दिनकर सिंह हैं चित्रकूट धाम से, बेटा सिंह यादव जी हैं, प्रेमदास पावा जी हैं, और गोपाल ओझा जी हैं ककवा सा मध्य प्रदेश से, और इन सभी को ये गाना डेडिकेट रहेगा बहन
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी।
0: जी।
1: नमस्कार बहन जी,
0: नमस्ते।
1: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। देर आए दुरुस्त आए, लास्ट कॉलर हो तुम। नंदिनी
1: कॉलर हूँ मैं।
0: जी
1: ओ माय गॉड, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ बताएं।
0: हाँ हो जाता है कभी कभी। और क्या हाल है तुम्हारे? बहुत टाइम बाद तुमसे बात हो रही है।
1: हाँ मैम, मैंने ना 6 मंथ बाद कॉल किया है
0: ओ
1: आज, क्योंकि
0: बाप रे, 6 महीने तक इतना लंबा इंतजार। और बताओ और क्या हाल है?
1: ठीक है मैम। और आप कैसी हैं
0: हम भी बहुत अच्छे हैं।
1: जी? तो आज तो मैं सॉन्ग सुनूंगी। मूवी का नाम है भूतनाथ रिटर्न।
0: अच्छा, भूतनाथ रिटर्न।
1: हाँ,
0: अच्छा
1: और सॉन्ग उसमें है ना, पार्टी तो बनती है।
0: हाँ
1: ये वाला सॉन्ग सुनेंगे और डेडिकेट आपको रानू दीदी को रहेगा।
0: हाँ जी ठीक
1: और मैं
0: है।
1: एक बात और कहना चाहती हूँ।
0: हाँ
1: एक दीदी थी वंदना उपाध्याय है ना, वो हमें याद कर रही थी, उनके लिए थैंक
0: अच्छा, वंदना उपाध्याय।
1: यू जी। वो हमको एक दिन याद कर रही थी, तो उनके लिए थैंक
0: लेकिन वो अनाउंसर पैनल में तो नहीं है?
1: यू। नहीं, वो वहाँ की है, जबलपुर की।
0: अच्छा, चलो
1: अनाउंसर नहीं है, वो कॉलर है। जी
0: कॉलर है ना। चलो ठीक है, तुम्हारे ये इन बातों के जरिए उन तक ये मैसेज पहुंच ही जाएगा। ठीक है
1: जी
0: नंदिनी,
1: जी जी
0: चलो ओके बाय
1: ओके
0: बाय।
1: मैम।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। अनुमति दीजिए अपनी रेडियो सखी कविता रावत को नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटल मार्गों से शुरू हो गई है। 28 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान पूरे देश से लाखों श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज सुबह अनंतनाग जिले के नुनवान और बालटल के बेस कैंप से श्री अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए रवाना हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में इन दिनों स्कूल चलो अभियान चल रहा है। 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान अधिकाधिक सांदीपनी विद्यालय भवनों को लोकार्पण और स्कूलों का युक्तियुक्तकरण कराया जाए ताकि विद्यार्थियों को इसी सत्र में अधिकतम लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के सभी धार्मिक महत्व के तीर्थ स्थलों पर विकास के लिए धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। ये प्रोत्साहन रजिस्ट्री शुल्क में छूट, अनुदान या अन्य रियायत स्वरूप में दिया जा सकता है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा की हैं। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला रविवार को लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी

मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। विरासत फिल्म का गाना है उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजें हैं, संगीत है अनु मलिक का और गाने को लिखा है जावेद अख्तर ने। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता है चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा और कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल ने इस गाने को पसंद किया है।

ये फरमाइश हम तक आई है गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा की। और आप सभी ने पसंद किया है फिल्म हद कर दी आपने का ये गाना, जिसमें आवाज़ है जसपिंदर नरूला और साथियों की। आनंद राज आनंद का संगीत है और गाने को लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: What's your problem?
1: By the way, तुम्हें क्या करना है?
0: By the way, कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है, संग मरना है।
1: तो कर लो ना जो करना है, don't bother me.
0: Really?

आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और ये फरमाइश हम तक आई है खंडवा से संजय, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने, आप सभी ने पसंद किया है फिल्म सोनी महवाल का ये गाना। आशा भोसले, शब्बीर कुमार की आवाज़ है, आनंद पक्षी के बोल है और संगीत है अनु मलिक का।

अब सुनिए फिल्म हिना का गाना आवाज़ लता मंगेशकर और साथियों की। रविंद्र जैन का संगीत है और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका, रॉबिन ने इस गाने को पसंद किया है। और साथ ही साथ ये फरमाइश हम तक आई है पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू ने इस गाने को पसंद किया है।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राजनीति का गाना, कविता सेठ और साथियों की आवाज़ है। समीर ने गाने को लिखा है और आदेश श्रीवास्तव का संगीत है। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता है कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल बड़े और फिरन यादव, मुन्ना खान और साथ ही साथ ग्राम पहरुआ से राम कुमार लोधी और संजय पुरी ने इस गाने को पसंद किया है।

राजनीति फिल्म का गाना था आदेश श्रीवास्तव की आवाज़ थी, संगीत भी था आदेश श्रीवास्तव का और गाने को लिखा था समीर ने, और उसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसमें सुनिए धारावाहिक हंसना मना है की दूसरी कड़ी।

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।
1: एक लड़का था गरीब, उसने भगवान को चिट्ठी लिखी। अब भगवान को किस पते पे चिट्ठी लिखता, लिख दी भगवान जी स्वर्गलोक। बस उस चिट्ठी में लिखा, भगवान जी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मेरे को अपनी स्कूल की फीस देना है और किताब कापी खरीदना है, मेहरबानी करके 100 रुपये भेज दें। अब चिट्ठी साहब पोस्ट ऑफिस के डब्बे में डाल दी। वो डब्बे से निकल के मुख्य डाकघर पहुँची। वहाँ पे जो जितने भी पोस्टमैन थे उन्होंने उस पत्र को पढ़ा और बड़ा कुछ हंसी का माहौल बन गया। वो चिट्ठी जो थी वो सबसे बड़े जो पोस्टमास्टर थे उन तक पहुँच गई। उन्होंने उसको पढ़ा, उसमें लिखा था भगवान जी स्वर्गलोक, मैं बहुत गरीब बच्चा हूँ और मेरे को फलाना ये सब स्कूल के पैसे देना है और ये वो सब 100 रुपये व्यवस्था भेज दें करके। अब वो पोस्टमास्टर विचार कर रहे हैं, सभी पोस्टमैन विचार कर रहे हैं कि देखो कितना प्यारा बच्चा है ये, इसने भगवान से 100 रुपये मांगे, अब कहाँ भगवान आएंगे, कहाँ उसको 100 रुपये देंगे। तो सभी डाक कर्मियों ने एक विचार किया, चलो भाई चंदा किया जाए। किसी के पास 5 रुपये थे, किसी के पास 2 रुपये थे, किसी के पास 10 रुपये थे, ऐसा करके चंदा किया गया। 75 रुपये चंदा हुआ। उस कार्ड में, पोस्ट कार्ड में उस बच्चे ने अपना पता ज़रूर लिखा था, भाई पैसे कहाँ पहुँचाए भगवान, तो पता ज़रूर लिखा था। तो सभी लोगों ने क्या किया, वो जब 75 रुपये जुड़ गए तो एक मनी ऑर्डर उस बच्चे को कर दिया। बच्चे को 75 रुपये का मनी ऑर्डर मिल गया, बच्चा खुश। उसने फौरन एक चिट्ठी लिखी भगवान को, पता वही, भगवान जी स्वर्गलोक। समाचार ये था, भगवान जी आपका भेजा हुआ 75 रुपये में 75 रुपये मुझको मिल गया है। मुझे विश्वास है भगवान जी कि आपने 100 रुपये भेजे होंगे, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस वालों ने 25 रुपये खा लिए। मैं अपने कुत्ते के साथ एक दिन सुबह सुबह घूमने निकला, बाग बगीचे गया, यहाँ गया वहाँ गया, बड़ा अच्छा लग रहा था कुत्ते को चैन में, बड़ा अच्छा लग रहा था। अचानक एक सज्जन मिले मुझे रास्ते में, वो कहने लगे, क्यों इस गधे को कहाँ ले जा रहे। मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा देखो इतना बढ़िया कुत्ता है ये मेरे पास और ये आदमी उस कुत्ते को देख के गधा बोलता है। मैंने फौरन बोला, भाई साहब ये कुत्ता है गधा नहीं है। तो वो भाई साहब मुझसे बोलते हैं, मैं आपसे नहीं आपके कुत्ते से पूछ रहा हूँ। एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा, उसके पिता ने उससे पूछा, बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे तो क्या करोगे, क्या बनोगे। लड़का बोलता है, बाऊजी हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे। तो उनके पिताजी बोलते, वेरी गुड बेटे, वेरी गुड, अच्छा जब तुम डॉक्टर बन जाओगे तो तुम क्या करोगे।
2: हम जब डॉक्टर बन जाएंगे ना पप्पा, तो हम लोगों का इलाज करेंगे, गरीबों का खूब खूब इलाज करेंगे, उनका सब गरीबों का हम फ्री में इलाज करेंगे।
0: तो उनके पिताजी बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने जब वो लड़का बड़ा हुआ तो इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका नाम लिखवा दिया। मेरे घर के सामने अचानक एक गधा मर गया। मैंने देखा गधा मर गया, वो मेरे घर के सामने। तो संबंधित विभाग को मैंने टेलीफोन किया कि भैया ये यहाँ हमारे घर के सामने है, वो गधा मर गया है, आप लोग मेहरबानी करके आके उसको उठाओ ले जाओ। तो संबंधित विभाग वाले टेलीफोन पे मेरे को क्या जवाब देते हैं, कहले भाई ऐसा है आपके घर के सामने मरा है, तो क्रियाक्रम अगर आप करें तो ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। कोई धर्म की भी बात है, आपके सामने गधा मरा है आपके घर के सामने, तो क्रियाक्रम आप कराओ। मेरा दिमाग खराब, मैंने टेलीफोन पे उसी समय उनको जवाब दिया, खैर वो क्या है कि क्रियाक्रम तो मैं गधे का कर लूँगा, लेकिन मैंने ये सोचा कि उनके सभी रिश्तेदारों को पहले बता दूँ, है ना। क्यों भीखू भिखारी, यहाँ आओ, ये लो 1 रुपये मेरी तरफ से। और एक बात बताओ, तुम आज यहाँ रेलवे स्टेशन के आसपास क्यों भीख मांग रहे हो, पहले तो तुम मांगते थे सब्जी मंडी में, वहाँ सब्जी बाजार के आसपास। तो भीखू भिखारी मुझसे बोलता, हाँ बाऊ जी हम पहले वहाँ सब्जी बाजार में ही भीख मांगते थे, वो रेलवे स्टेशन के पास हम इसलिए आज भीख मांग रहे हैं कि परसों नरसों हमारी लड़की की शादी हुई, तो दहेज में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा दामाद को, तो मैंने सब्जी बाजार वाला एरिया उसको दहेज में दे दिया।
3: और अब एक और हंसोड़, विनय जैन।
4: एक साहब अपने किसी निजी काम से बंबई पहुंचते हैं और अपने बंबई में रह रहे मित्र के घर पहुंच जाते हैं। सारा काम कार्यालय का निपटाने के बाद जैसे ही शाम को पहुंचे तो उनके दोस्त का घर और उनकी हालत देख के थोड़ा सा जो मेहमान है उसको शर्मिंदगी का एहसास होता है कि साहब ये हमारा दोस्त है, इनका छोटा सा घर है, एक कमरे का फ्लैट और उसमें सोने के लिए एक ही पलंग, 4 बच्चों का घर, हस्बैंड वाइफ मिला के 6 लोग। तो जैसे ही शाम होती है, सोने का समय आता है, तो थोड़ा संकोच में मेहमान आ जाता है।

0: जाता है और मेजबान से बोलता है, साहब हमें थोड़ा शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है, आपका छोटा सा घर है और एक ही पलंग है, ऊपर से ये चार बच्चे हैं। तो दोस्त तो फौरन जवाब देता है, हाँ चिंता की कोई बात नहीं, सब इंतजाम हो जाएगा। साहब भी थोड़ा आश्चर्य कि इंतजाम कैसे हो जाएगा। जैसे ही रात में सोने का समय आता है तो मेजबान पहले अपने इकलौते पलंग पर अपने दोनों बच्चों को लिटाता है। 10 मिनट बाद वो बच्चे सो जाते हैं तो दोनों मियाँ बीबी दोनों बच्चों को एक एक कंबल में लपेट के दीवार से टिका के खड़ा कर देते हैं। उसके बाद दूसरे दो बच्चों को पलंग में लिटाते थे, 10 मिनट बाद वो दो बच्चे भी सो जाते हैं, उनको भी एक एक कंबल में लपेट के दीवार में टिका के खड़ा कर दिया जाता है। और मेहमान से मेजबान बोलता है, साहब आपके लिए पलंग तैयार है, आप सो जाए। तो मेहमान बोलता है कि और आप लोग? तो साहब बोलते हैं कि हम लोग की चिंता नहीं, सब इंतजाम हो जाएगा। भैया भी बहुत थके हारे रहते हैं, पलंग पर लेटते ही से सो जाते हैं। जैसे भैया की नींद खुलती है तो आप भी कंबल में लपटे दीवार से टेके खड़े रहते हैं और पति पत्नी दोनों सोते रहते हैं।
1: एक बात तो आपसे हम खास तौर पे कहना चाहते थे जो भूल रहे हैं। अरे इस कार्यक्रम का नाम है हंसना मना है।
0: एक ऐसा आइटम सुनाने जा रहा हूँ जो कि व्यंग है। एक नेताजी जिनका की तगिया कलाम था, बात बात में कहा करते थे कि राजनीति हो गई। हर बात में वो कहा करते थे कि अरे साहब राजनीति हो गई। एक बार आप तमाम लोग भी जान लें, स्वर्ग और नरक में जाने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। जो लोग हम और आप अपनी अपनी जीवन लीला समाप्त करके ऊपर पहुंचते हैं तो जो इंटरव्यू में पास होता है वो स्वर्ग में जाता है, जो फेल होता है वो नरक में जाता है। और जो इंटरव्यू लिया जाता है उसमें जो नेताजी हैं उनका नंबर 2-3 लोगों के बाद आने वाला है। इंटरव्यू चालू है, सबसे पहले पहले कैंडिडेट को बुलाया गया, इंटरव्यू चालू है। कैंडिडेट नंबर 1, नमस्ते साहब, कहाँ से आए? साहब इंडिया से आए हैं। हाँ इंडिया से आए हो, इंडिया की स्पेलिंग जानते हो? साहब आई पहले आता है, फिर एन आता है, फिर डी आता है, फिर आई आता है, फिर ए आता है, INDIA, मतलब इंडिया। बोले शाबाश, स्वर्ग में जाओ। दूसरे को बुलाया, हाँ साहब कहाँ से? फ्रॉम जापान। जापान की स्पेलिंग जानते हो? साहब JAPAN। बोले शाबाश, तुम भी स्वर्ग में जाओ। जैसे ही नेताजी का नंबर आया, चित्रगुप्त साहब ने फौरन सवाल किया, बोले भैया तुम चेकोस्लोवाकिया स्पेलिंग बताओ। अब चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग नेताजी मिस्टेक कर गए, बोले नरक में जाओ। नेताजी फौरन चिल्लाए, गुरु राजनीति हो गई, सबसे सरल पूछे, हमसे बस कठिन पूछे, इंटरव्यू एक बार फिर से होना चाहिए, नहीं तो हम जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवा देंगे। एक बार फिर से इंटरव्यू दोबारा करवाया गया, एक बार फिर से इंडिया वाले को बुलाया गया और पूछा गया, हाँ बोले साहब एक बात बताइए, ये दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? बोले साहब दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा भूकंप सन 1903 में आया था। बोले शाबाश, आप स्वर्ग में जाइए। दूसरे को बुलाया जापान वाले को, बोले साहब आप बताइए दक्षिण अफ्रीका के भूकंप में कितने लोग लगभग मारे गए थे? बोले साहब लगभग 19,998 लोग मारे गए थे। बोले शाबाश, आप भी स्वर्ग में जाओ। जैसे ही नेताजी का नंबर आया तो फौरन से सवाल किया गया, बोले साहब दक्षिण अफ्रीका के इस भूकंप में और ज्वालामुखी के फटने में जितने लोग मारे गए थे सबका नाम बताओ। नेताजी वहाँ भी मिस्टेक कर गए, बोले साहब नरक में जाओ। नेताजी फिर चिल्लाए कि गुरु राजनीति हो गई, साहब पॉलिटिक्स हो गई, सबसे सरल पूछा जाता है, हमसे ही कठिन सवाल किया जाता है, तो इसके लिए एक बार फिर से जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग गए। लोगों ने यह तय किया कि साहब ठीक है इंटरव्यू फिर से होना चाहिए, लेकिन इस बार ऊपर से आदेश हो गया कि इस बार इंटरव्यू आखिरी होगा, बिल्कुल अंतिम होगा, फाइनल होगा और लिखित में होगा। राइटिंग में एग्जाम होगा, जो सही लिख के बताएगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो गलत लिखेगा वो नरक में जाएगा, इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं होगा। नेताजी कहने लगे, हाउ? इंडिया वाले को बुलाया, बोले साहब लिख के बताइए, कौवा काँव काँव, कौवा काँव काँव। बोले शाबाश, स्वर्ग में जाओ। जापान वाले को बुलाया, बोले साहब लिखिए, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, बिल्ली म्याऊं म्याऊं। बोले शाबाश, बिल्कुल सही लिखा है, आप भी स्वर्ग में जाइए। जैसे ही नेताजी का नंबर आया, नेताजी को देखते ही से फौरन सवाल किया, बोले साहब आप लिखिए, घोड़ा

0: एक साहब स्कूटर में चले जा रहे थे, बड़े बढ़िया मजे से चले जा रहे थे, गाना वाना गाते हुए, हॉर्न बजाते हुए। अचानक ट्रैफिक पुलिस ने उनको रोका, ए स्कूटर वाले भाई गाड़ी रोको। उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी, किनारे किया अपने वाहन को और बातचीत चालू हो गई। किन की? वाहन चालक की और ट्रैफिक पुलिसमैन की। ट्रैफिक पुलिसमैन बोलता है, हाँ ये गाड़ी, ये स्कूटर आपका है? तो वो बोलते हैं, हाँ साहब हमारे स्कूटर है, साहब हमारे स्कूटर है, ये हम स्कूटर चलाता है। अच्छा ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, आपके पास इस स्कूटर के चलाने का लाइसेंस होगा? तो वो सज्जन बोलते हैं, यस सर आई एम लाइसेंस होल्डर, हम लाइसेंस रखते हैं, अभी अभी आपको देता हूं अगर आप बोलता तो। ट्रैफिक पुलिस वाला बोलता है, बिल्कुल दिखाइए, हमको चेक करना है। उन्होंने अपने दाहिने जेब में हाथ डाला, बाएं में डाला, आगे डाला, पीछे डाला जेब में हाथ, लेकिन लाइसेंस हो तो मिले ना, लाइसेंस तो था ही नहीं। तो वो सज्जन बोलते हैं, साहब ऐसा ऐसा ट्रैफिक पुलिसमैन साहब है, आई एम वेरी वेरी सॉरी सर, वो क्या के लाइसेंस हम घर में छोड़ दिया, साहब हम घर में लाइसेंस छोड़ दिया है, अगर आप बोलता तो अभी ला के देता आपको और आपको दिखाता। तो ट्रैफिक पुलिसमैन समझदार था, उसने कहा, नहीं गलत बात, आप विदाउट लाइसेंस गाड़ी चला रहे हैं, आपका चालान किया जाएगा। तो वो बोलते हैं सज्जन, ऐसा छोड़ दो साहब, आई एम वेरी सॉरी, आई एम हार्डली सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी, आई एम रियली, आई एम विदाउट लाइसेंस दिस टाइम, अभी लेके आता सर देता। पुलिस वाला बोलता, नहीं आपको कहीं जाने नहीं दिया जाएगा, आपका चालान किया जाएगा, आप अपना नाम बताइए। तो बोलते हैं साहब ऐसे हमारा नाम मत पूछो, आप घबरा जाएगा साहब। क्या क्या घबरा जाएगा? आप अपना नाम बताइए, आपका चालान किया जाएगा। वो फिर से बोलते हैं, छोड़ दो साहब हमारा नाम मत पूछो, आपको घबराहट होएगा, आपका हार्ट अटैक हो जाएगा। क्यों हार्ट अटैक हो जाएगा? आप अपना नाम बताइए, हम प्रेम से लिखेंगे उसको और तरीके से लिखेंगे। तो वो सज्जन स्कूटर वाले बोलते हैं, अच्छा ट्रैफिक पुलिसमैन आप हमारा नाम लिखो। हाँ कहेंगे, बोलिए। हाँ लिखो, हाँ बोलिए, हाँ लिखो, हमारा नाम है श्री वेंकट मल्लिका रावर्जुन रावण राव वल्द सिंह सुन्नी चिन्नप्पा नागलिंगम वल्द मच्च कच्च वरा नरसिंह वामन पुरुष राम रामकृष्ण बुद्ध कलंग पिल्ले। तो पुलिस वाला क्या बोलता है, पुलिस वाला क्या बोलता है, ये तुम्हारा नाम है? अच्छा एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से।
1: साहब एक इंटरव्यू की तरफ लिए चल रहा हूं, जहां दो लोग एक इंटरव्यू देने जाते हैं, जो एक इंटरव्यू देने में एक आदमी तो बहुत ज्यादा फटाफट जवाब दिया करता है, वो साहब की कुछ ऐसी कयामत कहिए कि जिस बात को आप उनसे पूछिए उसका जवाब तुरंत दे दिया करते हैं, और दूसरे जो साहब रहते हैं उनके साथ वो थोड़ा सा जवाब देने में घबराते हैं और कुछ डरपोक किस्म के, कुछ कम या मंद बुद्धि के रहते हैं, तो वो बहुत घबराए हुए रहते हैं। तो जैसे घबराते हुए उनसे बोलते हैं,
2: बोले भैया वो तो इंटरव्यू देने में बहुत डर लगता है भैया, हम तो किनारे चुपचाप बैठ जाएं जाके।
3: तुम चिंता मत करो, तुम सबसे पहले हमारे साथ चलो, समझे? दिलेर वाला बोलता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, और तुम जैसा हम तुमको बोल देंगे बैठा देंगे किनारे, तुम बैठे रहना, और जैसे ही मेरा नंबर आएगा इंटरव्यू का तो सबसे पहले मैं इंटरव्यू दूंगा और तुम बिल्कुल वहीं बैठे रहना, और जैसे ही मैं इंटरव्यू दे के आऊँगा तो मैं तुमको सब कुछ सिखा दूंगा, सब कुछ समझा दूंगा, तो उसके बाद तुम इंटरव्यू देना। डरपोक वाला भी थोड़ा सा तसल्ली में आ जाता है कि भैया इंटरव्यू देंगे तो हमको समझा देंगे कि हमको क्या बोलना है। सबसे पहले दिलेर जो हर बात का जवाब फटाफट दिया करता है, अंदर जाता है, उससे पहला सवाल किया जाता है, वो सवाल कुछ इस तरह, साहब फटाफट जवाब देते हैं, इनको बिल्कुल बाहर करो, बोले आप जाइए आपको बाद में बुलाया जाएगा। नेक्स्ट, तो जैसे ही डरपोंक वाला किनारे बैठा था तो उसको जाके इनके कान में पता नहीं क्या फूंक दिया, तो डरपोंक वाला भी सीना तान के अंदर इंटरव्यू देने के लिए तैयार। डरपोंक वाले से पहला सवाल किया गया, बोले हाँ साहब आपका नाम बताइए, बोले साहब शाहजहां। बोले आपका जन्म कब हुआ, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए, जन्म तिथि, बोले साहब प्रयास तो 1857 से था, 1947 में हो ही गया। बोले भैया पागल आगल हो गए क्या, तुम्हारा दिमाग खराब होगा? बोले साहब वैज्ञानिकों की भी यही राय है लेकिन इसे सिद्ध नहीं कर पाए आज तक।
1: दो महिलाएं आपस में बात कर रही हैं, काय भाई जे तो माँ मोड़ा समझो इतो बड़ो हो गो, अबे हम कितने साल पहले देखे थे तो कितो छोटो रहो, नहीं अब कितो बड़ो हो गो। हाँ भाई का बताए, अब जब मोड़ा हम आओ समझो कि बड़ो तो हो गो है मल, बिल्कुल ऐसो बिल्कुल भाई, मोड़ा हम आओ सनक सो गो पगला सो हो गो। काय भाई का बात है, तुम आओ तो मोड़ा पहले तो छोटो सो दिखा तो अभी तो बड़ो हो गो, का भाई बड़ो ना हुए तो बड़ो हो गो, नहीं तो जा संतोष कहाओ, जो संतोष है तुम आओ,

0: हाँ भाई संतोष सही तो है भाई। भगवान का सम इतो बड़ो होगा, इतो सो देखो तो। हाँ इतो बड़ो, कितो बड़ो होगा भाई, इसकी उम्र कितनी कहला गई। अब जा समझ लो भाई कि इनकी उम्र तो हमें याद नहीं। नहीं भाई मतलब कौन से सन में पैदा हुआ जे पूछ रहे। नहीं भाई अब सनन तो हम नहीं जाने, अब भूल जाते हैं, इतनी उम्र हो गई। मैंने जे समझ लो कि जौन दिना हमारी सास मरी थी वही दिना जो संतोष भाव जा समझ लो कि उतने सास मरी है और इतने हमें संतोष भाव नहीं मगर ना वो हमने डेट पूछ रहे हैं कि किस डेट को हुआ है, किस सन में हुआ है, ये हमको जानना जरूरी है। नहीं भाई अब जे समझ लो कि डेट तो मालूम नहीं है, अब जे समझ लो कि जब हमारे छोटे वाले देवर को मैंने चोरी के सजा में इल्जाम में सजा भई थी तब ही हमारा संतोष भाव, हमको संतोष भाव नहीं भाई तुझे समझो कि कौन से साल में कहलाओ कि मैंने 74 में कहलाओ कि 75 में कहलाओ। नहीं भाई अब जब 75 और 78 तो हम नहीं जाने, मगर जब समझ लो कि जो हमारे जेठ सास के भी जेठ लगते ना तो वो जेठ को हमारे उनके घर में वो फांसी लगा के उनकी बड़ी बड़ी लड़कियां खत्म हो गई थी तब हमें संतोष बहुत मैंने जब जब जे घटनाएं घटी हैं हमारे घर में कि कौन को फांसी लगवा के मारो कि कौन जे हमाओ हथकड़ी में चलोगा अंदर तो ये जैसे जे काम भाव और इतने हमें संतोष भाव दो व्यापारी जो एक गुड़ और राशन का सामान बेचा करता था और दूसरा जो सिर में और हाथ पैर में लगाने वाले तरह तरह के तेलों का व्यापार किया करता था। इन दो व्यापारियों की एक छोटी सी घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसमें दोनों अपनी अपनी दुकान में बैठे रहते हैं और ग्राहकों की कमी से परेशान रहते हैं। ना तेल वाले के पास तेल का ग्राहक आ रहा है, ना गुड़ वाले के पास गुड़ का ग्राहक आ रहा है। अचानक दोनों एक ऐसा एक प्लान बनाते हैं कि गुड़ वाला तेल वाले को अपने पास बुलाता है और उससे बोलता है, देखो तेल वाले, तुम भी अपनी दुकान में खाली बैठे रहते हो और मैं भी अपनी दुकान में खाली बैठा रहता हूँ, तो क्यों ना एक काम किया करें, हम तुम्हारी दुकान में आएंगे ग्राहक बनकर और तुम हमारी दुकान में आओगे ग्राहक बनकर। उससे क्या होगा? अरे साहब उससे क्या होगा, चार लोग देखेंगे तो उनको भी ऐसा लगेगा कि भैया की दुकान में ग्राहक आते ही आते रहते हैं। ये आइडिया दोनों को जम जाता है तो गुड़ वाला तेल वाले को अपने पास बुलाता है कि पहले तुम हमारी दुकान में कुछ खरीदने के लिए आओ। तेल वाला ऐसे ही उसकी दुकान में आता है और उससे सवाल करता है, क्यों भाई साहब ये गुड़ कैसे दिए? ये साहब तरह तरह के गुड़ हैं, ये गुड़ 40 रुपए किलो है, ये गुड़ 30 रुपए किलो है और ये वाला गुड़ 35 रुपए किलो है। तो एक काम कीजिए साहब, ये वाला गुड़ हमको दे दिए 2 किलो बोतल में। बोतल में? अरे यार तेल वाले व्यापारी भाई, तुम्हारी बुद्धि भी बोतल ही में है? तुम तेल बेचते हो तो तुम्हें हमेशा बोतल याद रहती है, गुड़ कभी बोतल में बेचा जाता है? अरे गुड़ के लिए आदमी घर से थैला लाता है, थैला थैला, समझे? तुमको ये बोलना चाहिए कि भाई हमको थैले में गुड़ चाहिए तो तुम बोल रहे हो कि बोतल में है। तुम एक फिर से आओ, फिर से जाओ, फिर से जाओ, अब फिर से आना हमारी दुकान में, हम बैठे, अब सुधार के बोलना। दोबारा तेल वाला आता है गुड़ की दुकान में, फिर वही सवाल करता है, साहब वो गुड़ चाहिए था? हाँ कितना चाहिए था, कौन सा चाहिए था? साहब ये वाला क्या भाव? हाँ ये 30 रुपए किलो है। साहब ये वाला 2 किलो दे दो बोतल में। अरे यार फिर बोतल में बोल दिया, तुम बोतल क्यों जोड़ते हो साथ में? एक बात समझ में नहीं आती, तुम व्यापारी हो तेल के है तो तुम अच्छा एक काम करो, तुम हमारी सीट में आके बैठो, हमारी दुकान में तुम बैठो और हम अपनी ही दुकान में तुम्हारे सामने आके ये जाके सवाल करते हैं, देखो कैसे बोलते हैं। देखो तुम ऐसे बैठ जा ऐसे, हाँ अब देखो हम आते हैं, हम बोतल बोलेंगे ही नहीं, हम कैसे बोलेंगे? देखो, हाँ भाई साहब ये गुड़ कैसे दिया? गुड़ साहब 20 रुपए किलो। हाँ तो 2 किलो बुड़ दो, 2 किलो तौल दो बस। तो तेल वाला फौरन जवाब देता है, बोतल लाए हो
1: हंसना मना है,
2: हंसना मना है,
1: अरे हंसना मना है,
2: हंसना मना है,
1: कोशिश कोई लाख करे, कहता रहे कि हंसना मना है मगर लोग हंसेंगे खिलखिलाएंगे। एक बात तो आपसे हम खास तौर पे कहना चाहते थे जो भूल रहे हैं, अरे इस कार्यक्रम का नाम है
2: हंसना मना है।

0: चुटकुले सुनना सुनाना संजय गायकवाड़ की आदत में शुमार है, मगर अंदाज बड़ा अलग। सुनेंगे तो मजा आ जाएगा, आइए सुनते हैं।
1: अभी शादियों का सीजन चल रहा था साहब, तो मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गया। श्रीवास्तव जी के यहाँ रिसेप्शन हमें अटेंड करना था, मैं अपने दोस्त के यहाँ गया। मैंने दरवाजे पे आवाज दी, तिवारी जी, तिवारी जी। तो दरवाजा खोला, तिवारी जी रात को 8:30 बजे सो के उठे। अरे हमने ठीक से तो हो जाओ यार। कहो भाई कैसे? अरे हमने कहा यार श्रीवास्तव जी क्या रिसेप्शन में चलना नहीं है क्या? तो तिवारी जी हमसे कहने लगे, यार भैया हम ना चल सकेंगे यार, हमें क्या है चश्मे के बगैर कुछ दिखता नहीं है, हैं शाम के समय हमें रतौंधी आती है, तो क्या है हमारा चश्मा हो गया, फूट गया है, तो इसलिए हम तो चल नहीं सकेंगे। अरे हमने कहा हद कर रहे यार तिवारी जी, आप हमारे साथ में चलो, हैं कोई गिद्ध भोजन तो है नहीं, डाइनिंग टेबल पर भोजन लगा रहेगा, आप चलना, बैठ जाना हमारे बाजू में और चल के भोजन शुरू कर देना। तो तिवारी जी हमसे बोले, लेकिन यार भैया ये कैसे पता चलेगा यार कि सबने शुरू कर दिया? हमने कहा हद करते हो आप, जब सब लोग शुरू कर देंगे तो धीरे से हम आपको कोहनी मार देंगे, आप समझ लेना मामला शुरू हो गया है, हाथ का इशारा हम आपको कर देंगे धीरे से। तो तिवारी जी बोले हाँ यार ये बहुत बढ़िया स्टाइल है। सभी लोग मेहमान आ चुके थे श्रीवास्तव जी के यहाँ, हम पहुँचे साथ में तिवारी जी पहुँचे, सभी की थालियों में मीठा मिष्ठान रखा जा चुका था। उसी वक्त मेरे गले पे यहाँ एक मच्छर बैठा, मैंने मच्छर को भगाया, बाजू में तिवारी जी बैठे थे, धोखे से कोहनी लग गई। भैया क्या समझे कि शुरू? हमें बड़ा अपमान लगा, हमने मना करने के लिए इनको दो कोहनी मारी, हमने मना करने के लिए इनको दो कोहनी मारी, तो ये क्या समझे कि लोग जल्दी जल्दी खा रहे, तो जो जल्दी जल्दी खाने लगे और ज्यादा अपमान। हमने मना करने के लिए इनको तीन कोहनी मारी, तो जो कहते कहा भैया गायकवाड़ का लूटा मारी मच गई का। अब साहब एक बहुत अच्छा व्यंग मैं अब आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जैसा कि पूरे हिंदुस्तान में इस समय चुनाव की सरगर्मी है, एक नेता जी अपने 4 साथियों के साथ जनसंपर्क के लिए निकले और तरह तरह के लोगों से मिलना जुलना और वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ना शुरू कर दिया। भैया जी याद रखना 24 तारीख को भूलना नहीं, बहन जी हाँ आप भी याद रखना, भाई लालटेन याद रखना भूलना नहीं, माता जी 24 तारीख को भूलना नहीं। तो माता जी न जाने कौन से मूड में थी, अचानक कहने लगी,
2: अरे चाव रे तुम्हारे ऊपर से तो हमारा विश्वास ही उठ गया, 5 साल में एक बार तो शकल दिखाते हो और नेता बन जाने के बाद में सब बिल्कुल जनता का ध्यान ही भूल जाते हो, और हमें तो बिल्कुल तुम लोग को कोई को वोट नहीं देना, सब ने अपना अपना घर भरा है और हम किसी को वोट नहीं देंगे, समझ गए ना, हमें तो भ्रष्टाचारियों से बिल्कुल सख्त नफरत है। तो नेताजी को गुस्सा आ गया, लेकिन उन्होंने अपनी नेता बुद्धि दौड़ाई और बहुत सहज तरीके से माता जी के सामने हाथ जोड़ के कहा, नहीं नहीं माता जी आप ये कैसी बात कर रही हैं, हैं आप बताइए, देश में ये इतने सारे नेता हैं, ये 5 उंगलियां हैं मेरे हाथ की, सब एक समान है क्या? नहीं है, हैं देखो ऐसे ही देश में बहुत सारे नेता हैं, तो कोई लोग भ्रष्टाचारी हैं, कुछ लोग नहीं हैं, और जो नहीं है वो ही तो हम हैं। आप तो 24 तारीख को हमारी को वोट दो। अब व्यंग्य पे आइए साहब, बिल्कुल मौलिक व्यंग्य दे रहा हूँ। माता जी नेता जी की बात सुन के कहने लगी,
3: बेटा मजबूरी महिला को बता रहे हो कि जे उंगलियाँ छोटी हैं कि बड़ी हैं, मैंने भी जे बाल धूप में सफ़ेद नहीं करे, मैं भी जानती हूँ कि उंगलियाँ छोटी बड़ी हैं, लेकिन आज से तुम भी इतना जान लो कि जब खाती हैं तो सब खट्टी तो हो जाती हैं।
1: और साहब मिमिक्री का एक छोटा सा मौलिक आइटम मैं पेश कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने घर में कुत्ता पाल के रखा है, हम लोग मराठी भाषा में बात करते हैं, हमारे घर का कुत्ता। हमारे हिंदुस्तान का संस्कार देखे कि हमारी भाषा को देख सुन के मराठी बोलने लगा। हमारे घर के थोड़ा सा आगे एक डेनियल परिवार रहता है, क्रिश्चियन फैमिली रहती है, उनके घर में थ्रू आउट अंग्रेजी का चलन है, उन लोग अंग्रेजी भाषा में बात करते हैं। उनके घर का कुत्ता जो है साहब, उनकी अंग्रेजी भाषा को देख सुन के अंग्रेजी बोलने लगा। सुबह का वक्त मैं अपने घर के कुत्ते को घुमाने के लिए निकला और डेनियल साहब अपने घर के

0: कुत्ते को घुमाने के लिए निकले। हम और डेनियल साहब आपस में मिले तो बातें शुरू हो गईं, लेकिन मेरे घर के कुत्ते को पहली बार डेनियल साहब के घर के कुत्ते ने देखा तो उसने अंग्रेजी में प्रश्न किया और हमारे घर के कुत्ते ने मराठी में जवाब दिया। ये अंग्रेजी प्लस मराठी, ये मौलिक आइटम मिमिक्री का मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनेंगे साहब। पहले सुबह का वक्त, मेरे घर का कुत्ता डेनियल साहब के घर के कुत्ते ने जैसे ही हमारे घर के कुत्ते को देखा तो अंग्रेजी में प्रश्न किया। कौन हो तुम? हमारे घर का कुत्ता तुरंत मराठी में बोला, भाऊ।
1: और दोस्तों, हंसने हंसाने का ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, मगर आज यहीं आपसे इजाजत मांगता है आपका दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।

0: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक हंसना मना है की दूसरी कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रदेश के 18 जिलों में नर्मदा जयंती कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अब नर्मदा समग्र की बैठक हर महीने होगी। उन्होंने नर्मदा परिक्रमा पथ पर मार्ग संकेतक लगाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रदेश में इन दिनों स्कूल चलो अभियान चल रहा है। 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान अधिकाधिक सांदीपनि विद्यालय भवनों का लोकार्पण एवं स्कूलों का युक्तियुक्तकरण कराया जाए ताकि विद्यार्थियों को इसी सत्र में अधिकतम लाभ मिल सके। प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की नामांकन भरने की अंतिम तिथि 13 जुलाई है। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को मतगणना के साथ नतीजों की घोषणा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के सभी धार्मिक महत्व के तीर्थस्थलों पर विकास के लिए धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटल मार्गों से शुरू हो गई है। 28 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान पूरे देश से लाखों श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज सुबह अनंतनाग जिले के नुनवान और बालटल के बेस कैंप से रवाना हुआ। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला रविवार को लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा और बीसीसीआई ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति महिला कार्यक्रम।

गलतियों पर रोने से कुछ नहीं बदलता, उनसे मिली सीख जिंदगी बदल सकती है। अतीत से सबक लेकर वर्तमान को जीना ही एक बेहतर भविष्य की नींव है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज

का महिला सभा लेकर मैं हूँ आपके साथ आपकी बहन मंजू व्यास। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहनों बिल्कुल सही बात है, यदि हम अपने वर्तमान में जीना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से हम सुखी हो जाएंगे। ना तो आने वाले कल का सोच करें, ना ही बीते हुए कल का अफसोस, मात्र वर्तमान को सुधारने का प्रयास करें। और अगर वर्तमान सुधारना है तो निश्चित रूप से हमें एक स्टार्टअप की जरूरत होती है। और स्टार्टअप अगर छोटे से उद्योग से हो, अपने घर से हो, तो हम महिलाओं के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे 16 जनवरी 2016 को देश में नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर प्रदान करने और एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए शुरू किया गया था। DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को शुरुआती 3 वर्षों तक आयकर यानी इनकम टैक्स में छूट और एंजल टैक्स से छूट मिलती है। पर्यावरण और श्रम कानूनों के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए स्वप्रमाणन की सुविधा भी दी जाती है। फंड ऑफ फंड्स और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के जरिए वित्तीय और सीड फंडिंग का प्रावधान भी है। बहनों स्टार्टअप की पात्रता भारत में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म के रूप में स्थापित होना चाहिए। कंपनी के रजिस्ट्रेशन या स्थापना को 10 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी भी वित्तीय वर्ष में कंपनी का वार्षिक कारोबार 100 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। कंपनी नए उत्पादों, सेवाओं या प्रक्रियाओं का विकास, विस्तार या व्यवसायीकरण की इस दिशा में काम कर रही हो। स्टार्टअप इंडिया भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। इसका उद्देश्य युवाओं और महिलाओं को सफल उद्यमी बनाने के लिए प्रेरित करना है। नए स्टार्टअप्स के आने से कई उद्योग स्थापित होंगे, जिनसे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और देश में बेरोजगारी की जो समस्या है वो भी कम होगी। ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योगों को बढ़ावा, सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र में हर युवा को, हर महिला को लाभ मिलेगा जो काम करने का इच्छुक है। घरों से ही लघु कुटीर उद्योग संचालित करना चाहते हैं उन युवाओं को और उन महिलाओं को भी एक मजबूत प्लेटफॉर्म मिलेगा। उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना गारंटी के लोन मिल पाए और अपने उत्पादों को उचित मूल्य पर बाजार में बेच पाएंगे। जब भारत में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और हस्त निर्मित वस्तुओं को ऑनलाइन बाजार में भेजा जाएगा तो इससे भारत को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी और सरकार की आय भी बढ़ेगी। स्टार्टअप इंडिया सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं में से एक है, जिसने स्वर्णिम भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहनों आज जरूरत है स्टार्टअप को विभिन्न प्रयासों के माध्यम से प्रोत्साहित करने की। आज व्यावसायिक शिक्षा को व्यवहार में उतारने की जरूरत है, जिससे महिलाओं में और युवाओं में उद्यमशीलता का विकास हो, वे इसकी अहमियत को समझें और अवसरों का लाभ उठाएं। सरकार को आवश्यकता है कि स्टार्टअप से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का जमीनी स्तर पर प्रसार हो, सरकारी निजी बैंकों का सशक्तिकरण हो जिससे ऋण प्राप्त करने में आसानी हो, हर ग्रामीण शहरी क्षेत्र के युवा, अशिक्षित महिला पुरुष को इस योजना की बारीकियों के बारे में जानकारी दी जाए ताकि वे भविष्य में रोजगार का निर्माण कर सकें। मैंने ये तो थी संक्षिप्त सी चर्चा, और अब ले चलते हैं आपको मनोरंजन की ओर और सुनवाते हैं फिल्म आशिकी 2 में अरिजीत सिंह की आवाज में ये सुरीला सा गीत। गीत और संगीत मिथुन का है।

0: बहनों, हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारी मानसिकता, हमारा समाज को देखने का नजरिया, हमारी चारों ओर फैली हुई विरक्तियाँ, प्रकृति का मनोरम दृश्य जो आत्मा को छू जाता है, हमारी भावनाएं और हमारा मानसिक चित्रण जब कलम के सहारे कागज पर उतर आता है तो वह कविताओं का रूप ले लेता है। और ये कविताएं उस कवि की मनोदशा को व्यक्त करती हैं, उसकी सोच को निखारती हैं, उसकी भावनाओं को व्यक्त करती हैं जो उन्हें लिखता है। तो चलिए, ऐसी ही कुछ कविताओं का संग्रह लेकर आए हैं हम अपने कार्यक्रम काव्य पाठ के अंतर्गत। तो चलिए आपको सुनवाते हैं कवित्री सौम्या श्रीवास्तव से उनके विचार उनकी कविताओं के रूप में।
1: नमस्कार, मैं सौम्या श्रीवास्तव आज आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से आपके बीच एक गीत लेकर आई हूँ। ये गीत युवाओं के उत्साहवर्धन का गीत है, प्रोत्साहन का गीत है। कभी कभी ऐसा होता है जब हमारा मन बहुत उदास होता है, मन में अवसाद होता है और तरह तरह के विचार मन में आते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कभी आप उत्साहवर्धन का गीत गुनगुना लेते हैं तो आपका मन कहीं ना कहीं इस अवसाद से बाहर आ जाता है। लीजिए, मैं आपको गीत सुनाती हूँ, सुनिएगा। मन प्रखर हो गीत गाओ, गीत गाओ, मन प्रखर हो गीत गाओ, गीत गाओ। जब क्षितिज पर

घनघटाएं छा रही हों, जब दिशाएं संशयों की गर्जनाएं गा रही हों, तब स्वयं दीपांकुरित हो ज्योति बन मन, तब स्वयं दीपांकुरित हो ज्योति बन मन, दीप्ति की संभावना के गीत गाओ, मन प्रखर हो गीत गाओ, गीत गाओ, मन प्रखर हो गीत गाओ, गीत गाओ। जब लगे कि पंथ लंबा है, शिखर अब दूर हो।

और जीवन का समर निष्ठुर कठिन भरपूर होगा, तब हिमालय सा अचल बन धैर्य धर्मन, तब हिमालय सा अचल बन धैर्य धर्मन, होके अविचल साधना के गीत गाओ, मन प्रखर हो गीत गाओ, गीत गाओ, मन प्रखर हो।

और निराशा मौन होकर चेतना संघारती हो, तब पुनः उठकर नई हुंकार भर मन, तब पुनः उठकर नई हुंकार भर मन, नव विजय नव आस था के गीत गाओ, गीत गाओ गीत गाओ गीत गाओ, मन प्रखर हो गीत गाओ गीत गाओ। हार अंतिम सत्य ना है, पंथ का व्यवधान भर है, स्वेद पीड़ा और साहस ही विजय का मूल स्वर है। हार अंतिम सत्य ना है, पंथ का व्यवधान भर है, स्वेद पीड़ा और साहस ही विजय का मूल स्वर है। उठ स्वयं इतिहास के नव पृष्ठ रच मन, उठ स्वयं इतिहास के नव पृष्ठ रच मन, नव विजय की कामना के गीत गाओ, मन प्रखर हो गीत गाओ गीत गाओ, मन प्रखर हो गीत गाओ गीत गाओ। जब प्रलोभन स्वर्ण मृगबन मार्ग बाधित कर रहा हो, और अधर्मी पथ सरल कर मोह जागृत कर रहा हो, जब प्रलोभन स्वर्ण मृगबन मार्ग बाधित कर रहा हो, और अधर्मी पथ सरल कर मोह जागृत कर रहा हो, तब विवेकी राम बनकर शांत हो मन, तब विवेकी राम बनकर शांत हो मन, धैर्य के सद्भावना के गीत गाओ, धैर्य के सद्भावना के गीत गाओ, गीत गाओ गीत गाओ गीत गाओ, मन प्रखर हो।

जब हम जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, बहुत सारे संघर्ष होते हैं, लेकिन जीवन का नाम ही चलते रहना है, तो हमें उन चुनौतियों को, उन संघर्षों को पार करके बस आगे बढ़ते रहना है, चलते रहना है। इसी पर केंद्रित मेरा एक गीत है, सुनिएगा। सैकड़ों तूफान होंगे, सैकड़ों तूफान होंगे, बन अडिग लड़ना पड़ेगा। सैकड़ों तूफान होंगे, बन अडिग लड़ना पड़ेगा। शांति पथ के ऐ पथिक तुमको बहुत चलना पड़ेगा। सैकड़ों तूफान होंगे, शांत पुरवाई के झोंके हो सदा बहते रहो तुम। शांत पुरवाई के झोंके हो

बन अमिट विश्वास, हर कठिनाई को सहते रहो तुम, हर परिस्थिति में तुम्हें, हर परिस्थिति में तुम्हें दृढ़ शैल बन ढलना पड़े।

हर परिस्थिति में तुम्हें दृढ़ शैल बन ढलना पड़ेगा। शांति पथ के ऐ पथिक तुमको बहुत चलना पड़ेगा। सैकड़ों तूफान होंगे बन अडिग लड़ना पड़ेगा। शांति पथ के ऐ पथिक तुमको बहुत चलना पड़ेगा। सैकड़ों तूफान होंगे। छूट जाएंगे महल सब सिर्फ मृग तृष्णा मिलेगी। छूट जाएंगे महल सब सिर्फ मृग तृष्णा मिलेगी। तुम करोगे आस पावस की।

शांति पथ के ऐ पथिक तुमको बहुत चलना पड़ेगा, सैकड़ों तूफान होंगे सैकड़ों।

बहनो, अभी हम सुन रहे थे काव्य पाठ सौम्या श्रीवास्तव से। बहनो, जितना जरूरी गीत संगीत और मनोरंजन है हमारे मन और मस्तिष्क के लिए, उतना ही जरूरी योग और व्यायाम है हमारे शरीर के लिए। जी हाँ, आज की इस आधुनिक दुनिया में अनगिनत महिलाओं को लगातार अपने करियर, पारिवारिक जिम्मेदारियों और व्यक्तिगत आकांक्षाओं के बीच उलझना पड़ता है, जिससे उनके पास अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए बहुत कम या बिल्कुल भी समय नहीं बचता। महिलाओं के लिए योगासन तनाव कम करने, भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार करने, अच्छी नींद को बढ़ावा देने और सकारात्मक स्वास्थ्य आदतों को विकसित करने में मदद करते हैं। मैंने नियमित रूप से योग करने से संतुलन और लचीलापन बेहतर होता है, हमारा पोस्चर सुधर जाता है। महिलाओं में किशोरावस्था से लेकर मातृत्व और मेनोपॉज वाली उम्र से लेकर बुढ़ापे तक कई दौर से महिलाओं को गुजरना पड़ता है। ऐसे में योग जहां शारीरिक तौर पर संतुलन बनाए रखता है, तो वहीं इससे मानसिक तौर पर शांति भी मिलती है। मैंने योगासन प्राणायाम महिलाओं के स्वास्थ्य को ठीक करता है, बल्कि मानसिक परिवर्तन और शारीरिक असंतुलन जैसी आने वाली समस्याओं से निपटने में भी बेहद कारगर है। महिलाओं के लिए सबसे अच्छे व्यायामों में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो और योग का संतुलित मिश्रण जरूरी है। उम्र बढ़ने के साथ महिलाओं में हड्डियों के कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है। योग जैसे त्रिकोणासन, वीरभद्रासन करके हम अपनी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं। मोटापा, थायराइड और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में भी योग और प्राणायाम अत्यंत लाभकारी हैं। मैनों, हम सभी को रोजाना अपनी क्षमता के अनुसार 20 से 30 मिनट योगासन और प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना चाहिए। नियमित योगाभ्यास से मांसपेशियों का तनाव कम होता है, जोड़ों में लचीलापन बढ़ता है और शारीरिक मुद्रा में सुधार होता है। योग ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल की धड़कन को नियंत्रित कर हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में भी मददगार है। बहनों, ये शरीर की मांसपेशियों को टोन करता है, सहन शक्ति बढ़ाता है और पाचन में सुधार करके वजन को संतुलित रखने में मदद करता है। ध्यान और श्वास नियंत्रण मस्तिष्क को शांत करते हैं, जिससे फोकस और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और गठिया, माइग्रेन जैसी पुरानी समस्याओं में भी योग बहुत फायदेमंद साबित होता है। तो बहनों, योग करें, निरोग रहें, और जब आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेंगी तो निश्चित रूप से योग का जादू आपके सर चढ़कर बोलने लगेगा। आप खुद स्वतः इसके लिए समय को चुराने लगेंगी और योग में रंगीली हो जाएंगी।

मैंने अभी हम सुन रहे थे फिल्म कुदरत में लता मंगेशकर की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गीत, संगीत आरडी वर्मन का था। मेरे देखिए ना, हम सभी गर्मियों में अपने पूरे साल के लिए अनाज का भंडारण करते हैं, और यदि उसका भंडारण सही तरीके से ना करें तो उसमें घुन या कीड़े लग सकते हैं, और इसका विशेष ध्यान हमको रखना ही पड़ता है। अगर नहीं रखेंगे तो बाद में हमारा अनाज घुन जाएगा। अनाज का सुरक्षित भंडारण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है नमी और तापमान को नियंत्रित रखना। अनाज में 10% से कम नमी होनी चाहिए। भंडारण के डिब्बों या कमरों को पूरी तरह एयर टाइट यानी हवा बंद रखें, और बोरियों को जमीन या दीवारों से सटाकर ना रखें। मैंने अनाज को 2 से 3 दिन धूप में सुखाएं ताकि उसकी नमी का जो स्तर है वो 10% से नीचे आ जाए। नमी होने पर फंगस और कीड़े जल्दी लगते हैं। नीम की पत्तियां या नीम के पाउडर का उपयोग भी हम कर सकते हैं जो कीड़ों को दूर भगाता है। आप अनाज में थोड़ा सा सरसों का तेल या सूखी लकड़ी की राख भी मिलाकर रख सकते हैं। यदि आप बड़ी मात्रा में भंडारण कर रहे हैं तो कीटनाशक गोलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि गोली रखने के बाद कंटेनर या कमरा पूरी तरह से एयरटाइट हो। गोदाम या भंडारण कक्ष के सभी संभावित रास्तों को जाली या सीमेंट से बंद कर दें। भंडार गृह में पर्याप्त हवा के आवागमन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि तापमान सामान्य रह सके। अगर आप बहनों इतनी सावधानी के साथ अनाज का भंडारण करेंगी तो निश्चित रूप से आपका अनाज पूरे साल सुरक्षित और पौष्टिक रहेगा। बहनों, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि मैं आपसे विदा लूं। चलते चलते आपके साथ दो पंक्तियां, जल्दी जज करना।

आसान है, समझना थोड़ा मुश्किल। बस कोशिश इतनी हो कि लोगों को सुन सकें, सिर्फ देखकर कोई राय ना बनाएं। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब अनुमति दीजिए अपनी रेडियो मित्र मंजू व्यास को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति महिला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात। 1936 से आकाशवाणी आप

0: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम दान।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति लोक संगीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए जयंत विश्वकर्मा के स्वर में साक्षरता बेटी पढ़ाओ गीत।

जयंत विश्वकर्मा के स्वर में अभी आपने सुना साक्षरता बेटी पढ़ाओ गीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए कृष्ण मोहन नायक के स्वर में साक्षरता गीत।

अभी आपने सुना किशन प्रसाद रैकवार के स्वर में साक्षरता गीत। इसी के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 1:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत लीजिए सुनिए सत्यनारायण तिवारी के स्वर में ये भजन।

सत्यनारायण तिवारी के स्वर में अभी आपने सुना कृष्ण भजन। लीजिए अब सुनिए एक भजन, स्वर सत्यनारायण तिवारी का है।

0: सत्यनारायण तिवारी के स्वर में अभी आपने सुना भजन। इसी के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना सुनिए। गठिया रोग एवं अर्थराइटिस और रूमेटोलॉजी क्लिनिक शाहपुरा भोपाल द्वारा अनुबंधित सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच विविध भारती भोपाल से किया जाएगा। इस प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय है, गठिया को जानिए, स्वस्थ जीवन अपनाइए। इस विषय के संबंध में श्रोता अपनी जिज्ञासा के समाधान हेतु दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच इन फोन इन फोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 2660901 और 2660902। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। दिन व समय एक बार पुनः सुने। दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। फ़ोन नंबर है 2660901 और 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
3: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
3: आकाशवाणी है ना,
5: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
3: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ों में लीजिए सुनिए फिल्म त्रिशूल का गीत। गीत साहिर का है और संगीत है

जूली। इस फिल्म का गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत आनंद बख्शी का है और इसे संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन और बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण और 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला रखना शामिल है। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित करीब 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। शाम को वे गुजरात के सांणंद में 7,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग सुविधा का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पावन अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ पर समस्त

शिव भक्तों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन की तरह यह यात्रा सभी के जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। श्री मोदी ने इस अवसर पर एक संस्कृत श्लोक भी साझा किया जिसका अर्थ है कि जिन भगवान के स्वरूप को वाणी बुद्धि और कठोर तपस्या से भी नहीं जाना जा सकता वे केवल भक्ति भाव से प्राप्त होते हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बाबा बर्फानी आस्था भक्ति और सनातन संस्कृति के गौरव के प्रतीक हैं। अमरनाथ यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल मार्गों से शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं का पहला जत्था अनंतनाग जिले के नुनवान और बालटाल बेस कैंप से पवित्र गुफा मंदिर के लिए रवाना हुआ। 57 दिनों की ये पावन यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पर्व पर संपन्न होगी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के श्री रामानुज संस्कृत परिसर रीवा के सशक्तिकरण और संस्थागत विकास संबंधी प्रस्तावों की समीक्षा की। बैठक में परिसर के लिए कुल 243 पदों के सृजन का प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसमें 117 शैक्षणिक, 4 प्रशासनिक और 122 गैर शैक्षणिक पद शामिल हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु के मदापट्टना इलाके की ग्रेनाइट खदान में कल हुए हादसे में प्रदेश के अनूपपुर जिले के 5 मजदूरों सहित कुल 7 लोगों की मौत हुई है जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने जांच के निर्देश दिए हैं और खदान मालिक ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख तथा घायलों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने पर सहमति जताई है। प्रदेश के श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भी घटना की जानकारी मांगी है और कर्नाटक प्रशासन से समन्वय स्थापित किया जा रहा है। शिवपुरी में 5 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करीब 2500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे। तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश के ऊर्जा और जिला प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कल कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद प्रभारी मंत्री ने शहर भ्रमण कर नागरिकों को पीले चावल भेंट करते हुए इस कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया। पन्ना टाइगर रिजर्व के धुंधुआ सेहा क्षेत्र में बाघिन P652 ने 2 शावकों को जन्म दिया है। टाइगर रिजर्व के उपसंचालक वीरेंद्र पटेल ने बताया कि दोनों शावकों की उम्र लगभग 10 दिन है और मां व शावक पूरी तरह स्वस्थ हैं। वन विभाग की विशेष टीम 24 घंटे उनकी निगरानी कर रही है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मानसून कल उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज खंडवा और हरदा के लिए मानसून सीजन का पहला रेड अलर्ट जारी किया है जहां अगले 24 घंटों में 4 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है। वहीं धार, बड़वानी, खरगोन, देवास, बुरहानपुर और बैतूल में भी अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के जनजाति संग्रहालय में आज से भील चित्रकार सुनीता परमार के चित्रों की शलाका प्रदर्शनी शुरू हुई। शिवपुरी के नरवर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 6 स्थानों से 400 ट्रॉली अवैध रेत जब्त की गई। बुरहानपुर के निर्माण रेंज के DIG ने अपराध समीक्षा की बैठक ली और महिला अपराधों तथा साइबर क्राइम पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। पन्ना जिले के अजगर थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 2 मासूम बच्चों सहित एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से झुलस गई हैं। और भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हरा कर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
1: बाबा अमरनाथ बम बम।

0: में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
1: आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
2: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
0: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
3: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कैराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के 2 जबरदस्त भूकंप आए, जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कैराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
5: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
3: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
6: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुड़ी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता के ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
7: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है, ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
3: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
8: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
3: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, जिसे हमने लिया है फिल्म बेवफा से। आवाज़ अभिजीत की है, गीत लिखा है समीर ने और इसे संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने। पसंद भेजी है आप सभी श्रोताओं ने। कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली ने। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म बेवफा का ये गीत।

गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। छत्रपति शंभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म खून भरी मांग का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है साधना सरगम ने, बोल इंदिवर के हैं और संगीत है राजेश रोशन का। लीजिए सुनिए।

इस समय आप सुन रहे हैं आपके पसंदीदा गीतों से सजा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और कार्यक्रम में अब बारी है आपके पसंद के एक और गीत की। फिल्म खिलाड़ी का गीत सुनिए आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज़ों में। गीत लिखा है महेंद्र दहलवी ने और इसे संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने। सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा ने। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का फिल्म खिलाड़ी का ये गीत।

राजावत कॉम्प्लेक्स, नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, रिया स्वीटी चितरंजन, रितिका सरोज आरती और ऋषभ राजावत ने सुनना चाहा है फिल्म कसूर का गीत, जिसे आवाज़ें दी हैं अलका याग्निक और कुमार सानू ने। नदीम श्रवण के संगीत से सजा ये गीत लिखा है समीर ने। लीजिए सुनिए।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

वालों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बाबा बर्फानी आस्था, भक्ति और सनातन संस्कृति के गौरव के प्रतीक हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु के मदापट्टना इलाके की ग्रेनाइट खदान में कल हुए हादसे में प्रदेश के अनूपपुर जिले के 5 मजदूरों सहित कुल 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शिवपुरी में 5 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करीब 2,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे। मौसम विभाग ने आज खंडवा और हरदा के लिए इस मानसून सीजन का पहला रेड अलर्ट जारी किया है, जहां अगले 24 घंटों में 4 से 8 इंच तक की बारिश हो सकती है। और भारत और श्रीलंका के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में और दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा समाप्त करने से पहले श्रोताओं, हम आपको बता दें हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 पर। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति है। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:00। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुनेंगे शाम 7:21 पर। इसके अंतर्गत सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीत और आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। रात 8:00 आप सुनेंगे सुर्खियों में। रात 9:30 पर कार्यक्रम खेल जगत के अंतर्गत आज सुनिएगा ताइक्वांडो की वर्तमान स्थिति और संभावनाएं, इस विषय पर आलोक मिश्रा से की गई भेंटवार्ता। भेंट करता है मनीष गजभिये। और क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10:00 से। ये थी जानकारी हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव ओटीटी ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5:00 अपने विविध कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

0: मीडियम वेव 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 5 बजने को है। हमारी शाम की सभा की शुरुआत हम करते हैं इस घंटे की खास खबरों से।
1: सरकार ने बैट बीएमएस, इपोक डाईआयन और लॉसगी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्लीकेशन का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद बीएआरसी को समाचार और गैर समाचार दोनों श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। नई व्यवस्था के अनुरूप पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित होने और लाइसेंस के नवीनीकरण के बाद ही टेलीविजन रेटिंग का प्रकाशन फिर से शुरू किया जा सकेगा। इस्पात मंत्रालय इस माह की 9 तारीख को नई दिल्ली में इस्पात आयात से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए एक ओपन हाउस सम्मेलन आयोजित करेगा। मंत्रालय ने कहा कि कंपनियां और संगठन इस दिन इस्पात आयात से संबंधित अपनी समस्याओं की चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत अब तक हुए कार्यक्रमों की मंत्रालय में समीक्षा करते हुए कहा कि किसानों का कल्याण राज्य सरकार का कर्तव्य है। खेती की लागत कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए गतिविधियों को प्राथमिकता पर लिया जाना आवश्यक है और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा पर्यटन क्विज 2026 का आयोजन किया जा रहा है। जिला स्तरीय इस क्विज में भाग लेने के लिए विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन 1 जुलाई से 25 जुलाई तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं युवाणी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर का योगदान है।

साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे युववाणी कार्यक्रम में। आज मैं हूँ आपके साथ पारुल पटेरिया, तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, स्वास्थ्य मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, इसलिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और अच्छी जीवन शैली अपनाकर हम लंबे समय तक निरोगी और ऊर्जावान जीवन जी सकते हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे संतुलित आहार के बारे में कि संतुलित आहार किस प्रकार हमारे अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। साथियों, संतुलित आहार शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, इससे शरीर स्वस्थ और मजबूत बना रहता है। संतुलित आहार बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इससे उनकी सीखने की क्षमता भी बढ़ती है। साथियों, संतुलित आहार मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग जैसी समस्याओं के जोखिम को कम करता है। ये स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देता है। हरी सब्जियां, फल, दालें और दूध शरीर को आवश्यक विटामिन और खनिज प्रदान करते हैं। ये शरीर के सभी अंगों के लिए लाभकारी होते हैं। साथियों, पर्याप्त मात्रा में पानी और रेशेदार भोजन पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। साथियों, संतुलित आहार त्वचा, बाल और आंखों के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है, इससे व्यक्ति अधिक स्वस्थ और आकर्षक दिखाई देता है। साथियों, संतुलित आहार स्वस्थ जीवन की कुंजी है। संतुलित आहार अपनाकर हम स्वस्थ, सक्रिय और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। ये अच्छे स्वास्थ्य की सबसे सरल और प्रभावी आदत है। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी स्वास्थ्य सुझाव से संबंधित। कार्यक्रम श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और दे देते हैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। साथियों, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून सन 2020 को की गई। ये योजना शहरी सड़क विक्रेताओं के लिए शुरू की गई थी। साथियों, इसका मुख्य उद्देश्य छोटे व्यापारियों को बिना गारंटी के आसान ऋण उपलब्ध कराना है, इससे वे अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चला सकें। साथियों, ये योजना रेहड़ी पटरी वाले, फल सब्जी विक्रेता, चाय नाश्ता विक्रेता और अन्य छोटे व्यापारियों के लिए है। इससे लाखों लोगों को लाभ मिलता है। साथियों, इस योजना के तहत पहली बार 10,000 रुपए तक का कार्यशील पूंजी ऋण दिया जाता है। समय पर भुगतान करने पर अधिक राशि का ऋण भी मिलता है। साथियों, समय पर ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को 7% तक ब्याज सब्सिडी दी जाती है, इससे उनकी आर्थिक बचत होती है। साथियों, ये योजना डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करती है। डिजिटल लेन देन करने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलती है। साथियों, ये योजना छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनने और अपने व्यवसाय का विस्तार करने में सहायता करती है, इससे उनकी आय में वृद्धि होती है। साथियों, ये योजना छोटे व्यापारियों को साहूकारों के ऊंचे ब्याज से बचाती है, उन्हें बैंकिंग व्यवस्था से जोड़कर आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। इस योजना से छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलता है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। साथियों, ये योजना गरीब और छोटे व्यापारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये समावेशी विकास और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत करती है। साथियों, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना छोटे सड़क विक्रेताओं के लिए एक प्रभावी और लाभकारी योजना है। ये उन्हें आर्थिक सहायता, सम्मानजनक आजीविका और आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करती है। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम करवा देते हैं आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म सनम रे से ये गीत, जिसमें आवाज थी अरमान मलिक और पलक मुछाल की, गीतकार थे मनोज यादव और संगीत से सजाया था अमाल मलिक ने। साथियों, कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम सुनवा देते हैं आपको वार्ता मानसिक स्वास्थ्य और युवा विषय पर, जिसमें वार्ताकार होंगी अदिति शुक्ला।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में चर्चा तो बहुत कम होती है, लेकिन इसका प्रभाव हमारे जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। हमारा आज का विषय है मानसिक स्वास्थ्य और युवा। जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में शारीरिक स्वास्थ्य का विचार आता है। हम संतुलित भोजन, व्यायाम और बीमारी से बचाव की बात करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य केवल शरीर तक सीमित नहीं है। हमारा मन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा शरीर। यदि शरीर स्वस्थ हो और मन परेशान हो तो जीवन में खुश रहना कठिन हो जाता है। आज का युवा पहले की तुलना में अधिक शिक्षित, अधिक जागरूक और तकनीक से अधिक जुड़ा हुआ है। उसके पास अवसर भी अधिक हैं और सपने भी बड़े हैं, लेकिन इसके साथ साथ चुनौतियां और दबाव भी बढ़ गए हैं। पढ़ाई का दबाव, करियर की चिंता, कंपटीशन, पारिवारिक अपेक्षाएं, आर्थिक समस्याएं और सोशल मीडिया का प्रभाव, ये सभी बातें युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ केवल मानसिक बीमारी का ना होना नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना। ये हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। हम तनाव से कैसे निपटते हैं, दूसरों के साथ कैसे संबंध बनाते हैं और जीवन के फैसले कैसे लेते हैं, ये सब हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। दोस्तों, युवा अवस्था जीवन का एक ऐसा चरण है जहाँ व्यक्ति कई बदलावों से गुजरता है। ये वह समय है जब सपने आकार लेते हैं, पहचान बनती है और भविष्य की दिशा तय होती है, लेकिन यही समय कई बार भ्रम, असुरक्षा और तनाव का कारण भी बन जाता है। आज का युवा सफलता पाना चाहता है, लेकिन सफलता की दौड़ इतनी तेज हो चुकी है कि कई बार वह स्वयं को ही भूल जाता है। हर जगह प्रतियोगिता है, स्कूल और कॉलेज में अच्छे अंक लाने की, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता लाने की और भविष्य को लेकर अनिश्चितता युवाओं के मन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। कई युवा ये महसूस करते हैं कि उन्हें हर हाल में सफल होना है। वो अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। जब अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते तो निराशा और आत्मविश्वास की कमी पैदा होने लगती है। धीरे धीरे ये तनाव चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं का भी रूप ले सकता है। दोस्तों, सोशल मीडिया आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारकों में से एक शामिल हो गया है। इसने पूरी दुनिया को हमारी उंगलियों की पहुंच में ला दिया है और इसके अनेक सकारात्मक पहलू हैं, लेकिन इसके कुछ दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। जब युवा लगातार सोशल मीडिया पर दूसरों की उपलब्धियां, खुशहाल पल और सफल जीवन शैली देखते हैं, तो अनजाने में वे अपनी तुलना उनसे करने लगते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि बाकी लोग उनसे अधिक सफल, ज्यादा खुश और बेहतर जीवन जी रहे हैं, जबकि सच ये है कि सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली तस्वीरें और वीडियो किसी व्यक्ति के जीवन का

0: केवल एक हिस्सा होती हैं, पूरी कहानी नहीं। हर चमकती तस्वीर के पीछे संघर्ष की एक लंबी यात्रा होती है। हर उपलब्धि के पीछे कड़ी मेहनत और कई चुनौतियां छिपी होती हैं। किसी के जीवन में सब कुछ हमेशा खुशहाल नहीं होता, इसलिए सोशल मीडिया पर दिखने वाले हर पल को अपनी वास्तविकता का पैमाना बनाना या उसके आधार पर अपने जीवन का आकलन करना उचित नहीं है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और वास्तविक जीवन सोशल मीडिया की दुनिया से कई अधिक अलग होता है। श्रोताओं, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग इसके बारे में खुलकर बात नहीं करते। यदि किसी व्यक्ति को बुखार हो जाए तो वो डॉक्टर के पास जाने में संकोच नहीं करता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मानसिक तनाव, चिंता या अवसाद महसूस करे तो वो अक्सर इसे छुपाने की कोशिश ही करता है। हमारे समाज में अब भी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कई गलत धारणाएं मौजूद हैं। कुछ लोग इसे कमजोरी समझते हैं, जबकि कुछ लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन सच ये है कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। कभी कभी युवा अपनी परेशानियां किसी से साझा नहीं करते। वो सोचते हैं कि लोग उन्हें नहीं समझेंगे या उनका मजाक उड़ाएंगे। परिणाम स्वरूप वो अकेलापन महसूस करने लगते हैं। ये अकेलापन धीरे धीरे मानसिक तनाव को और बढ़ा सकता है। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति कठिन दौर से गुजरता है। उदासी, निराशा या चिंता महसूस करना सामान्य बात है, लेकिन यदि ये भावनाएं लंबे समय तक बनी रहें और हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करने लगें, तो हमें सहायता लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। याद रखिए, मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि साहस की निशानी है। यदि आप तनाव महसूस कर रहे हैं तो सबसे पहले किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। अपने माता पिता, भाई बहन, मित्र, शिक्षक या किसी ऐसे व्यक्ति से अपनी बात साझा करें जिस पर आप विश्वास करते हों। कई बार केवल अपनी बातें कह देने से भी मन का बोझ हल्का हो जाता है। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए कुछ छोटी छोटी आदतें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें, पर्याप्त नींद लें। विशेषज्ञों का मानना है कि युवाओं के लिए प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की नींद आवश्यक होती है। नींद की कमी मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। दूसरा, नियमित व्यायाम करें। व्यायाम केवल हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे मन को भी स्वस्थ रखता है। सुबह की सैर, योग, खेल कूद या कोई भी शारीरिक गतिविधि तनाव को कम करने में मदद करती है। तीसरा, संतुलित भोजन करें। हमारा खान पान भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। पौष्टिक भोजन शरीर को ऊर्जा देता है और मन को भी स्वस्थ रखने में सहायता करता है। चौथा, सोशल मीडिया और मोबाइल के उपयोग पर नियंत्रण रखें। दिन का कुछ समय डिजिटल उपकरणों से दूर बिताइए। परिवार के साथ समय बिताइए, किताबें पढ़िए, संगीत सुनिए या प्रकृति के बीच कुछ समय गुजारिए। अपनी उपलब्धियों और क्षमताओं को पहचानिए। हर व्यक्ति अलग है और हर व्यक्ति की यात्रा भी अलग है, इसलिए अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। श्रोताओं, आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता तो बढ़ रही है। स्कूल, कॉलेज और विभिन्न संस्थानों में इस विषय पर चर्चा अब होने लगी है। ये एक सकारात्मक बदलाव है। जितना अधिक हम इस विषय पर खुलकर बात करेंगे, उतना ही अधिक लोग सहायता के लिए आगे आएंगे। युवाओं को ये समझना होगा कि जीवन केवल उपलब्धियों का नाम नहीं है। जीवन में असफलताएं भी आती हैं, चुनौतियां भी हैं और कठिन परिस्थितियां भी आती हैं। लेकिन इन सब के बीच स्वयं को संभाल कर आगे बढ़ना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन मानसिक शांति उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने मन का ध्यान नहीं रखेंगे तो बाहरी उपलब्धियां भी हमें सच्ची खुशियां नहीं दे पाएंगी। दोस्तों, याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। यदि कभी आपको लगे कि जीवन कठिन हो रहा है तो सहायता मांगने में संकोच न करें। अपने मन की बात कहिए, अपने भावनाओं को स्वीकार कीजिए और स्वयं को समय दीजिए, क्योंकि एक स्वस्थ मन ही एक स्वस्थ समाज और एक उज्जवल भविष्य की नींव रखता है।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता मानसिक स्वास्थ्य और युवा विषय पर, जिसमें वार्ताकार थी अदिति शुक्ला। कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आपका करवा देते हैं मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म खामोशियां से ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी अरिजीत सिंह की, गीतकार थी रश्मि सिंह और संगीत से सजाया था जीत गांगुली ने। साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम दे देते हैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी ताजमहल ऐतिहासिक स्थल विषय पर। साथियों, ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये भारत के

है। साथियों, ताजमहल का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया है। इसकी सुंदर नक्काशी और कलाकारी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। इस स्मारक का निर्माण लगभग 22 वर्षों में पूरा हुआ। इसमें हजारों कारीगरों और कलाकारों ने योगदान दिया। साथियों, ताजमहल की वास्तुकला मुगल, फारसी और भारतीय शैलियों का सुंदर संगम है। इसकी भव्यता देखने योग्य है। साथियों, वर्ष 1983 में यूनेस्को ने ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ये भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथियों, हर वर्ष लाखों देशी और विदेशी पर्यटक ताजमहल देखने आते हैं। इससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। साथियों, सूर्योदय और चांदनी रात में ताजमहल का सौंदर्य और भी मनमोहक दिखाई देता है। इसकी चमक सभी को आकर्षित करती है। ताजमहल भारतीय कला, संस्कृति और इतिहास की समृद्ध पहचान है। ये विश्व में भारत की गौरवशाली छवि प्रस्तुत करता है। साथियों, ताजमहल का संरक्षण और स्वच्छता बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य धरोहर है। साथियों, ताजमहल केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं बल्कि प्रेम, कला और भारतीय संस्कृति का अमर प्रतीक है। इसकी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व इसे विश्व के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में स्थान दिलाते हैं। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी ताजमहल ऐतिहासिक स्थल विषय के बारे में। साथियों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको बता देते हैं हमारी आज की रोजगार सूचना। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है प्रोविजनरी ऑफिसर। पदों की संख्या है 1500। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियम अनुसार दी जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 8 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.sbi.bank.in पर विजिट करें। साथियों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने का, तो दीजिए अपनी मित्र पारुल पटेरिया को इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाणी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है अंतराल का।

इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

बागी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ थी अमित कुमार, अनुराधा पौडवाल की, गीतकार थे समीर, संगीत था आनंद मिलन का।

बागी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ें थी मीट ब्रॉस मोनाली ठाकुर की। गीतकार थे कुमार और संगीत मीट ब्रॉस का था।

ये गीत था फिल्म गुरु से, जिसके लिए आवाज़ थी श्रेया घोषाल की और उदय मजुमदार की। गीतकार थे गुलजार, संगीत AR रहमान का था। हमारी इसी सभा में आप एक बार फिल्म संगीत सुन सकते हैं शाम 6:30 से। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का।

0: और अब एक सूचना। डॉक्टर प्रेक्षा द्विवेदी गठिया रोग विशेषज्ञ एवं आर्थराइट्स और रूमटोलॉजी क्लिनिक शाहपुरा भोपाल द्वारा अनुबंधित सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण 5 जुलाई 2026 को दिन में रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच विविध भारती भोपाल से किया जाएगा। इस प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय है गठिया को जानिए, स्वस्थ जीवन अपनाइए। इस विषय के संबंध में श्रोता अपनी जिज्ञासा के समाधान हेतु दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच इन फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 2660901 और 2660902। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। दिन और समय एक बार फिर से सुन लें। दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच में हमारे फोन नंबर हैं 2660901 और दूसरा नंबर 2660902। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ आकाशवाणी।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
5: सरकार ने बैड बीएमएस इपोक डाई आयन, इपोक आई आयन और लॉसगी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाए गए हैं। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद BARC को समाचार और गैर समाचार दोनों श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। नई व्यवस्था के अनुरूप पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित होने और लाइसेंस के नवीनीकरण के बाद ही टेलीविजन रेटिंग का प्रकाशन फिर से शुरू किया जा सकेगा। इस्पात मंत्रालय इस माह की 9 तारीख को नई दिल्ली में इस्पात आयात से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए एक ओपन हाउस सम्मेलन आयोजित करेगा। मंत्रालय ने कहा कि कंपनियां और संगठन इस दिन इस्पात आयात से संबंधित अपनी समस्याएं चर्चित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत अब तक हुए कार्यक्रमों की मंत्रालय में समीक्षा करते हुए कहा कि किसानों का कल्याण राज्य सरकार का कर्तव्य है। खेती की लागत कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए गतिविधियों को प्राथमिकता पर लिया जाना आवश्यक है। और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा पर्यटन क्विज 2026 का आयोजन किया जा रहा है। जिला स्तरीय इस क्विज में भाग लेने के लिए विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन 1 जुलाई से 25 जुलाई 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं,
3: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
2: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से जी जानना चाहते हैं।
3: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा चलिए, श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
2: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है।
3: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
2: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
3: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
2: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
3: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है,
2: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
3: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है, पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते। धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
2: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की

0: खेत में पाई जाती है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं, और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है,
0: जी,
1: लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
0: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की। लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
1: फिर धीरे धीरे शोध होते गए और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
0: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
0: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
2: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
3: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
4: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
5: हाँ, 2000 साल पहले।
4: नानी माँ?
6: हाँ निधि।
4: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
6: अरे यहीं हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
4: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
6: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
4: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
6: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका, जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
4: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
6: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
4: नाना नानी के शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
6: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
4: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है?
6: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
4: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
6: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना?
4: मामा जी।
7: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
4: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
7: ये तो बहुत अच्छी बात है
4: जी, उसमें छपा था लगभग 2000

0: साल पहले। ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था।
1: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो। बता सकती हो कि ये क्या है?
2: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
1: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है, जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
0: अच्छा, भोज वृक्ष।
1: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
2: पांडुलिपि, ये हमें कहाँ मिली है?
1: निधि, ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है, कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
2: अच्छा।
1: और बेटी, मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
0: ये किस भाषा में है?
1: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
0: मामा जी, अब आगे भी बताइए ना।
1: हाँ, बताता हूँ। अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
0: अच्छा।
1: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
0: अच्छा।
1: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
2: अच्छा।
1: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं, और शिलालेख को
2: एपिग्राफ।
1: शाबाश निधि।
2: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
1: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं, लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
2: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
1: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
0: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
1: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
0: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
1: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए।

0: तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
1: आशा है श्रोता मित्रों आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
0: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
1: जी,
0: लेकिन आज श्रोताओं आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रही
1: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
0: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
2: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कालंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

0: शाबाश शाबाश मोती शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करूं, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं, इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछिए तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस वहीं खड़े रहो, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं, इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। ज़हर नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूँ, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
0: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
1: अच्छा वाह, और
0: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
1: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
0: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
1: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
0: चल बेटा मोती।
1: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की इस हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
2: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपतशाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
0: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे, आप ही बताइए मैं क्या करूं।
3: महारानी आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं, पर हां इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कायरों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
0: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए। कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
4: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
2: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर

0: की खबर उधर पहुंचाया करता था।
1: अलख निरंजन।
2: साधु बाबा।
1: अब अच्छा,
2: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
1: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं।
2: क्या?
1: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
2: है?
1: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
2: अच्छा,
1: हाँ
2: बहुत बड़ी फौज है।
1: और नहीं तो क्या बच्चा, अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है, बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
2: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
1: अच्छा,
2: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
1: हैं? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
2: बिल्कुल है।
1: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
2: उसका भी इंतजाम है।
1: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
2: देखो हाँ? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
1: नहीं नहीं बच्चा, किसी से नहीं कहेंगे।
2: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
1: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
2: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूँ, बदन सिंह, रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।

0: पुरुषवेश में लड़ रही रानी की बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे। उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
1: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
2: ओ मेरा ध्यान छोड़ गनू, तू हाथी को संभाल।
1: हाथी को क्या संभालूं रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप कितना खून बह रहा है।
2: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनू।
3: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
2: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
3: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
2: अच्छा तो गनू बेटा, ला तू अपनी कटार मुझे दे।
3: रानी माँ
4: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।
5: आश्रोताओं, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।

चुपके चुपके इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ थी लता मंगेशकर की। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत था एस डी बर्मन का।

अभिनेत्री फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ थी लता मंगेशकर की, गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

1942 अ लव स्टोरी, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में, गीतकार थे जावेद अख्तर, संगीत था आर डी बर्मन का।

ये गीत था फिल्म चांदनी से, जिसके लिए आवाज थी सुरेश वाडकर, अनुपमा देशपांडे की, गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत था शिव हरि का। और इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यही समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पुलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीसरा नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकाले जाने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। मेलबर्न में श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता को बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को भी स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दे दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और उनकी आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,774 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 पर दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। सबसे पहले आपको बता दें सभा के शेष कार्यक्रम रात 8 बजे सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में, 8:15 पर सुनिए फिल्म संगीत, 9:30 पर खेल जगत में होगी भेंटवार्ता, ताइक्वांडो की वर्तमान स्थिति और संभावनाएं, विशेषज्ञ होंगे आलोक मिश्रा, भेंटकर्ता होंगे मनीष गजभिये, 9:45 पर सुनिए फिल्म संगीत, रात 10 बजे क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे। और आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम ग्राम सभा होगा 7:21 पर। और अब आपको बता दें कल सुबह की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल आप सुनेंगे 7:20 पर। 8:30 पर सुनिए फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। लोक संगीत का कार्यक्रम होगा सुबह 9:15 पर। इसमें आप सुनेंगे भुवनेश गोस्वामी से बुंदेली गीत। 9:30 पर होगा विज्ञान लोक कार्यक्रम, इसमें होगी भेंटवार्ता रोबोटिक्स और मानव जीवन, विशेषज्ञ होंगे कौशिकी उपाध्याय। 9:45 पर सुनिए फिल्म संगीत। 10 बजे सुनिए जिले की चिट्ठी। 10:05 पर होगा कार्यक्रम गीत सागर। 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में के दामोदर राव से राग भैरव में ख्याल गायन। दिन में 11 बजे से आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और इसी समय आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे। दोपहर 12 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके फरमाइश जो फिल्मी गीतों पर होगा। 12:30 पर होगा संग्रहालय से में धारावाहिक हंसना मना है, ये एक झलकी होगी और इस झलकी की तीसरी कड़ी आप सुनेंगे। दोपहर 1 बजे सुनिए महिला कार्यक्रम, 1:30 पर होगा लोक संगीत का कार्यक्रम, 1:45 पर होगा सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये तीनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा का योगदान होगा। दोपहर 2 बजे सुनिए फिल्म संगीत, 2:30 पर होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हमारी शाम की सभा में कल आप सुनेंगे 5 बजे कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी रीवा का योगदान, 5:33 पर। और शाम 6 बजे सुनिए फिल्म संगीत, 7:45 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान, प्रायोजन विकास दर्शन। और रात 9:30 पर साहित्य भारती, ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

और कल रात 10 बजे संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय का ख्याल गायन।

और कल 7:21 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम ग्राम सभा। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर, दोनों राज्यों को देंगे 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषक कल्याण वर्ष की समीक्षा की, सहकारी समितियों के डिजिटलाइजेशन के दिए निर्देश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ फसलों और मानसून की समीक्षा की, 262 संवेदनशील जिलों की हुई पहचान। और भोपाल में अग्निवीर सेना भर्ती रैली की तैयारियों को लेकर समन्वय बैठक आयोजित, 25 जुलाई से 6 अगस्त तक होगी रैली। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां वे दोनों राज्यों को करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। वे जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत 100 नए एरोड्रोम विकसित किए जाएंगे, जिसके बाद बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिस पर करीब 80,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे और राजस्थान सरकार में भर्ती हुए करीब 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। शाम को वे गुजरात के साणंद पहुंचेंगे, जहां 7,500 करोड़ रुपए की लागत से बनी CGCME OST सेमीकंडक्टर सुविधा का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्रालय में कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत अब तक हुए कार्यक्रमों की समीक्षा की। डॉक्टर यादव ने कहा कि किसानों का कल्याण राज्य सरकार का कर्तव्य है और इसी उद्देश्य से वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया गया है। उन्होंने सहकारी समितियों की प्रक्रियाओं का डिजिटलाइजेशन करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल और ई पासबुक सुविधा का शुभारंभ जुलाई माह में ही किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव और संभागीय मुख्यालयों पर फूड फेस्टिवल आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में खरीफ फसलों, मानसून की स्थिति और अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि देश भर में बारिश की कमी की आशंका वाले 262 संवेदनशील जिलों की पहचान की गई है, जिनमें से 210 जिले अब भी बारिश की कमी का सामना कर रहे हैं। बैठक में बताया गया कि 2 जुलाई से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में मानसून आगे बढ़ सकता है। केंद्रीय मंत्री ने प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर कॉन्टिंजेंसी प्लान की समीक्षा करने और किसान क्रेडिट कार्ड तथा फसल बीमा कवरेज बढ़ाने के निर्देश दिए। शिवपुरी में 5 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करीब 2,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे। तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश के ऊर्जा एवं जिला प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कल कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद प्रभारी मंत्री ने शहर भ्रमण कर नागरिकों को पीले चावल भेंट करते हुए इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के श्री रामानुज संस्कृत परिसर रीवा के सशक्तिकरण और संस्थागत विकास संबंधी प्रस्तावों की समीक्षा की। बैठक में परिसर के लिए कुल 243 पदों के सृजन का प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसमें 117 शैक्षणिक, 4 प्रशासनिक और 122 गैर शैक्षणिक पद शामिल हैं। इन पदों की पूर्ति 3 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से किए जाने की योजना है। भोपाल में जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में आज अग्निवीर सेना भर्ती रैली की तैयारियों को लेकर समन्वय बैठक आयोजित की गई। ये भर्ती रैली 25 जुलाई से 6 अगस्त तक नाथू बरखेड़ा स्थित अंतर्राष्ट्रीय खेल कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी। अपर कलेक्टर महेंद्र सिंह कवचे ने सभी विभागों को समन्वय के साथ समयबद्ध व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश के टूरिज्म बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों के लिए पर्यटन क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसके लिए विद्यालय 25 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। जिला स्तरीय क्विज 7 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित होगा, जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। प्रत्येक जिले की विजेता टीमों को प्रदेश के पर्यटन बोर्ड द्वारा निःशुल्क पर्यटन भ्रमण का उपहार दिया जाएगा।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद यानी बार्क को समाचार और गैर समाचार दोनों श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा कि यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक परिषद को टेलीविजन रेटिंग नीति 2026 के तहत लाइसेंस नवीनीकरण नहीं मिल जाता। केंद्र सरकार ने सुरक्षा चिंताओं के चलते बैट बीएमएस इपोक आईओएन और लॉसिगी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से ही बंद करने के लिए किया जा रहा था। यह फैसला संभावित गलत इस्तेमाल और सुरक्षा जोखिम को देखते हुए लिया गया है। केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि आधार एप्लीकेशन पर ईमेल आईडी निःशुल्क अपडेट की सुविधा 1 जुलाई से शुरू होने के बाद पहले दो दिनों में 2.5 लाख से अधिक ईमेल अपडेट हुए हैं। UIDAI के अनुसार ये सेवा 6 महीने की अवधि के लिए निःशुल्क उपलब्ध है और इससे आधार केंद्र जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। अब तक 40 लाख से अधिक लोगों ने नए आधार ऐप से मोबाइल नंबर अपडेट किए हैं, वहीं लगभग 10 लाख लोगों ने अपना पता भी अपडेट किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण के लिए 24 घंटे चलने वाली महिला हेल्पलाइन 1-4-4-9-0 संचालित कर रहा है। ये टोल फ्री हेल्पलाइन हिंसा और उत्पीड़न का सामना कर रही महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने और मनोवैज्ञानिक परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराती है। इस पर महिलाएं शिकायत के साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकती हैं। हेल्पलाइन एक बार पुनः सुन लें, 1-4-4-9-0। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। ये यात्रा 57 दिनों तक चलकर 28 अगस्त तक जारी रहेगी। कड़ी सुरक्षा के बीच पहले जत्थे में कुल 4,822 श्रद्धालु जम्मू से रवाना हुए, जिसमें 2,510 श्रद्धालु नुनवान और 2,312 श्रद्धालु बालटाल आधार शिविर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री अमरनाथ यात्रा की शुरुआत पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के धुंधुआ सिहा क्षेत्र में बाघिन P652 ने 2 शावकों को जन्म दिया है। टाइगर रिजर्व के उपसंचालक वीरेंद्र पटेल ने बताया कि दोनों शावकों की उम्र लगभग 10 दिन है और माँ व शावक पूरी तरह स्वस्थ हैं। वन विभाग की विशेष टीम हाथियों और आधुनिक तकनीक की मदद से 24 घंटे उनकी निगरानी कर रही है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। 9 दिन की देरी से आया मानसून कल उज्जैन ग्वालियर और चंबल संभाग तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने खंडवा और हरदा के लिए इस मानसून सीजन का पहला रेड अलर्ट जारी किया है, जहां अगले 24 घंटों में 4 से 8 इंच तक बारिश की संभावना है। धार, बड़वानी, खरगोन, देवास, बुरहानपुर और बैतूल में भी अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं मौसम विभाग ने 6 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है। अब रुक करते हैं क्रिकेट का। इंग्लैंड ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। टीम ने गुरुवार की रात को सेमीफाइनल मैच में साउथ अफ्रीका को 40 रन से हराया। अब रविवार को लॉर्ड्स के मैदान पर खिताब के लिए इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। वहीं दूसरी तरफ BCCI ने भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया है। ये 2 मैचों की श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में और दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना के कोचिंग संस्थानों में न्यूनतम 2 CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जो कि सीधे पुलिस कंट्रोल रूम से जुड़ेंगे। सिंगरौली के चितरंगी में विकसित भारत जीराम जी योजना का शुभारंभ राज्य मंत्री राधा सिंह ने कार्यशाला की शुरुआत से किया। खंडवा जिला अस्पताल में OPD पंजीयन को आसान बनाने के लिए अब ई रजिस्ट्रेशन सुविधा शुरू की गई है। आगरमालवा नगर पालिका ने कंपनी गार्डन में नीम, पीपल और बरगद के 111 पौधों का रोपण किया। पन्ना में राज्य खेल अकादमियों के लिए 12 से 18 वर्ष तक के खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया आज से शुरू हुई है। मंदसौर में स्टॉप डायरिया अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों के क्लोरिनेशन और पानी की जाँच का प्रशिक्षण शुरू हुआ है। देवास ITI परिसर में 7 जुलाई को युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। छिंदवाड़ा कलेक्टर ने आकाशीय बिजली से बचाव के लिए नागरिकों से दामिनी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने की अपील की है। सीहोर के स्कूली बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए आयोजित 3 दिवसीय उमंग हेल्थ एंड वेलनेस प्रशिक्षण का आज समापन हुआ। सागर खेल परिसर के मैदान पर मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी अकादमी का चयन ट्रायल आयोजित किया गया। निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश के 3रे चरण की च्वाइस फिलिंग की शुरुआत हो गई है, जिसमें पहले से पंजीकृत अभिभावक 8 जुलाई तक च्वाइस अपडेट कर सकेंगे। नीमच के जावत सिविल अस्पताल सहित सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर सर्पदंश का इलाज और एंटी स्नेक वेनम 24 घंटे मुफ्त उपलब्ध है। और कटनी में रुक रुक कर हुई बारिश के बाद नगर निगम के अमले ने नालियों की सफाई कर जल भराव की स्थिति को संभाला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर, दोनों राज्यों को देंगे 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषक कल्याण वर्ष की समीक्षा की। सहकारी समितियों के डिजिटलाइजेशन के दिए निर्देश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ फसलों और मानसून की समीक्षा की। 262 संवेदनशील जिलों की हुई पहचान। और भोपाल में अग्निवीर सेना भर्ती रैली की तैयारियों को लेकर समन्वय बैठक आयोजित। 25 जुलाई से 6 अगस्त तक होगी रैली।
इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा
1: ये ग्वालियर का आकाशवाणी केंद्र है। भैया सुने अपना प्रिय कार्यक्रम चौपाल।

जय जवान जय किसान और चौपाल कार्यक्रम सुनवे बारे हमारे सभी भैयाहरन को कल्पना बहन की राम राम और करत है स्वागत आज के चौपाल कार्यक्रम में। तो भैया और देखो सबसे पहले तो ये बताओ कि आप और उनके कैसे का हाल चाल है। हम जानते हैं कि हमारे सभी भैयाहरन के घर परिवार में सभी जने खूब ही अच्छे से हैंगे, राजी खुशी से हैंगे और देखो हम भी नीके हैंगे। और देखो हमेशा दिल से जो चाहते हैं कि हमारे सभी भैया हरन के घर परिवार में हमेशा खुशी को माहौल बनो रहे, सभी जने खुश रहें और स्वस्थ रहें। ऐसी मंगल कामना हम अपने भैया हरन के घर परिवार के लिए कराते हैं। तो भैया और देखो स्वस्थ तो हम तभी रह सकते हैं जब हम अपना ध्यान अच्छे से रखें तब। काहे से कि भैया और देखो अपनी जे धरती माता पे कोनो प्रकार की गंदगी ना होए, पर्यावरण साफ सुथरा होए, प्लास्टिक है, कांच है, पन्नी है, ये सब बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। इसे देखो हमारे पशु पक्षी और हम सभी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो भैया हरो आज है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस, तो ई के अवसर पे प्लास्टिक को कम से कम उपयोग करना है। और हम सभी देखत भी हैं कि प्लास्टिक की थैलियाँ, बोतलें और अन्य कचरा खेतों में, नालों में और तालाबों में फेंक दो जाते हैं। तो भैया और देखो इसे मिट्टी की उर्वरता पे काफ़ी असर पड़ता है और जल निकासी के रुकाव में रुकावट है। और अगर भैया और देखो पशु गलती से अगर प्लास्टिक पन्नी खा भी लेते हैं तो उनकी जान भी जा सकते है। कहे से कि भैया और देखो प्लास्टिक बरसों तक नष्ट नहीं होते और पर्यावरण को लगातार नुकसान भी पहुंचाते। तो भैया और देखो हम सभी की जिम्मेदारी ये है कि प्लास्टिक को उपयोग कम से कम करें और हाट बाजार जाते टाइम कपड़े या जूट को थैला संग लेके चलें। और भैया और देखो एक बेर उपयोग होवे पारे प्लास्टिक जैसे कि गिलास, प्लेट, चम्मच और पॉलीथीन को उपयोग ना करें। और भैया और देखो अपने घर में प्लास्टिक को कचरा अलग से रखें और उनको उचित जगह पे ही निपटारण करें। ऐसे ही भैया देखो खेतन में देखो अगर पन्नी है, कांच है, प्लास्टिक है या गिलास है तो इन्हें भी अलग से रखें और उचित जगह पे ही निपटारण करें। तो गांव में, घर में स्वच्छता और अभियान चला के लोगों को भी जागरूक करना है। तो भैया और देखो अपने खेतन में और आसपास के क्षेत्रन में प्लास्टिक कचरा से मुक्त कराएंगे तो भैया और मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर से बेहतर बनी रहेगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। तो भैया और देखो ऐसे छोटे छोटे प्रयास मिलके करवे से बड़ो बदलाव ला सकते हैं। तो भैया और ये अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक

बैग मुक्त दिवस पे हम सभी को जागरूक रहना है और दूसरों को भी जागरूक करना है। और प्लास्टिक को उपयोग कम से कम करेंगे तो पर्यावरण को स्वच्छ बनाएंगे और आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की मजबूत नींव भी बना सकते हैं। तो भैया हरो देखो, ऐसे ही देखो अब वन महोत्सव सप्ताह भी चल रहा है। तो भैया हरो देखो, हर वर्ष जुलाई के पहले सप्ताह में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। और इको उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। काहे से कि भैया और देखो, पेड़ पौधे हमारे जीवन को आधार है। वे हमें देखो शुद्ध हवा, वर्षा, छाया, फल, लकड़ी और अनेक औषधियाँ प्रदान करते हैं। वैसे भी भैया देखो, गांव में पेड़ों को तो बहुत ही महत्व होता है। और खेतन की मेड़ों पे, गांवन की खाली जगह पे और स्कूलों में, पंचायत भवनों में, तालाबों के आसपास पेड़ लगावो लगावे से पर्यावरण हमेशा हरो भरो रहते हैं। जैसे कि भैया हो देखो, हमें नीम लगा सकते हैं, पीपल है, बरगद है, आम है, जामुन है, आंवला, सहजन और करण जैसे पेड़ न केवल पर्यावरण को लाभ पहुंचाते हैं बल्कि कई पेड़ आय को एक अच्छो से अच्छा स्रोत भी होते हैं। सो भैया और देखो, पेड़ लगावे के बाद जिम्मेदारी खत्म नहीं होते, उनकी नियमित देखभाल बहुत ही जरूरी होते हैं। जैसे कि भैया हो देखो, समय पर पानी देवो, खाद देवो, पौधों को पशुओं से बचावे की उनकी सुरक्षा करवो, हम सभी की जिम्मेदारी सोई होते है। तो भैया हो, एक स्वस्थ पौधा आगे चल के एक बड़ा वृक्ष बनाता है और फिर वो वृक्ष बरसों तक समाज की सेवा भी करता है। सो भैया हो देखो, जे वन महोत्सव सप्ताह में हम सभी को कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना है और उके बड़े होवे तक उकी देखभाल करवे को भी संकल्प हम और उनको लेने हैं। और यदि हर परिवार एक पेड़ लगाए और उकी रक्षा करे तो हमारा गांव हरो भरो, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बन सकते हैं। और आज लगाओ एक पौधा आवे वाली पीढ़ियों के लिए जीवन को अनमोल उपहार है। तो भैया हरो, तो जय खुशी से अपन सुन लेते हैं द्वारका प्रसाद कुशवाहा से जे पर्यावरण गीत।

भैया, और अभी आप सुन रहे थे जी 900 पर्यावरण गीत द्वारका प्रसाद कुशवाहा से। तो हम उम्मीद करते हैं कि भैया हो आपको बहुत ही पसंद आ हुई है। अब भैया हो देखो, अब बारी है, अपन लेके आए हैं भेंट वार्ता। तो भैया और देखो, आप और हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। चाहे वो देखो जीव जंतु हो, प्राणी हो या फिर पशु हो, सभी को स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। तो भैया और देखो, आज ऐसी ही भेंट वार्ता लेके आए हैं जाको विषय है पशुओं में मिल्क फीवर, जाकी जानकारी दे हैं डॉक्टर डॉक्टर रूपेश कुमार जैन, और उनके उनसे भेंट करेंगे श्री सोहन सिंह। तो सुनते हैं जो भेंट वार्ता, लेकिन बात से पहले लेते हैं तनक विराम।

0: भैया और देखो, अभी आप सुन रहे थे जी 900 बर का गीत। अब सुने भेंट वार्ता, जाको विषय है पशुओं में मिल्क फीवर, और जाकी जानकारी दे हैं डॉक्टर रूपेश जैन, और उनसे भेंट करेंगे श्री सोहन सिंह। तो सुनते हैं जो भेंट वार्ता।
1: किसान भाइयों, खेती का व्यवसाय करते हैं, खेती के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय भी करते हैं। जब से हमारा पशु गर्भधारण करता है, जब से एक हमें उम्मीद मिल जाती है, इससे हमें आर्थिक लाभ होगा। लेकिन जैसे ही पशु बच्चे को जन्म देता है, उसे कुछ बीमारी हो जाती हैं, जिसके कारण हमारे जो पशु को भी परेशानी होती है और हमारा जो आर्थिक लाभ है वो भी कुछ कम हो जाता है। पशु बच्चा जन्म देते ही पशुओं में एक मिल्क फीवर, दुग्ध ज्वर कहते हैं, यह बीमारी हो जाती है। यह बीमारी किस कारण होती है और इससे किस तरह पशुओं का बचाव कर सकते हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं डॉक्टर रूपेश जैन। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे जो पशुपालक भाई हैं उन्हें यही जानकारी दें कि ये जो मिल्क फीवर है ये होता क्या है।
2: किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हमारे क्षेत्र में, चाहे चंबल क्षेत्र हो, ग्वालियर क्षेत्र हो, पशुपालन हमारे मध्य प्रदेश में सबसे अग्रणी है और दूध उत्पादन में भी हम मध्य प्रदेश में लगभग प्रथम स्थान पर हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छी नस्ल की गाय और भैंस भी किसान लोग अच्छे से पालते हैं। निश्चित रूप से जहाँ पशुपालन है, गाय भैंस पालन है, किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन कर रहे हैं, तो वहाँ बीमारियाँ आना भी स्वाभाविक है। पशुओं में कई तरह की बीमारियाँ होती हैं, जैसे कुछ संक्रामक बीमारी

0: बीमारियां होती हैं जो कि जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ के कारण होती है। कुछ बीमारियां जो होती हैं उन्हें मेटाबॉलिक डिसीज़ या उपापचयी रोग बोलते हैं, और ये जो मेटाबॉलिक बीमारियां होती हैं वो शरीर में किसी एक या कई पोषक तत्वों की कमी के कारण होती हैं। इन्हीं बीमारियों में से एक जो बीमारी है वो दुग्ध ज्वर की बीमारी है, जिसे इंग्लिश में मिल्क फीवर कहा जाता है। वास्तव में इस बीमारी के नाम के आगे फीवर लगा हुआ है, बुखार जिसे कहते हैं, लेकिन इस बीमारी में पशु के शरीर का तापमान या टेम्परेचर ज़्यादा नहीं जाता। भले ही इस बीमारी का नाम मिल्क फीवर है लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा नहीं जाता। ये जो बीमारी है मुख्य रूप से दुधारू पशुओं में कैल्शियम, एक जो सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, कैल्शियम की कमी के कारण मुख्य रूप से होती है। और जब पशु जब जनने वाला होता है या जब ब्याने वाला होता है उस समय दुधारू पशुओं में कैल्शियम की अत्यधिक कमी हो जाती है, ब्याने से 2-3 दिन पहले या पशुओं के ब्याने के 2-3 दिन बाद, उस समय कस पशुओं में कैल्शियम की अत्यधिक कमी हो जाती है। और इस कमी के कारण पशुओं में बीमारी उत्पन्न होती है, उसे दुग्ध ज्वर की बीमारी कहा जाता है या मिल्क फीवर की बीमारी कहा जाता है।
1: डॉक्टर साहब, ये जो मिल्क फीवर है पशुओं में हो जाता है और आप बता रहे हैं कि जो कैल्शियम है उसकी कमी के कारण होता है, तो
0: जी,
1: इसके क्या कारण होते हैं मुख्य?
0: कैल्शियम एक्चुअली जो पशु का शरीर है वो कैल्शियम का एक मुख्य स्रोत है, यानी दूध पशुओं के शरीर का मुख्य स्रोत है कैल्शियम का, और दूध से काफ़ी मात्रा में पशुओं के शरीर से कैल्शियम बाहर आता है। जब पशु ब्याने वाला होता है या जब पशु जनने के बाद 2-3 दिन हो जाते हैं तो पशु के शरीर से काफ़ी मात्रा में कोलोस्ट्रम निकलता है, जिसे खीज या चीका बोलते हैं। ये जो पहले दिन का 3 दिन का जो पीला दूध होता है जिसे चीका बोलते हैं, इसमें पशु के शरीर से अत्यधिक मात्रा में कैल्शियम का स्राव होता है, मतलब सबसे ज़्यादा कैल्शियम निकलता है। इसकी कमी से पशुओं में कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगर हम इसके शुरुआती लक्षण देखें इस बीमारी के, तो इसके लक्षणों को हम 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। शुरुआती अवस्था जो रहती है उस अवस्था को हम एक्साइटमेंट स्टेज बोलते हैं, यानी उत्तेजनशीलता वाली अवस्था। जो पहली अवस्था होती है उत्तेजनशीलता वाली, इस अवस्था में पशु संवेदनशील ज़्यादा होता है, अत्यधिक उत्तेजित रहता है, और इसमें टिटेनी मतलब जो टिटनेस वाले लक्षण होते हैं वो दिखाई देते हैं। जानवर इधर उधर सिर घुमाता है और बेचैन रहता है, खाना पीना भी बंद कर देता है। तो ये तो इस बीमारी के शुरुआती लक्षण हो जाते हैं। जब बीमारी आगे बढ़ती है और यदि हमने उपचार नहीं शुरू किया और बीमारी आगे बढ़ती है तो जानवर अपनी दूसरी अवस्था में चला जाता है, और ये जो अवस्था होती है इसको कहा जाता है स्टर्नल रिकम्बेंसी की स्थिति। इस स्थिति में जानवर अपना जो स्टर्नल होता है यानी जो चेस्ट सीना होता है उसके सहारे जमीन पर बैठ जाता है और अपनी एक टिपिकल पोस्चर बना लेता है। उसमें जानवर अपनी जो सिर होता है उस सिर को घुमा के फ्लैंक रीजन, जैसे गर्दन को फ्लैंक यानी जो पेट होता है जानवर का उस तरफ घुमा के जानवर छाती के सहारे बैठ जाता है। और इसके साथ साथ जानवर की जो आँखें हैं वो हल्की सूज जाती हैं, आँखें उभरी हुई बाहर निकलती हैं, पशु के शरीर का तापमान कम हो जाता है, हृदय की गति बढ़ जाती है, लेकिन जो हर्ट साउंड है वो कम रहती है, पल्स रेट भी कम रहती है। तो ये हमारी सेकंड स्टेज आती है जिसमें जानवर अपने चेस्ट के सहारे जमीन पर बैठ जाता है एक स्टर्नल रिकम्बेंसी की मुद्रा में। और जब तीसरा अवस्था आती है वो इसकी सबसे अंतिम अवस्था होती है, और यदि इस अवस्था में भी जानवर का उपचार नहीं शुरू किया गया तो जानवर की मृत्यु भी हो सकती है। इस अवस्था को बोला जाता है लेटरल रिकम्बेंसी। इसका मतलब होता है जानवर जो पहले चेस्ट वाली स्थिति में बैठा हुआ था वो चेस्ट वाली स्थिति में ना बैठते हुए अब शरीर को एकदम ढीला छोड़ देता है और एकदम जमीन पर लेट जाता है पूरी तरह से। और इस स्थिति में जानवर के शरीर का तापमान और भी कम हो जाता है, जानवर में बेचैनी होती है, जानवर खड़ा नहीं हो पाता है। और यदि इस अवस्था तक भी जानवर का उपचार नहीं हुआ तो निश्चित रूप से जानवर में हर्ट फेल होने की संभावना ज़्यादा रहती है, और इस अवस्था तक आते आते जानवर की मृत्यु भी हो सकती है। तो किसान भाइयों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यदि ब्याते समय पशुओं में शुरुआती अगर लक्षण देख रहे हैं पशु के, जिसे मैंने पहले स्टेज बताया था, तो उस अवस्था में यदि बीमारी को वो पहचान लेते हैं तो अपने नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह से इस बीमारी का तुरंत इलाज कराएं, और अगर तुरंत इलाज करा लिए तो ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है।
1: डॉक्टर साहब, ग्रामीण स्तर पर हमारे पशुपालक भाई अपने पशुओं में अगर इस तरह के लक्षण देखते हैं तो क्या उपचार कर सकते हैं?
0: जी सर, सबसे पहले तो इस बीमारी का अगर हम उपचार की बात करें तो इस बीमारी का जो प्राथमिक उपचार है वो जैसा मैंने बताया कमी ही इस बीमारी का उपचार है। मतलब ये बीमारी किस कमी की वजह से हो रही है, कैल्शियम एक ऐसा पोषक तत्व है जिसकी कमी से ये जानवरों में बीमारी होती है। अब जानवरों में कैल्शियम की कमी क्यों हो जाती है? ब्याते समय जानवरों में जो कोलेस्ट्रॉल निकलता है उसमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा शरीर से बाहर जाता है। अब जो ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है यानी रक्त में जो कैल्शियम की कमी होती है वो पूरा रक्त से जो कैल्शियम है वो शरीर से बाहर जा चुका, अब रक्त में कैल्शियम का डिपोजिशन अपन को बढ़ाना है तो वो सामान्यतः क्या होता है शरीर में, पशुओं के शरीर में, कि शरीर के अंदर जो डिपो होता है कैल्शियम का, जैसे ज़्यादातर जो बोन्स होती हैं हड्डियाँ होती हैं वहाँ से कैल्शियम मोबिलाइज होकर ब्लड में आता जाता है और ब्लड में कैल्शियम का लेवल मेंटेन रहता है। ब्लड में सामान्य तौर पर सामान्य शरीर में पशुओं के जो कैल्शियम का लेवल होता है लगभग 10 मिलीग्राम प्रतिशत होता है, लेकिन जब ये ब्लड में कैल्शियम का स्तर 7 मिलीग्राम प्रतिशत से नीचे चला जाता है तो ये बीमारी यानी कैल्शियम की कमी होना स्वाभाविक हो जाती है। तो इसको प्राथमिक तौर पर उपचार के लिए सबसे पहले इसका जो प्राथमिक उपचार है वो यही है कि हमें कैल्शियम का इंजेक्शन जितनी जल्दी हो सके और पशुओं को हम उपलब्ध करा सकें तो वो सबसे मेन इसका उपचार है, क्योंकि कैल्शियम की कमी को हम कैल्शियम से ही पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए बाजार में कैल्शियम की बोतलें उपलब्ध हैं जो हम इंट्रावीनस पशुओं को लगाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से CBG जिसे बोलते हैं कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट, कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट को लगभग 450 ml की मात्रा हम पशुओं में नस में सीधे लगाते हैं। और जब हम पशुओं में CBG की बोतल लगाते हैं तो इसके लिए हम ग्रामीण स्तर पर गौ सेवक हैं या जो हमारे ABFO हैं या पशु चिकित्सक हैं उनमें से किसी की भी हम मदद ले सकते हैं पशुओं में ये उपचार करने के लिए। जब हम CBG की बोतल चढ़ा देते हैं उसके बाद 450 ml बोतल चढ़ाने के बाद हमें 200 ml सबकट बोतल पशुओं में देना चाहिए, जिससे कि पशुओं में धीरे धीरे कैल्शियम जाता रहेगा और पशुओं में इसकी कमी धीरे धीरे पूर्ति होती रहेगी। किसान भाइयों को मैं निवेदन करूंगा कि एक चीज़ का और ध्यान रखें कि यदि हमें लगता है कि कैल्शियम के साथ पशुओं में मैग्नीशियम की भी कमी हो रही है, मैग्नीशियम की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, पशुओं में टिटनेस जैसे लक्षण दिखते हैं, तो ऐसी स्थिति में पशुओं को कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट की अपेक्षा कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट बोतल हमें चढ़ाना चाहिए, जिससे कि कैल्शियम के साथ साथ पशुओं में मैग्नीशियम भी कमी पूरी होती है। तो ये तो हमारा मेन ट्रीटमेंट हो गया जिसमें हम CBG की बोतल पशुओं को लगाते हैं। और इसके साथ जो सपोर्टिव थेरेपी के रूप में हम पशुओं में सोडियम एसिड फास्फेट 25 ग्राम पशुओं को नॉर्मल सेलाइन के साथ चढ़ाते हैं या डेक्स्ट्रोज के साथ देते हैं, जिससे कि सोडियम एसिड फास्फेट पशुओं में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और ब्लड के pH को कम करता है। इससे पशुओं में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है और पशुओं में कैल्शियम की कमी धीरे धीरे पूरी होती है। ये हमारा प्राथमिक उपचार और मेन उपचार ये दोनों ही हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा किसान भाइयों को इस बीच में, मिल्क फीवर की जो बीमारी है मुख्य रूप से जो पशु की दूसरी ब्यांत होती है दूसरी से छठवीं ब्यांत तक सबसे ज़्यादा आती है। पहली ब्यांत में ये बीमारी कम होती है क्योंकि पहले ब्यांत में अभी पशुओं का दूध उत्पादन ही शुरू नहीं हुआ, लेकिन दूसरे ब्यांत से लेकर छठवें ब्यांत तक ये बीमारी सबसे ज़्यादा आती है। तो हमें दूसरे ब्यांत से हमें पशुओं को जब भी उनकी ब्याने की स्थिति होती है उस समय उनके खुराक का विशेष ध्यान रखना चाहिए, संतुलित खुराक देना चाहिए जिसमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा हो, और ब्याने के बाद पशुओं को लगभग 80 से 100 ml कैल्शियम प्रतिदिन प्रति पशु के हिसाब से पशुओं को उपलब्ध कराना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, अंत में चलते चलते पशुपालक भाइयों से और क्या कहना चाहेंगे जिससे हमारे पशुपालक भाइयों के पशु स्वस्थ रहें और पशुओं से अधिक लाभ प्राप्त हो?
0: किसान भाइयों, मेरा पशुपालक किसान भाइयों को मेरा यही सजेशन रहेगा कि हमारे दुधारू पशुओं को संतुलित आहार खिलाएं। प्रतिदिन संतुलित आहार दुग्ध उत्पादन के हिसाब से लगभग 2.5 किलो दूध पर 1 किलो संतुलित पशु आहार गाय के लिए और 3 किलो दूध पर 1 किलो दाना दुग्ध उत्पादन के लिए भैंसों के लिए ये पशुओं को खिलाना चाहिए। और इसके साथ साथ जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसका पाउडर मार्केट में मिलता है, सूक्ष्म पोषक तत्वों का पाउडर, उसको लगभग 40 से 50 ग्राम प्रति पशु प्रतिदिन की दर से हमें दुधारू गाय को और भैंस को प्रतिदिन देना चाहिए। इन सूक्ष्म पोषक तत्वों से न केवल दुधारू पशुओं में दूध उत्पादन की वृद्धि होती है अपितु दुधारू पशुओं की प्रजनन क्षमता भी बढ़ती है। पशु समय से गर्मी पे आते हैं और समय से गाभिन होते हैं, और जब समय से गाभिन होंगे तो समय से वो पशु बच्चे भी देते हैं, और यही पशुपालन की रीढ़ भी है। हम ये कहते हैं किसान भाइयों को कि किसान भाइयों को अपने दुधारू पशुओं से प्रतिवर्ष एक बच्चा लेना चाहिए, प्रतिवर्ष नहीं तो कम से कम 13 या 14 महीने में तो एक बच्चा आपको अपने पशुओं से लेना चाहिए, जिससे कि उनके दूध उत्पादन का जो साइकिल है वो लगातार चलता रहे।
1: डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे पशुपालक भाइयों को मिल्क फीवर बीमारी क्या होती है और इससे किस तरह बचाव कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी दी, और इस जानकारी से हमारे किसान भाई निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भैया और देखो, आप अभी सुन रहे थे जो भेंट वार्ता जा को विषय, तो पशुओं में मिल्क फीवर जाके जानकारी दे रहे थे रूपेश कुमार जैन और उनसे बातचीत कर रहे थे श्री सोहन सिंह। तो भैया और देखो, हम उम्मीद कर रहे थे कि आपने अब जो भेंट वार्ता सुनी तो हमारे डॉक्टर रूपेश भैया ने पूरे विस्तार के संग बताई कहा से कि देखो भैया, जो पशु हमारे आय का साधन है और जो देखो आगे बरसात के मौसम में भी उन्हें कई तरह के रोग भी है जाते हैं, तो भैया और देखो हम उम्मीद करते हैं कि आप उनको विशेष ध्यान रखें और अगर बीमार है भी जाते हैं तो उनको उचित देखभाल करें, टीकाकरण करवाएं और चिकित्सालय में देके देखभाल करवाएं। तो भैया और देखो, आप कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और करते हैं अपन आगे की चर्चा जाको विषय है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के बारे में। तो भैया और देखो, कहते ना कि पहलो सुख निरोगी काया, तो और हम सभी देखो जानते हैं और हम सभी हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें और संग में व्यस्त रहें तो मानसिक तनाव कबू नहीं है सकते। कहते ना भैया को देखो, खाली दिमाग शैतान को होते, तो हमेशा देखो कोई ना कोई काम करत रहें और हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखने हैं, यानी कि भैया हो नीको नीको ही सोचने हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहें और अपनी दिनचर्या पे भी विशेष ध्यान देना है। साफ और स्वच्छ ताजो भोजन करने हैं और भुनसारे ही देखो घूमन को जाना है और संग में कछु योग व्यायाम भी करने हैं जैसे मन मस्तिष्क भी स्वस्थ रहते हैं। और भैया देखो, संग में देखो हड्डियाँ और मांसपेशियाँ भी मजबूत बनाते हैं और हमारा शरीर दिन भर ऊर्जावान रहते हैं। तो भैया देखो, सभी रोग बीमारियों से अगर हम सभी दूर रहते हैं तो हमें कभी दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर भैया देखो कछु हारी दुखारी या बीमारी है भी जाए तो हमारी भारत सरकार ने बहुत ही उमदा योजना शुरू करी है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, जो सभी के उच्च और गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयाँ कम कीमत पे मिलते हैं। तो ई के लिए देखो पूरे देश भर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। तो भैया और देखो, जो जेनेरिक दवाइयाँ बाजार की ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में 5% से 80% तक सस्ती मिलते हैं और दवाइयों की गुणवत्ता सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित करी जाते हैं। और भैया देखो, जन औषधि केंद्रों पे अनेक आवश्यक दवाइयाँ, सर्जिकल उत्पाद और स्वास्थ्य संबंधी अन्य सामग्री उपलब्ध भी रहते हैं। लेकिन भैया देखो, अधिकतर भैया हरे सोचते हैं कि जे सस्ती दवाई की गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी, लेकिन भैया हरो ये धारणा बहुत ही गलत है। जन औषधि केंद्रों पर मिलवे वाली दवाइयों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता निर्धारित मानकों के अनुसार जांची जाती है और भैया ये को यही कारण है कि ये दवाइयाँ सुरक्षित, प्रभावी और भरोसेमंद भी मानी जाते हैं। सो भैया हो, जी दवाइयों को हमें पूरा लाभ मिलाता है। सो भैया देखो, आज देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र संचालित हो रहे हैं जहाँ सामान्य बीमारियों की दवाइयाँ, सर्जिकल सामग्री और अन्य स्वास्थ्य उत्पाद भी उपलब्ध हैं। इसे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के इलाज को खर्च काफ़ी कम है जाता है। और हाँ भैया, और यदि डॉक्टर कोई दवा लिखे तो उनसे जेनेरिक विकल्प के बारे में अवश्य जानकारी लें और अपने नज़दीकी जन औषधि केंद्र से दवा लेकर स्वास्थ्य के संग संग रुपया पैसा की भी बचत आप कर सकते हैं। तो भैया और देखो, जे योजना को लाभ जरूर उठाएं और अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करें। अब भैया और देखो, अब सुन लेते हैं एक और वर्षा गीत बाबूलाल कुशवाहा से।

भैया। और देखो, अब घड़ी की सुई भी इशारों कर रही है और चलवे की बेरा हो गई है। हमारे सभी भैया को कल्पना बहन की राम राम, जय जवान जय किसान।

0: कार्यक्रम सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत जापान रणनीतिक साझेदारी के विस्तार और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत ज्ञानेश्वर मूले, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
2: ज्ञानेश्वर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि 16वें भारत जापान शिखर सम्मेलन को आप किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि आप जापान में रह चुके हैं, तो क्या ये सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने का एक सम्मेलन रहा है या फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो बदलती हुई रणनीतियां हैं उनके लिए कोई संकेत है, या फिर आपको लगता है कि कोई बड़ी उपलब्धि इस मुलाकात से हासिल हुई है?
3: मैं समझता हूं कि हमारे जो रिश्ते हैं विदेशों के साथ, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, सभी देशों के तुलना में जिस देश के साथ हमारे रिश्ते सबसे बड़ा महत्व रखते हैं मेरे ख्याल से, वो है जापान। जापान और भारत के रिश्ते की खूबी अगर कोई अगर है तो इस रिश्ते में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो दोनों को खलता है या किसी तरह से नीचे खींचता है। ये आगे जाने वाला रिश्ता है। दूसरी बात यह है कि जो जापान की विद्यमान प्रधानमंत्री है वो पहली बार भारत आ रही है, और वो भी जापान की पहली प्रधानमंत्री है, वो तो वो भी एक अपनी विशेषता रखती है। और 16वां जो शिखर वार्तालाप है ये रिश्ते को दिखाता है कि कितने उच्च स्तरीय बैठकें होती है और उसको कितना इस रिश्ते का महत्व है। सिर्फ प्रशांत महासागर ही नहीं, दुनिया में जहां जहां अलग अलग तरीके से इसको हम हॉटस्पॉट बोलते हैं उनके बारे में भी जिक्र आया है। प्रशांत महासागर के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि हाल ही में आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, अमेरिका ने इसको इंडो पैसिफिक के बजाय यूएस पैसिफिक कहना शुरू कर दिया, और हालांकि बहुत राजनयिक प्रयत्नों के बाद इंडो पैसिफिक ये बात जो है रिकॉग्नाइज होती आई है पिछले कुछ एक दो दशकों में। तो ये प्रशांत महासागर जो है हमारे लिए सभी तरह से महत्वपूर्ण है। वहाँ बहुत सारे संसाधन है, वहाँ बहुत सारे महत्वपूर्ण देश है जिनके साथ हमारे रिश्ते हैं, और एक दुनिया का महत्वपूर्ण जो रिसोर्स बोलते हैं सागरी रिसोर्स।
2: भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जापान के संबंध वास्तव में बेहद विशेष हैं।
4: हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है। हमें बहुत खुशी है कि कावासाकी, यामाहा और होंडा की बाइक्स भी भारत में आज विश्व भर में एक्सपोर्ट होती है। इसी तरह एयर कंडीशनर हो या पावर ग्रिड इक्विपमेंट, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग हो या मेडिकल टेक्नोलॉजी, जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
2: दोनों प्रधानमंत्रियों की मीटिंग के बाद जो संयुक्त वक्तव्य दिया गया उसमें रक्षा, आर्थिक सुरक्षा और लोगों के बीच संपर्क को आपसी रिश्ते के तीन बड़े स्तंभ के रूप में बताया गया है, तो आपको लगता है कि भारत और जापान के जो संबंध है एक नए रणनीतिक स्तर पर पहुंच चुके हैं?
3: ये रिश्ता स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि ये रिश्ता ऑलरेडी उस ऊंचाई तक पहुंच गया है। अब दोनों देशों की ये महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है कि इसको और आगे कैसे बढ़ाए और मजबूत कैसे बनाए और इसके आयाम जो है वो किस तरह से बढ़ाए, ये अभी विषय है। इसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात है, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी की बात तो है ही है, इसके साथ ऊर्जा की सिक्योरिटी की बात है, इसमें AI से लेकर कोलैबोरेशन की बात है, रेयर अर्थ और प्रेशियस मटेरियल जो होता है उसके बारे में, जैसे बैटरी का बड़े पैमाने पे दोनों देशों में निर्माण होने के लिए प्रयत्न, इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट के बारे में भी चर्चा है। तो ये मैं समझता हूँ कि प्रशांत महासागर में शांति प्रस्थापित हो तो भारत का है ही महत्वपूर्ण उद्देश्य। उसके साथ साथ अन्य मामलों पे भी बहुत अच्छी चर्चा हुई है जिसका प्रतिबिंब जो है हम लोग इस जॉइंट स्टेटमेंट में देख सकते हैं जो कि 10 पन्नों तक चला जाता है।
2: अभी आपने जिस तरह से जिक्र किया तमाम चीजों का, तो सेमीकंडक्टर का भी काफी बड़े पैमाने पर उल्लेख किया गया। हाई टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज करने की बात है, साइंस या फिर स्पेस की हम बात कर रहे हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक्स टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मिशन की कई सारी चीजों में बात कर रहे हैं, तो ये भविष्य की कूटनीति और विज्ञान को मिला जुला करके दोनों देश आपसी संबंधों को आगे ले जा रहे हैं।
3: बिल्कुल ले जा रहे हैं कि हमारा जैसे व्यापार है, व्यापार के बारे में चर्चा ये हुई है कि भारत से निर्यात जापान बढ़नी चाहिए। आज के दिन में जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं वो जापान के फेवर में बड़े पैमाने पे है। भारत की निर्यात जो है वो करीबन 6 बिलियन के आसपास है और कुल मिलकर जो 27 बिलियन डॉलर ट्रेड है उसमें 5 बिलियन बहुत कम लगता है, इसलिए इसके बारे में कोशिश की जाएगी। करीबन 10 ट्रिलियन जापानीज एन की इन्वेस्टमेंट में आ रही है। इसमें रेलवे का भी जिक्र है, इसमें नए नए उद्योगों का जिक्र है। बड़े पैमाने पे सुमितोमो ने भारत में इन्वेस्ट करने का निर्णय ले लिया है। तो इस तरह से एक कमी ढूंढने की मुश्किल लगती है इस पूरे जॉइंट स्टेटमेंट में। इतना सारा इसका आयाम जो है विशाल है, दोनों देश के बीच में संबंधों को दर्शाता है।
2: जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा कि जापान और भारत को अपनी अपनी ताकत का पूरा लाभ उठाते हुए साथ मिलकर और अधिक सशक्त तथा समृद्ध बनना

0: चाहिए।
1: We confirmed that we are on the same page and developed this relationship as brother and sister. The following points at the center of our cooperation. First, to deepen the strategic cooperation between Japan and India. Our two countries share the vision on the profile of international order we should establish under the current international situation.
0: आपने ट्रेन की बात की है तो मुंबई अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन परियोजना है इसका भी जिक्र किया गया है। ये एक ऐसी परियोजना है भारत के लिहाज से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जापान ने इसमें बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी दिखाई है, निवेश भी किया है। तो ये परियोजना जो है एक तरह से कह सकते हैं भारत और जापान की साझेदारी की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रतीक बन चुकी है। व्यापक अहमियत अगर हम देखें इकोनॉमिक दृष्टि से तो आपको क्या लगता है कि कितना इंपॉर्टेंट होगा? ये
2: बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, जैसा कि मैंने कहा व्यापार की चर्चा हुई है, निवेश की चर्चा, ज्वाइंट कोलैबोरेशन की चर्चा हुई है, बैटरी और अन्य उत्पादों के प्रोडक्ट्स की बात हुई है। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए जितनी चीजें जरूरत है उन सब के बारे में चर्चा हुई, AI के बारे में कोलैबोरेशन का जिक्र है। तो मैं समझता हूँ कि कुल मिलकर आर्थिक जो नीतियां हैं, वित्तीय नीतियां हैं, उसके बारे में काफी प्रगति इसमें हो चुकी है और जापान ने कमिटमेंट दिया है कि वो बड़े पैमाने पे भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा।
0: और उसमें एक चीज ये भी देखने में आई है कि ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के कई अहम फैसले हुए हैं और इसमें ग्रीन हाइड्रोजन का जिक्र किया गया, क्लीन अमोनिया की बात हुई, बायोगैस क्षेत्र की नई साझेदारी शुरू करने की बात हुई है, भविष्य की ऊर्जा को लेकर के भारत के अपने एजेंडा है। भारत ने बहुत कुछ सोच रखा है कि हमें कितना ज्यादा करना, कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करने पर लगातार बात होती है। तो आपको लगता है कि ये जो नई चीजें शुरू हो रही है भारत और जापान के बीच में, तो इससे हमारे जो अपने गोल्स हमने डिसाइड किए हैं भारत ने, उसमें उन्हें प्राप्त करने में बड़ी भूमिका होगी?
2: बिल्कुल, जैसे हमारे लिए हॉर्मुज का जो कन्फ्लिक्ट रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा हमारे देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा के लिए, उसी तरह से बिल्कुल जापान भी ऊर्जा के लिए बहुत निर्भर है। तो दोनों देशों ने जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने के लिए कदम उठाने का इसमें जिक्र किया है। ये मैं समझता हूँ कि ऊर्जा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रयास रहेगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई सारे इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भी चर्चा हुई है कि किस तरह से यूक्रेन में शांति प्रस्थापित होना जरूरी है, किस तरह से कोई एक देश खुद के टर्म पे ये डिक्टेट नहीं कर सकता कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी बताया गया है। गाजा जो है पैलेस्टीनियंस और इसराइल का जो वहाँ मुद्दा उठा है उसके पुनर्स्थापन के लिए, रिसेटलमेंट के लिए, रीडेवलपमेंट के लिए चर्चा हुई है। और ये मैं समझता हूँ कि भारत जापान के संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत आगे ले जाएगा। संयुक्त राष्ट्र परिषद में, सुरक्षा परिषद में भारत और जापान जो है सदस्य रूप में आना चाहिए, इसके ऊपर भी सहमति पहले ही हो चुकी है, उसके ऊपर दोबारा एक बार स्टैंपिंग जो है मैं कहता हूँ इस बैठक में हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि कुल मिलकर ये बहुत सफल यात्रा रही है।
0: भारत और जापान कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी बात रखते हैं, क्वाड की हम बात करें, आसियान का जिक्र करें या फिर बिम्स्टेक जैसे मंचों का उल्लेख करें, ऐसे स्टेटमेंट हमारे सामने आते हैं जहां पर दोनों देश मिल करके बहुत ही स्पष्ट नीति के साथ में काम करना चाहते हैं। तो जो नई रणनीतिक व्यवस्थाएं वर्तमान समय में बनी हुई है उनको देख करके भविष्य को कैसे देखते हैं?
2: भारत और जापान मुझे लगता है कि दुनिया की जो डेस्टिनी है उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान करने वाले हैं और उसकी नींव जो है भविष्य की, आगे आने वाले दशकों की तैयारी जो है इसमें ये डॉक्यूमेंट जो है जॉइंट स्टेटमेंट दर्शाता है, किस तरह से दो देशों के बीच संबंध होने चाहिए और किस तरह से उनको विश्व में शांति और समृद्धि लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए।
0: भारत के आंतरिक हिस्सों की अगर हम देखते हैं तो जापान का बहुत ज्यादा उत्साह रहता है पूर्वोत्तर भारत में निवेश करने का, हालांकि ये हमारे लिए क्षेत्रीय विकास की बात है, लेकिन भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको ध्यान में रखते हुए इसमें जापान की क्या संभावनाएं आपको नजर आती हैं?
2: देखिए, जापान दूसरे विश्व युद्ध में हमारे पूर्वोत्तर तक पहुंच गया था, जैसे अंडमान निकोबार में पहुंच गए थे उसी तरह से, तो जापान अच्छे से इससे एक उनका कनेक्ट है, इमोशनल कनेक्ट है उस इलाके से। दूसरा जो है कि उनकी ये सोच है कि जहाँ विकास कम है वहाँ जाके हम विकास के कार्यों में सहभाग दे, तो जापान का पूर्वोत्तर में रुचि लेना जो है भारत के लिए भी बहुत सहायक है। वहाँ से बड़े पैमाने पे जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी की ट्रेंड मैनपावर जो है बहुत बड़े पैमाने से पूर्वोत्तर के राज्यों से जापान आज के दिन में जा रही है और ये बहुत ही स्वागत करने वाली बात है।
0: संयुक्त बयान में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और दोनों देशों ने कड़े शब्दों में आतंकवाद की निंदा भी की है। तो जापान का इतना खुलकर भारत के पक्ष में आना, इसे भारत के दृष्टिकोण से कितनी बड़ी सफलता आप मानते हैं और वैश्विक स्तर पर इसके क्या असर होंगे, क्या मायने होंगे?
2: जापान और भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहे हैं। अगर आप देखें तो पाकिस्तान का साथ हमेशा चीन ने दिया है और चीन और जापान के रिश्ते जो है वो भी काफी संघर्ष वाले रिश्ते रहे हैं, बहुत नकारात्मक रिश्ते रहे हैं भूतकाल में भी और आज भी उसमें काफी संघर्ष के मुद्दे हैं। तो इसलिए भारत और जापान की जहां तक बात है, एक कन्वर्जेंस जिसको बोलते हैं हम लोग, दोनों के हित संबंध जो है, इंटरेस्ट जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए जापान भी और भारत भी आतंकवाद को लेकर बहुत मजबूती से विरोध करते हैं उसका।
0: ज्ञानेश्वर जी, अक्सर जब इस तरह के समझौतों की या स्टेटमेंट पर हम चर्चा करते हैं तो ये देखा जाता है कि लोगों के बीच संपर्क, खासतौर पर दोनों देशों के जो नागरिक हैं उनके बीच संपर्क हो, उनकी बातचीत, जापान की भाषा हो, पर्यटन हो, सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, इस पर जोर देने का लगातार जिक्र होता है। तो पीपल टू पीपल कनेक्ट का जो एक थॉट है उसको लेकर के जापान का हमारे प्रति दृष्टिकोण, हमारा जापान के प्रति दृष्टिकोण, दोनों में आपको क्या लगता है कि कितना महत्वपूर्ण है?
2: 7वीं शताब्दी में पहला बुद्ध मंदिर जो है जापान में प्रस्थापित हो चुका था और ये बौद्ध धर्म जो है यहाँ से चीन होके, तिब्बत चीन और कोरिया होके जापान चला गया। उसके अलावा जो है गांधी और नेहरू के विचारों का जापान में बहुत प्रभाव शुरू के सालों में था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब जापान की जिम्मेदारी तय करने की बात आई तो भारत के राधा विनोद पाल जज थे, उन्होंने ये कहा कि हारने वाले राष्ट्र पर आप अपना जो है शर्तें लाद नहीं सकते हो। ये बहुत बड़ी बात थी उस जापान के लिए। बुद्धिज्म के अलावा बोनसाई हो या अन्य कलाएं हो, सुमिए हो, जहाँ पर जापान भारत के कवियों पर हाइकू का बड़ा प्रभाव है, तो ये सब चीजें जो है, एनिमेशन जो है बच्चों के लिए बहुत लोकप्रिय है। तो इस तरह से आदान प्रदान जो रहा है वो सदियों का रहा है सांस्कृतिक संबंधों का। मुझे लगता है कि इस तरह के जब राजनयिक रिश्ते अच्छे हो जाते हैं उसका असर सहज अन्य आयामों पर भी हो जाता है।
0: ज्ञानेश्वर जी, भारत लगातार अपने महासागर, पहले जो सागर था उसे महासागर में चेंज किया गया, उस विजन को लेकर के आगे बढ़ रहा है। वहीं जापान की अगर बात हम समझे तो वो उनका कहना है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की हम बात करेंगे। तो आपको लगता है कि ये जो दोनों पहल दोनों देशों की तरफ से हो रही है पूरे क्षेत्र में, ये एक शक्ति संतुलन को पूरी तरह से मजबूत करेंगे? और अगर चीन को लेकर के इसे हम समझें तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर?
2: बहुत जरूरी है कि चीन का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है विश्व में अलग अलग तरीके से, सिर्फ राजनयिक नहीं, वो तो मिलिट्री भी है, इकोनॉमिक पावर भी है और अलग अलग तरीके से वो अपना प्रभाव दिखा रहा है। ऐसे में संतुलन बनाने के लिए भारत और जापान का एक साथ आना बहुत जरूरी था और इस जो शिखर वार्ता के समय इस पे मुहर लग चुकी है कि हम जो है एक दूसरे के साथ रहेंगे और इकट्ठे जो है इंडो पैसिफिक में अपना प्रभाव बना के रखें।
0: ज्ञानेश्वर जी, अगर हम इस पूरे संयुक्त वक्तव्य को देखें, जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा को देखें, ऐसे समय में जब वैश्विक हालात काफी उथल पुथल हो रखे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ कुछ समय के लिए ही है ऐसा एजेंडा हमारा, या फिर भारत जापान संबंधों को और भी लंबा ले जाने के लिए खासतौर पर एक दशक की रणनीतिक रूपरेखा को यह तय करेगा?
2: मेरे ख्याल से ये हर साल प्रधानमंत्री के स्तर पर शिखर वार्ता होती है, इसका अर्थ ही यही है कि हम एक दूसरे के बहुत करीब है। इस तरह से द्विपक्षीय वार्तालाप हर साल होना ये अपने आप में बहुत विशेष बात है।
0: ज्ञानेश्वर जी, आपने इस चर्चा में तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, जिज्ञासाओं का समाधान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत जापान रणनीतिक साझेदारी के विस्तार और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत ज्ञानेश्वर मूले, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: सुर्खियों में ये था कार्यक्रम सुर्खियों में।

सर फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ थी कुमार सानू की, गीतकार थे अनु मलिक। और फिल्म संगीत के लिए आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दिल तो पागल है, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ थी लता मंगेशकर, उदित नारायण की, गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत था उत्तम सिंह का।

थ्री इडियट इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसकी लिए आवाज़ थी सोनू निगम, श्रेया घोषाल की। गीतकार थे स्वानंद किरकिरे और संगीत था शांतनी मोइत्रा का।

अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज़ में अभी आपने ताल फिल्म का गीत सुना, जिसके लिए गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत था ए आर रहमान का।

0: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम ज्ञान।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ, मनोरंजन समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी। इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
5: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, BMS, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालूतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालूतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
6: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया, पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Good evening. This is Akashvani, and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines.
1: Government says India's waters treaty remains suspended. Pakistan must renounce support to cross-border terrorism. India on track to achieve $1 trillion export target this year, says Commerce Minister Piyush Goyal. Prime Minister Narendra Modi to visit Indonesia, Australia and New Zealand on a six-day tour beginning Monday. Defence Acquisition Council clears procurement proposals worth 52,000 crore rupees to enhance combat readiness. Government to seek explanation from Meta on Instagram ads promoting child sexual abuse. France reports nearly 9,000 deaths during record-breaking heat wave last week. And in FIFA World Cup, Australia to take on Egypt in a round of 32 match at Arlington in US tonight. Another news in detail. The government has reiterated that the Indus Waters Treaty remains in abeyance in response to Pakistan's continued sponsorship of cross-border terrorism. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said India's position on the Indus Waters Treaty is consistent. He said Pakistan must credibly and irrevocably renounce its support for cross-border terrorism.
2: India's position on the Indus Waters Treaty is consistent. IWT stands in abeyance in response to Pakistan's continued cross-border terrorism. Pakistan must credibly and irrevocably abjure its support for cross-border terrorism.
1: On Teesta River Comprehensive Management and Restoration Project, Mr. Jaiswal outlined India's approach to development assistance to Bangladesh.
2: India's development assistance for projects in Bangladesh is based on a mutually agreed roadmap, which is regularly reviewed. Our views on the Teesta River project have been previously conveyed to the Bangladesh side. We will factor all related developments in our overall approach to the Teesta issue.
1: Replying to a query, Mr. Jaiswal informed that India has raised concerns with Venezuela over reports alleging removal of vital organs from an Indian seafarer's body and has sought an urgent investigation. Gujarat ATS has arrested 8 people associated with the banned terrorist organization Jaish-e-Mohammed. Banaskantha, Navsari and Patan Police of Gujarat and Devas Police in MP made the arrests after joint raids in these districts. According to the ATS, all the accused were in touch with Pakistani handlers Abdullah and Muhammad Umar. They were also working to translate the literature of the banned terrorist organization Jaish-e-Mohammed into Gujarati and spreading its ideology. A total of 254 pieces of literature, including the flag of Jaish-e-Mohammed, were recovered from the accused. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today said that India is on track to achieve $1 trillion export targets for the year, with nearly 15% of the annual exports already recorded in the first quarter. Addressing the Board of Trade meeting in New Delhi, Mr. Goyal noted that this will require goods exports to rise from about $440 billion to around $530 billion and services exports to increase from roughly $421 billion to about $470 billion.
3: Our aim is to grow in the current year. We were $863 billion last year. We want to grow to $1 trillion export this year. And to reach $1 trillion, our goods export will have to increase from $440 to about $530. $90 billion increase. That is 17% growth in goods. Services will have to grow from 421 to about 470. That is how we'll reach a trillion.
1: Later, speaking to the media on the sidelines of the meeting, Mr. Goyal said that free trade agreements with 38 developed countries have opened new opportunities for Indian exports and strengthened the country's access to global markets. Prime Minister Narendra Modi will be on a six-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand from Monday. Briefing media in New Delhi this evening, Secretary East in Ministry of External Affairs, Rudrendra Tandon, informed about Prime Minister's program in Indonesia from 6th to 8th of this month.
2: In Indonesia, the main place of engagement is the capital, Jakarta, but the Prime Minister will also be visiting the cultural center or historic city of Yogyakarta, where he will go to the Prambanan Temple complex, where India is planning to work with Indonesia, which is, by the way, a World Heritage Site designated by UNESCO. So India and Indonesia will be collaborating on the conservation work there.
1: The Secretary said during the second leg of his visit to Australia, Mr. Modi will participate in the third India-Australia annual summit in Melbourne.
2: In Melbourne, the Prime Minister will participate in the third India-Australia annual summit process. The conversations will also cover emerging areas of our bilateral relations, in particular the critical minerals, the cyber security domain, supply chain resilience, emerging technologies and so on.
1: On the third and last leg of his three-nation visit, Mr. Modi will be in New Zealand from 10th to 11th of July. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Prime Minister Modi will visit Rajasthan and Gujarat tomorrow. In Rajasthan, the Prime Minister will inaugurate the terminal building of Jodhpur Airport and launch the modified Uran scheme in Jodhpur. Thereafter, he will travel to Balotra to dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees in petrochemicals, urban transport, renewable energy and power transmission. During Gujarat visit tomorrow, in a major boost to the India Semiconductor Mission, the Prime Minister will inaugurate the CG Semi-Outsourced Semiconductor Assembly and Test Facility at Sanand. The Defence Acquisition Council has approved capital acquisition proposals worth 52,000 crore rupees to enhance combat readiness of defence forces. Our correspondent gives us the details.
4: The proposals approved under the chairmanship of Defence Minister Rajnath Singh will enhance the combat capabilities of the Army, Navy and the Air Force. The approval has been given for the procurement of anti-unmanned aerial vehicles, electronic warfare system Akash Tarang for the Indian Army to provide effective anti-UAV protection to the Army formations. The Council has also approved procurement of man-portable anti-tank guided missile systems, medium-range surface-to-air missile weapon system and jet-based kamikaze drone system. For the Indian Navy, the approval was given for the procurement of multi-influence ground mine, naval shipborne unmanned aerial system and the setting up of land-based testing facility for electric propulsion system. For the Indian Air Force, the approval was accorded for the procurement of fixed wing based high altitude pseudo satellite with Dipendra Kumar, Suparna Saikya, Akashvani News, Delhi.
1: Union Home Minister Amit Shah and Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today reviewed the situation regarding below normal rainfall and its impact in certain parts of the country due to El Nino. During the meeting, Mr. Shah said that the government is continuously monitoring the situation regarding below normal rainfall and potential drought conditions in certain parts of the country due to El Nino. He directed the Ministry of Agriculture and all related ministries to remain vigilant and coordinate with state governments to advise farmers on the appropriate crops to sow. Mr. Chauhan has directed the constitution of a high-level expert committee under the Indian Council of Agricultural Research to examine the challenges being faced by Totapuri mango growers in Andhra Pradesh. The decision follows the Union Minister's recent visit to Andhra Pradesh, during which farmers informed him decline in the prices of mango variety, which is cultivated extensively for the processing industry. Ministry of Panchayati Raj organized a national workshop of state Panchayati Raj ministers in New Delhi today to deliberate on the recommendations of the 16th Finance Commission. Talking to the media, Union Minister of Panchayati Raj Rajiv Ranjan Singh said the 16th Finance Commission has proposed 80% basic grants for panchayats and 20% performance-based grants. The ministry said that 2.76 lakh rural local bodies are covered under the recommendations of the 16th Finance Commission. Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav has directed ministry officials to summon Meta on the matter of Instagram ads promoting child sexual abuse material in India. The ministry will seek explanation from Meta on the issue. Earlier today, a team from Meta met Ministry of Electronics and IT officials following the notice summoning them on the issue of rollout of the usernames feature on WhatsApp in India. Sources said ministry officials sensitized them about the government's concern relating to the feature. They said as the timeline for furnishing the detailed explanation on the usernames feature is for 3 days, Meta will submit their final reply as per the schedule. The Ministry of Information and Broadcasting has directed the Broadcast Audience Research Council to stop publishing television ratings across both news and non-news genres until its license is renewed under the Television Ratings Policy 2026. The government has ordered the removal of the BAT BMS, Epoch iION, and Losigy apps from the Google Play Store and Apple App Store over security concerns. The action followed after allegations that the applications were being used to remotely disable e-vehicles, including e-rickshaws. Ukrainian President Volodymyr Zelensky today called for protection of Ukraine's skies following the overnight Russian strikes at various parts of the country. 30 people were reportedly killed and around 100 injured in these strikes. In a social media post, the Ukrainian president shared visuals of the aftermath of the Russian strikes in the capital city of Kyiv as emergency and rescue operations are underway. Mr. Zelensky accused Russia of committing a war crime. Russia's defense ministry said in a statement that the bombardment was in response to Ukraine's long-range strikes on its civilian infrastructure. France has reported a sharp rise in deaths during the hottest week of last month's record-breaking heat wave. According to Public Health France, nearly 9,000 deaths were recorded between June 22nd and 28th, about 29% higher than the previous week, indicating at least 2,000 additional deaths. The agency said the figures remain incomplete and the final toll is expected to be higher. Authorities reported significant increases in deaths at private homes, hospitals and care homes, with the Paris region recording the steepest rise. Back home, the southwest monsoon has further advanced into some more parts of Gujarat, Rajasthan and Haryana and remaining parts of Madhya Pradesh today. The IMD has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Gujarat, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, Odisha and West Madhya Pradesh for tomorrow. Meanwhile, heavy rain continued in several parts of Maharashtra today, affecting normal life and disrupting road connectivity in many districts. More from our Mumbai correspondent.
5: Today, several parts of Maharashtra received rainfall, with coastal areas seeing highest amount of rains. Water level rose in rivers of districts of Raigad, Ratnagiri, Sindhudurg and also in Kolhapur. According to IMD, rainfall is expected to intensify in the state from tomorrow till 7th July. Heavy to very heavy rain is likely at several places, while isolated areas over Konkan and the adjoining Ghat regions of Maharashtra may receive extremely heavy rain. Thunderstorms are also likely over parts of Madhya Maharashtra, Marathwada and Vidarbha. The IMD has advised fishermen not to venture into the sea till July 7th due to winds and rough sea conditions. Sangeeta Godbole, Akashwani News, Mumbai.
1: On to sports. In the FIFA World Cup, Australia will take on Egypt in a round of 32 match at Arlington in US tonight. In other round of 32 matches, Argentina will face Cabo Verde at Miami Gardens, while Colombia will clash with Ghana at Kansas City Stadium tomorrow morning. In the Wimbledon Tennis Championships, American Jessica Pegula and Naomi Osaka of Japan have reached the round of 16 in women's singles. Osaka defeated Daria Kasatkina 6-1, 6-3 in just 65 minutes in round of 32 match. Jessica dominated Spain's Buzas Maniero in a 6-1, 6-3 victory. In men's singles, third round of matches, world number one Jannik Sinner is currently facing US player Jensen Brooksby, while Daniil Medvedev is taking on Jan Lennard Struff of Germany. In another third-round fixture, Serbian Novak Djokovic is taking on Arthur Rinconesh of France. Benchmark domestic equity indices ended with modest gains today, extending their rising streak for the third straight session. The Sensex rose 262 points to close at 77,764. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government says Indus Waters Treaty remains suspended. Pakistan must renounce support to cross-border terrorism. India on track to achieve $1 trillion export target this year, says Commerce Minister Piyush Goyal. Prime Minister Narendra Modi to visit Indonesia, Australia and New Zealand on a six-day tour beginning Monday. Defence Acquisition Council clears procurement proposals worth 52,000 crore rupees to enhance combat readiness. Government to seek explanation from Meta on Instagram ads promoting child sexual abuse. France reports nearly 9,000 deaths during record-breaking heat wave last week. And in FIFA World Cup, Australia to take on Egypt in a round of 32 match at Arlington in US tonight. That is all in the news at 9. Good night.
6: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। हुकूमत ने कहा है कि सिंध आबी मुआहिदा मुअत्तल रहेगा। पाकिस्तान को सरहद पार की दहशतगर्दी की हिमायत खत्म करना होगी। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 खरब मालियत की बरामदात के हदफ को हासिल करने की राह पर गामजन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर के रोज से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 6 रोजा दौरा करेंगे। दिफाई साजो सामान की हुसूलियाबी की कौंसिल ने जंगी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए मालियत की खरीदारी की तजावीज को मंजूरी दी है। हुकूमत ने बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल को फरोग देने वाले इंस्टाग्राम एड से मुतालिक मेटा से वजाहत तलब की है। फ्रांस ने गुज़श्ता हफ्ते रिकॉर्ड तोड़ने वाली गर्म लहर के दौरान तकरीबन 9,000 अमवात की खबर दी है। और फीफा आलमी कप में आज रात अमरीका के आर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला राउंड ऑफ 32 के एक मैच में मिस्र से होगा। अब खबरें तफसील से। सरकार ने एक बार फिर इस बात का इरादा किया है कि पाकिस्तान की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी की मुसलसल सरपरस्ती के सबब सिंध आबी मुआहिदा मुअत्तल रहेगा। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंध आबी मुआहिदे पर भारत का मौकिफ अटल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हमेशा के लिए और मोतबर तौर पर सरहद पार दहशतगर्दी की हिमायत तर्क कर देनी चाहिए। तीस्ता नदी के जामे बंदोबस्त और बहाली के मंसूबे पर जनाब जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में मंसूबों के लिए भारत की तरक्याती इमदाद बाहमी तौर पर मुत्तफ़िका रोडमैप पर मबनी है, जिसका बाकायदगी के साथ जायजा लिया जाता है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन की बरामदात के हदफ को हासिल करने की तरफ गामजन है। सालाना बरामदात की 15% बरामदात पहली सहमाही में ही दर्ज की जा चुकी है। आज नई दिल्ली में तिजारती बोर्ड की मीटिंग में खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि इसके लिए अशिया की बरामदात को $440 बिलियन से तकरीबन $530 बिलियन जबकि खिदमात की बरामदात को तकरीबन $421 बिलियन से तकरीबन $470 बिलियन तक बढ़ाने की जरूरत है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत की बरामदात से मुतालिक हिकमत अमली मजबूत ज्यादा जामिया नुक्ता नजर पर मबनी है, जिसमें हर रियासत, जिला और तिजारती हलका को यकसा तौर पर अहमियत हासिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर के रूस से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 रोजा दौरे पर होंगे। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा में मशरकी उमूर के सेक्रेटरी रुदेंद्र टंडन ने बताया कि जनाब मोदी इस महीने की 6 से 8 तारीख तक इंडोनेशिया का दौरा करेंगे और उनकी असल मसरूफियात जकार्ता में होंगी। अलबत्ता जनाब मोदी वहां के एक सकाफती और तारीखी शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। जनाब टंडन ने कहा कि दौरे के दूसरे मरहले में वो इस महीने की 8 से 10 तारीख तक ऑस्ट्रेलिया में होंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मेलबर्न पहुंचेंगे, जहां वो तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तीन मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में जनाब मोदी इस महीने की 10 से 11 तारीख तक न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे। मशरकी उमूर के सेक्रेटरी ने कहा कि न्यूजीलैंड का उनका दौरा 40 वर्षों में किसी भारतीय वजीर आजम का पहला दौरा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात का दौरा करेंगे। राजस्थान के दौरे में वजीर आजम जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे और नजर सानी शुदा उड़ान स्कीम का भी आगाज करेंगे। इसके बाद वो राजस्थान के बालोतरा जाएंगे, जहां वो तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रुपए की मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। कल गुजरात के दौरे के दौरान भारत के सेमी कंडक्टर मिशन के जिम्न में एक अहम इकदाम में वजीर आजम सनांद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड سیمی کنڈکٹر کے کل پرزوں کی ترتیب اور تجرباتی مرکز او ایس اے ٹی کا افتتاح کریں گے. یہ پروجیکٹ انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن کے تحت منظور شدہ ابتدائی چار پروجیکٹوں میں شامل ہیں جن پر 7,500 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کی گئی ہے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ صحافت کو سچائی، دیانتداری اور اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ معیارات کے مطابق کام کرنا چاہیے. نئی دلی میں آرگنائزرز ویکلی کے 80ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ جمہوریت اس وقت پروان چڑھتی ہے جب پریس اپنی ساکھ برقرار رکھتے ہوئے عوام کو باخبر رکھنے کا کام کرتا ہے، سوال اٹھاتا ہے اور باشعور عوامی مباحثے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج ایلنینو کی وجہ سے ملک کے کچھ حصوں میں معمول سے کم بارش اور اس کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کی. میٹنگ کے دوران جناب شاہ نے کہا کہ حکومت ایلنینو کی وجہ سے ملک کے بعض حصوں میں معمول سے کم بارش اور ممکنہ خشک سالی کی صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے. انہوں نے وزارت زراعت اور تمام متعلقہ وزارتوں کو چوکس رہنے اور ریاستی حکومت کے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے کہا ہے تاکہ کسانوں کو مناسب فصلوں کے بارے میں مشورہ دیا جا سکے. دفاعی ساز و سامان کی حصولیابی کی کونسل ڈی ایس سی نے دفاعی افواج کی جنگ کی تیاری کو بڑھانے کے لیے 52,000 کروڑ روپے مالیت کی کیپٹل حصولیابی کی تجاویز کو منظوری دے دی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
7: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی صدارت میں منظور شدہ تجاویز فوج، بحریہ اور فضائیہ کی حربہ بندی کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے گی. بھارتی فوج کے لیے اینٹی انمینڈ ایریل وہیکلز الیکٹرانک وارفیئر سسٹم آکاش ترنگ کی خریداری کے لیے منظوری دی گئی ہے جو فوج کی صف بندیوں کو مؤثر اینٹی یو اے وی تحفظ فراہم کرے گا. کونسل نے مین پورٹیبل ٹینک مخالف گائیڈڈ میزائل نظام، درمیانی دوری تک زمین سے فضا میں وار کرنے والے میزائل ہتھیاروں کے نظام، بہت کم دوری تک وار کرنے والے فضائی دفاعی نظام، ٹینکوں کے لیے فعال تحفظاتی نظام اور جیٹ بیسڈ کامیکازے ڈرون نظام کی خریداری کو بھی منظوری دی ہے. بھارتی بحریہ کے لیے ملٹی انفلوئنس گراؤنڈ مائن، نیول شپ بون انمینڈ ایریل نظام کی خریداری اور الیکٹرک پروپلجن نظام کے لیے زمینی ٹیسٹنگ سہولت کے قیام کی منظوری دی گئی ہے. ادھر بھارتی فضائیہ کے لیے فکسڈ ونگ بیسڈ ہائی آلٹیٹیوڈ سیوڈو سیٹلائٹ کی خریداری کی منظوری دی گئی ہے جو بھارتی فضائیہ کے لیے مستقل انٹیلیجنس، نگرانی، مواصلات اور ریموٹ سینسنگ کے کام انجام دے گا. آکاشوانی دلی سے سپرنا سائکیہ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان.
6: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. میٹا کی ایک ٹیم نے آج الیکٹرانکس اور آئی ٹی کی وزارت کے حکام کے ساتھ میٹنگ کی. یہ میٹنگ بھارت میں واٹس ایپ پر یوزر نیمز فیچر کے رول آؤٹ کے معاملے پر انہیں سمن نوٹس بھیجنے کے بعد ہوئی. ذرائع نے بتایا کہ وزارت کے حکام نے اس فیچر سے متعلق سرکار کی تشویش کے بارے میں انہیں آگاہ کیا. ذرائع نے مزید کہا کہ یوزر نیمز فیچر سے متعلق تفصیلی وضاحت پیش کرنے کے لیے وقت کی حد 3 دن دی گئی ہے، اس لیے میٹا مقررہ وقت کے مطابق اپنا حتمی جواب پیش کرے گا. اسی دوران ذرائع نے یہ بھی کہا کہ الیکٹرانکس اور آئی ٹی کے وزیر اشونی ویشنو نے وزارت کے حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ انسٹاگرام کے ان ایڈز کے معاملے پر میٹا کو سمن بھیجیں جن میں بھارت میں بچوں کے جنسی استحصال کے مواد کو فروغ دیا جا رہا ہے. وزارت اس معاملے پر میٹا سے وضاحت طلب کرے گی. حکومت نے گوگل پلے سٹور اور ایپل ایپ سٹور سے بی اے ٹی، بی ایم ایس، ایپوکائن اور لاسیجی ایپس ہٹانے کے احکامات جاری کیے ہیں. یہ اقدام سیکیورٹی کے مد نظر کیا گیا ہے. یہ قدم ان الزامات کے بعد اٹھایا گیا ہے کہ ان اپلیکیشنز کو ای رکشہ سمیت ای وہیکلز کو ریموٹ کے ذریعے ناکارہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. اطلاعات و نشریات کی وزارت نے براڈ کاسٹ آڈینس تحقیقاتی کونسل بی اے آر سی کو نیوز اور غیر نیوز دونوں طرح کے پروگراموں میں اس وقت تک ٹیلی ویژن ریٹنگز کی اشاعت کو روکنے کی ہدایت دی ہے جب تک کہ ٹیلی ویژن ریٹنگز پالیسی 2026 کے تحت اس کے لائسنس کی تجدید نہیں ہو جاتی. ناگالینڈ کے وزیر اعلی نیفیو ریو نے آج کوہیما میں کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کے 16 پروجیکٹوں کا ورچوئل وسیلے سے افتتاح کیا. इनमें खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत चार और रियासती फंड से चलने वाले 12 प्रोजेक्ट शामिल हैं। वजीर आला रियो ने सोशल मीडिया पर कहा कि रियासती हुकूमत ने मयारी बुनियादी ढांचा तैयार करके और आलमी मयार की तरबियती सहूलियात फराहम करके खेलों के शोबे को तब्दील करने की खातिर एक तवील मुद्दती हिकमत अमली तैयार की है, जिससे खिलाड़ियों को बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने में मदद मिलेगी और नागालैंड और मुल्क का नाम रोशन होगा। पंचायत राज की वजारत ने 16वें मालियाती कमीशन की सिफारिशात पर तबादला ख्याल करने की गरज से आज नई दिल्ली में रियासती पंचायत राज वुजरा की एक कौमी वर्कशॉप का इनेकाद किया। मीडिया से बातचीत करते हुए पंचायत राज के मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह ललन सिंह ने कहा कि 16वें मालियाती कमीशन ने पंचायतों के लिए 80% बुनियादी ग्रांट्स और 20% कारकर्दगी पर मबनी ग्रांट्स की तजवीज पेश की है। वजारत ने कहा कि कमीशन की सिफारिशात के तहत 276,000 देही बल्दियाती इदारों का इहाता किया गया है।
8: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
6: अमली अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत का मुकम्मल सरकारी नुक्ता नजर मुतनवे इनफरादी और इदाराजाती सलाहियतों को यकजा करने पर जोर देता है, जहां इदारे और पेशावर अफराद मुश्तरका कौमी मकासद के लिए अपनी कुव्वत और महारत के साथ तआवुन कर रहे हैं। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तूतापरी आम के किसानों को दरपेश चैलेंजों का मुताला करने के लिए ज़रई तहकीक की भारतीय कौंसिल के तहत एक आला सतही माहिरीन की कमेटी तश्कील देने की हिदायत की है। ये फैसला मरकजी वजीर के आंध्र प्रदेश के हालिया दौरे के बाद किया गया है, जहाँ किसानों ने हालिया महीनों में तूतापरी आम की कीमतों में नुमाया कमी के बारे में उन्हें मुतला किया था। फ्रांस ने पिछले महीने की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहर के गर्म तरीन हफ्ते के दौरान होने वाली अमवात में तेजी के साथ इजाफे की खबर दी है। पब्लिक हेल्थ फ्रांस के मुताबिक 22 से 28 जून के दरमियान तकरीबन 9,000 अमवात रिकॉर्ड की गई। यह तादाद गुजशत हफ्ते के मुकाबले में तकरीबन 29% ज्यादा है, जिनसे कम अज कम 2,000 इजाफी अमवात का एंडिया मिलता है। एजेंसी ने कहा कि आदादोशुमार नामुकम्मल हैं और तवक्को है कि हतमी तादाद इससे कहीं ज्यादा होगी। पानी की कमी, इख्तलाज कल्ब, गुर्दे की बीमारियों और दिल से ताल्लुक रखने वाली दीगर बीमारियों में मुबतला मरीज बड़ी तादाद में अस्पताल पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रात में किए गए हमलों के बाद यूक्रेन की फजाई हदूद के तहफ्फुज़ पर जोर दिया है। खबर है कि इन हमलों में 30 अफराद हलाक और तकरीबन 100 जख्मी हो गए थे। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में यूक्रेन के सदर ने राजधानी कीफ में रूसी हमलों से होने वाले नुकसानात की तस्वीर शेयर की, जबकि हंगामी और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। रूस की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि बमबारी उसके शहरी बुनियादी ढांचों पर यूक्रेन के तवील दूरी से किए जाने वाले हमलों में जवाबी तौर पर की गई। फीफा वर्ल्ड कप में प्री क्वार्टर फाइनल में आज रात अमरीका के आर्लिंगटन शहर में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल सुबह मियामी गार्डन्स में अर्जेंटीना का मुकाबला काबोवर्डी से और कंसास सिटी स्टेडियम में कोलंबिया का मुकाबला घाना से होगा। स्विट्जरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, अमरीका, इंग्लैंड, मैक्सिको, फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मराकश, ब्राजील और पैराग्वे पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज सुबह प्री क्वार्टर फाइनल के मुकाबलों में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 जबकि पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से शिकस्त दी। स्पेन ने अमेरिका के लॉस एंजलिस स्टेडियम में ऑस्ट्रिया को 3-0 से हरा दिया। गुजरात एटीएस ने कलदम दहशतगर्द तंजीम से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। ये सभी पाकिस्तानी हैंडलर्स अब्दुल्ला और मोहम्मद उमर के साथ रابطे में थे। ये अफराद दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद के लिटरेचर का गुजराती जबान में तर्जुमा करने और उसके नजरिए को फैलाने का काम कर रहे थे। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। हुकूमत ने कहा है कि सिंध आबी मुआहिदा मुअत्तल रहेगा, पाकिस्तान को सरहद पार की दहशतगर्दी की हिमायत खत्म करना होगी। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 खरब मालियत की बरामदात के हदफ को हासिल करने की राह पर गामजन है। وزیر اعظم نریندر مودی پیر کے روز انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کا 6 روزہ دورہ کریں گے. دفاعی ساز و سامان کی حوصلہ یابی کی کونسل نے جنگی تیاری کو اور بہتر بنانے کے لیے 52,000 کروڑ روپے مالیت کی خریداری کی تجاویز کو منظوری دے دی ہے. اور فیفا عالمی کپ میں آج رات امریکہ کے آرلنگٹن میں آسٹریلیا کا مقابلہ راؤنڈ آف 32 کے ایک میچ میں مصر سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

ताइक्वांडो की वर्तमान स्थिति और संभावनाएं, विशेषज्ञ आलोक मिश्रा, भेंट करता है मनीष गजभिये।

खेल जगत कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष गजपी। श्रोता, मार्शल आर्ट की एक ऐसी विधा जो लगभग 200 से ज्यादा देशों में प्रचलित है एवं खेली जाती है, इसमें दो खिलाड़ी आपस में एक दूसरे पर न सिर्फ प्रहार करते हैं बल्कि स्वयं की आत्मरक्षा भी कर अपनी क्षमता का परिचय देते हैं। इस खेल में एकाग्रता में कुशल होने के साथ साथ फिटनेस, मुकाबला दर्शन और आत्मरक्षा की समझ होना भी बेहद आवश्यक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पारंपरिक कोरियाई मार्शल आर्ट ताइक्वांडो की, जो भारत में काफी लोकप्रिय है और इसको खेलने वालों की तादाद भी काफी ज्यादा है। ताइक्वांडो की वर्तमान स्थिति और संभावनाएं विषय पर बातचीत के लिए हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है राष्ट्रीय खेलों के स्वर्ण पदक विजेता एवं वर्ल्ड ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके डॉक्टर आलोक मिश्रा को।

0: आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: आलोक जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे ताइक्वांडो के बारे में। ताइक्वांडो क्या है और इसे किस तरह से खेला जाता है?
1: ताइक्वांडो मार्शल आर्ट की एक विधा है जो कोरिया से प्रारंभ हुई।
0: जी,
1: ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के कंट्रीज हैं, वहीं मार्शल कलाओं का उद्भव और विकास हुआ है। और मूल रूप से ताइक्वांडो कोरियन कराटे से बोलते थे और कोरिया से ये फैली, तो ये कोरियन मार्शल आर्ट है। ये अन्य मार्शल आर्ट की तरह है लेकिन इसमें पैरों का उपयोग ज्यादा किया जाता है और ये एक स्पीड बेस्ड खेल है।
0: जी, और जैसे अगर हम मार्शल आर्ट की बात करें तो मार्शल आर्ट में कौन कौन सी खेल खेले जाते हैं और उनमें क्या भिन्नताएं होती है?
1: मार्शल कलाएं का उद्भव आत्मरक्षा के लिए हुआ और जैसा कि हमने इसका इतिहास में देखा है कि इसकी जड़ें भारत से ही आगे की तरफ बढ़ी हैं। एक बौद्ध धर्मा हुए जो भारत से बौद्ध भिक्षु आगे की तरफ बढ़े और उन्होंने चाइना से लेके फिर चाइना, जापान, कोरिया, अब ये नॉर्थ ईस्ट की कंट्रीज में आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये आत्मरक्षा की एक कला विकसित थी जिसे स्थानीय जो कलाएं थी उनके अनुरूप ढाल करके एक नया नाम दिया गया।
0: जी।
1: और जो अति लोकप्रिय है विश्व में उसमें जूडो है, कराटे, ताइक्वांडो, कुंगफू और भारत की कल्लरीपट्टू अति लोकप्रिय है।
0: जी, जी, जी, जी।
1: जो केरल में खेली जाती है।
0: हुँ.
1: और हम मार्शल कलाओं की जड़ों का इतिहास वहीं केरल से ही प्रारंभ करते हैं, उसी कल्लरीपट्टू से। और मार्शल कलाएं एक कला थी, एक अभ्यास के लिए थी, शारीरिक और आत्मिक उन्नति के लिए इसका उपयोग किया जाता था। लेकिन प्रायः कई मार्शल कलाएं लुप्त प्राय होने लगी तो उन्हें प्रतियोगिताओं में परिवर्तित किया गया, उन्हें ऐसे खेलों के रूप में ढाला गया।
0: जी जी जी जी जी। अगर हम बात करें तकनीक की तो इसमें किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है और इस खेल के नियम क्या है?
1: मार्शल कलाओं में जितने भी द्वंद्वात्मक खेल हैं
0: जी,
1: उनमें हम जानते हैं कि भार वर्ग के अनुसार कंपटीशन होता है, आयु वर्ग के अनुसार होता है और भाई वर्ग के अनुसार होता है, ताकि समान की समान के साथ प्रतियोगिता हो।
0: बिल्कुल।
1: तो ताइक्वांडो में जैसे कि मैंने बोला मार्शल कलाएं आत्मरक्षा की कला है और ये आत्मरक्षा के लिए हमारे पास दो महत्वपूर्ण अंग है जिनका उपयोग करता है मनुष्य। एक हाथ हो गए हमारे दोनों और एक ये दोनों पैर हो गए। सारी कलाओं में इन्हीं का उपयोग किस तरह किया जाता है इसी से आगे फैली। और ताइक्वांडो विशेषकर ये पैरों की कला है, इसे तीन कोरियन वर्ड से मिलकर बना है, ताई, क्वान, डो, किक, पंच और आर्ट। इट इज द आर्ट ऑफ किक एंड पंच, हाथ और पैर चलाने की कला है ये। और इसमें विशेषकर पैरों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है क्योंकि पैरों की लेंथ ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है, उसका इम्पैक्ट ज्यादा है। बाकियों से इसमें जो मुख्य प्रमुख चीज है वह है स्पीड और पावर।
0: जी,
1: इसमें रिएक्शन फोर्स है, कंसंट्रेशन है, बैलेंस है, ब्रीथ कंट्रोल है और मास का यूज है।
0: जी,
1: इसमें हम अपोनेंट की अटैक और डिफेंस की बजाय हर अटैक का एक डिफेंस करते हैं।
0: जी,
1: और जैसा पैरों का उपयोग है, अगर पैरों को ऊपर की तरफ मारा तो उसके ज्यादा अंक हैं, टर्न करके मारा तो उसके ज्यादा अंक हैं, स्टमक पे पेट पे मारा तो कम अंक हैं, और कमर के नीचे फाउल है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, इसमें पॉइंट डिडक्ट होते हैं।
0: जी, और ये कितने मिनट का गेम होता है?
1: ये दो दो मिनट के राउंड होते हैं।
0: जी, अब आलोक जी हम आपसे ये ताइक्वांडो की रैंक के बारे में जानना चाहेंगे। ताइक्वांडो की रैंक के हिसाब से बेल्ट का कलर निर्धारित किया गया है, इसके बारे में आप हमें बताएं।
1: मार्शल कलाओं में बेल्ट का बड़ा महत्व है और ऐसे ही ताइक्वांडो में भी बेल्ट, हम देखते हैं कि ज्यादातर मार्शल कलाओं की ड्रेस जो है वो व्हाइट रहती है।
0: बिल्कुल।
1: तो जैसा कि पहला इसी का सिंबल है कि व्हाइट मतलब पीस,
0: पीस,
1: और पहली बेल्ट जो वो पहन के आता है वो व्हाइट बेल्ट पहन के आता है, यानी कोरा कागज है। और फिर उसके बाद वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है तो इसे प्लांट के साथ रिलेट किया गया कि कोई प्लांट जब ग्रो करता है तो वो जब उसकी पत्तियां निकलती वो येलो रहती पीली, तो दूसरी बेल्ट हुई पीली, तीसरी हुई हरी, वो जो पत्तियां हैं जब थोड़ा और मैच्योर होती हैं तो वो हरा रंग लेती हैं, उसके बाद नीला, ब्लू बेल्ट, क्योंकि वो जो पेड़ है वो जो ग्रो कर रहा है टूवर्ड द स्काई और आसमान का कलर नीला है तो नीला, फिर उसके बाद लाल, लाल मतलब ये काफी सीख चुका है द डेंजर, और आखिरी में ब्लैक, मार्शल आर्ट का चैंपियन हो गया।
0: बिल्कुल,
1: मतलब वो कला में माहिर हो चुका है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो उसे ब्लैक बेल्ट, उसमें सारे कलर समाहित हो गए। तो ये शांति से प्रतीक होके आदमी की ग्रो की कला है।
0: जी।
1: और जितना ही आप अभ्यास से इस कला में महारत हासिल करते जाते हैं उतनी ही शालीनता और विनम्रता आप ओढ़ते जाते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक रैंक से दूसरे रैंक में खिलाड़ी कैसे प्रवेश पाता है और ब्लैक बेल्ट पाने में लगभग कितना समय लग जाता है?
1: दो तरीके की प्रतियोगिताएं होती हैं, एक जैसे कि फाइट होती है जो पॉइंट के आधार पे होती है, दूसरा कि सभी मार्शल कलाएं, क्योंकि ये कला है, इसमें अटैक और डिफेंस का एक सीक्वेंस है, एक्सरसाइजेस हैं, तो इन अटैक और डिफेंस के एक्सरसाइजेस के एक सीक्वेंस को बना

0: में उपयोग के साथ। सर अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि ताइक्वांडो खेलते वक्त किन चीजों की आवश्यकता होती है और जो पोशाक पहनी जाती है किसके बारे में भी आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: महत्वपूर्ण है क्योंकि कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, द्वंद्वात्मक खेल है, इसमें चोट लगने की संभावनाएं हैं, तो जितने प्रोटेक्टिव गार्ड्स हैं उनका उपयोग किया जाता है। खिलाड़ी चेस्ट गार्ड पहनते हैं, हेड गार्ड पहनते हैं, माउथ टीथ के लिए भी गम गार्ड शील लगाते हैं
0: जी,
1: और अपनी शिन के लिए भी प्रोटेक्टिव गार्ड लगाते हैं, और जैसे ड्रेस की बात मैंने आपसे कही कि सफेद ड्रेस पहनते हैं और रैंक के लिए वो अपनी बेल्ट पहनते हैं।
0: बिल्कुल। और अगर बात करें ताइक्वांडो की तो वर्तमान में भारत की स्थिति क्या है?
1: ताइक्वांडो की भारत में पिछले कई दशकों से काफी आगे प्रगति हुई है, इसमें मध्य प्रदेश की भी ताइक्वांडो बहुत आगे की तरफ बढ़ा है। लतिका भंडारी से लेके कई खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं
0: जी।
1: राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और थोड़ा ऊपर नीचे प्रदर्शनों में होता रहता है, लेकिन पिछले दशकों के मुकाबले अभी वर्तमान स्थिति में ताइक्वांडो खेल प्रदेश में भी आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहा है, और इसने बहुत बेहतरीन खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए हैं।
0: अब आलोक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सेल्फ डिफेंस के लिए कितना कारगर है ताइक्वांडो, खासकर महिलाओं के लिए?
1: जब भी हम किसी चीज को सीखते हैं तो शुरू में हम उसको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलते हैं, स्किल को छोटे छोटे भागों में सीखते हैं, और उसी भागों को जब जोड़ते हैं तो एक कॉम्प्लिकेटेड स्किल हम सीख जाते हैं अभ्यास के द्वारा। स्टार्ट विद स्मॉलेस्ट एंड प्रैक्टिस द इजीएस्ट से शुरू करते हैं। तो शुरू में जब हम कोई कौशल सीखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस कम रहता है, उसका कारण ये रहता है कि उसमें हमारी महारत नहीं है, हम उसे बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करते। जैसे जैसे अभ्यास के द्वारा एग्जीक्यूशन आने लगता है तो कॉन्फिडेंस आने लगता है।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि हम अटैक और डिफेंस की प्रक्रिया को सीख रहे हैं, तो स्पेशली जब कोई लड़की कोई महिला इसके सीखती है तो इंटरनली वो फील करती है कि उसने इस कौशलों को अब आत्मसात कर लिया है, आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सकता है। यह उसके आत्मशक्ति को बढ़ाता है, आत्मबल को बढ़ाता है। केवल किसी का हौसला इसलिए नहीं बढ़ा दिया जाएगा कि कुछ बातें और मोटिवेशनल स्पीच दे दी जाए, जब वो किसी चीज को करेगा और करके गुजरेगा और जब स्किल अटैक और डिफेंस की सीख लेगा तो कॉन्फिडेंट फील करेगा। और कॉन्फिडेंस का फिजिकल से ज्यादा मेंटल रिलेशन है।
0: बिल्कुल।
1: मानसिक दृढ़ता की जरूरत होती
0: जी,
1: है
0: जी, तो
1: और यह अभ्यास उसे शारीरिक रूप से सुदृढ़ बनाने के साथ ही कहीं ज्यादा मानसिक रूप से मजबूत बनाता
0: जी, है। बहुत ही अच्छी बात की आपने। अब कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन युवाओं को जो ताइक्वांडो में अपना करियर बनाना चाहते हैं?
1: ताइक्वांडो में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो अपना अभ्यास रखें और अभ्यास के साथ अपनी शिक्षा पर भी ध्यान
0: जी,
1: रखें
0: जी।
1: शारीरिक शिक्षा स्पोर्ट्स से रिलेटेड पाठ्यक्रमों से भी जुड़े रहें
0: जी,
1: और साथ में अपना अभ्यास जारी रखें क्योंकि अभ्यास के लिए बहुत समय की आवश्यकता है। खिलाड़ी के लिए वो सारी सुविधाएं, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे वो शोहरत से संबंधित हो, नेम फेम सारी चीजें हैं अगर आप टॉप लेवल तक पहुंचते हैं और देश और प्रदेश का नाम रोशन करते हैं।
0: बिल्कुल। आलोक जी, आप हमारे स्टूडियोज में आए और इतनी अच्छी बात आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: खेलों से जुड़ी हुई गतिविधियों की जानकारी के लिए सुनना ना भूले कार्यक्रम खेल जगत। होगी मुलाकात खेल जगत से जुड़ी हुई हस्तियों से।
3: 19 मई 2016 को मैंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे अपने देश का झंडा फहराया था।
4: जब मेरा गोल्ड मेडल आया तो मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे।
5: फ्लैग अपने शोल्डर्स पे लेना भी वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेरे लिए तो एक ड्रीम जैसे ही था।
6: मैंने बहुत छोटी एज से सेल करना स्टार्ट कर दिया था,
7: तो मुश्किल था वो सफ़र, पर उसके बाद से मैंने जो सही हुआ, फिर उसके बाद से जो मैंने पिकअप पकड़ा था, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा।
2: होगी खेलों से जुड़े हर पहलू पर बारीक नजर, तो जरूर सुने कार्यक्रम खेल जगत प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:30 आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इसी के साथ खेल जगत के आज के अंक से हमें इजाजत दीजिए, अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।

अभी आप खेल जगत में सुन रहे थे भेंट वार्ता, जिसका विषय था ताइक्वांडो की वर्तमान स्थिति और संभावनाएं। विशेषज्ञ थे आलोक मिश्रा, भेंटकर्ता था मनीष गजभिये।

धर्मात्मा फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ थी मुकेश कंचन की, गीतकार थे इंदिवर और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सोहनी महिवाल से।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब प्रस्तुत है क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।
1: यह आकाशवाणी है, प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत कार्यक्रम में आज रात हम प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध चाक्यर कूत कलाकार श्री मार्गी मधु और उनके साथ संगत की प्रस्तुति।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ चाक्यर कूत बाय श्री मार्गी मधु एंड पार्टी।
1: श्री मार्गी मधु कूडियाट्टम के अग्रणी कलाकारों में से एक है। कूडियाट्टम केरल की प्राचीन संस्कृत रंगमंच परंपरा है जिसे यूनेस्को ने मानवता की मौखिक एवं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की उत्कृष्ट कृति के रूप में मान्यता प्रदान की है। 19 मई 1966 को जन्मे मार्गी मधु पद्मश्री मूलिकुलम कोच्चुकुटन चाक्यार के पुत्र तथा पद्मभूषण अमनूर माधव चाक्यार के भांजे हैं। उन्होंने अमनूर माधव चाक्यार, मूलिकुलम कोच्चुकुटन चाक्यार, पी के नारायणन नंबियार और एम माधवनुन्नी जैसे महान आचार्यों के मार्गदर्शन में पारंपरिक गुरुकुल से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में उन्होंने लगभग 3 दशकों तक अध्यापन किया तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान में अतिथि अध्यापक के रूप में भी सेवाएं दी। कूडियाट्टम के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें संस्कृति राष्ट्रीय पुरस्कार, केरल कलामंडलम पुरस्कार, केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा प्रतिष्ठित केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में वे मूलिकुलम स्थित नेपथ्य कूडियाट्टम केंद्र के कलात्मक निदेशक के रूप में कार्यरत है।
2: श्री मार्गी मधु इज वन ऑफ द फॉरमोस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ कूडियाट्टम, द एंशिएंट सांस्कृत थिएटर ट्रेडिशन ऑफ केरला, रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज अ मास्टरपीस ऑफ ओरल एंड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। बोर्न ऑन 19 May 1966, he is a son and disciple of Padmashri Moorikulam Kochukuttan Chakyar and nephew and disciple of the legendary Padmabhushan Ammanur Madhava Chakyar. Trained under eminent masters including Ammanur Madhava Chakyar, Moorikulam Kochukuttan Chakyar, P.K. Narayanan Nambiar and M. Madhavanunni, he completed traditional Gurukula training. He has served for nearly 3 decades as lecturer and assistant professor in the Department of Theatre at Sri Shankaracharya University of Sanskrit. He has also served as guest faculty at the National School of Drama and Film and Television Institute of India. His contributions have been recognized with numerous honors, including the Sanskriti National Award, Kerala Kalamandalam Award, Kerala Sangeetha Nadaga Academy Award, and the prestigious Sangeet Nadaga Academy Award. He currently serves as Artistic Director of Moorikulam Nepathya Koodiyattam Center.
1: Margi Madhu Dwara Prastut Chakyar Kutka Katha Sandarbh Is Prakar Hai. Kiratam Rajanakar Melpatur Narayana Bhattadiri. Katha Sandarbh Divya Pashupatastr Ki Prapti Ke Liye पांडवों में अर्जुन भगवान शिव की कठोर तपस्या और आराधना करते हैं। अर्जुन के अहंकार का नाश करने के उद्देश्य से भगवान शिव किरात का वेश धारण कर उनके सामने प्रकट होते हैं। उसी समय अर्जुन का वध करने के लिए मूकासुर जंगली सुअर का रूप धारण करके आता है। अर्जुन और किरात रूपधारी भगवान शिव दोनों उसके ऊपर बाण चलाते हैं और उसका वध कर देते हैं। इसके बाद यह विवाद उत्पन्न होता है कि सुअर को किसने मारा। इसी विवाद के परिणाम स्वरूप अर्जुन और भगवान शिव के बीच युद्ध होता है।
2: We shall now present the story background of the Chakyar Kuta performed by Sri Margi Madhu. Kiratham, author, Melputtur Narayana Bhattadiri. Story context. In order to obtain the divine Pashupatastra, Arjuna performs intense penance and worships Lord Shiva. To rid Arjuna of his pride, Lord Shiva appears before him in the guise of a Kirata. At that time, the demon Mukasura, who has assumed the form of a wild boar, approaches to kill Arjuna. Both Arjuna and the hunter shoot the boar and kill it. A dispute then arises over who slew the animal, leading to a fierce battle between Arjuna and Lord Shiva in disguise.

0: श्रोताओं, आपने अभी श्री मार्गी मधु द्वारा प्रस्तुत चाक्यार्कूत सुना। कार्यक्रम का ये भाग आकाशवाणी त्रिशूर के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था।
1: डियर लिसनर्स, यू हैव जस्ट हर्ड द चाक्यार्कूत प्रेजेंटेड बाय श्री मार्गी मधु एंड पार्टी। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड इन द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी त्रिशूर।
0: क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत की अखिल भारतीय कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में हम आपके लिए श्री अमल एंटनी द्वारा प्रस्तुत मलयालम सुगम संगीत लेकर आए हैं। श्री अमल एंटनी एक पार्श्व गायक, संगीतकार, कोरल अरेंजर तथा वोकल कोच है। वे आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार भी है। भारतीय और पाश्चात्य संगीत परंपराओं में समान रूप से दक्ष अमल एंटनी ने विश्वविद्यालय युवा महोत्सव में सुगम संगीत श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2006 में वे गंधर्व संगीतम टेलीविजन रियलिटी शो के विजेता बने तथा उन्हें राज्य स्तर पर पी सुशीला पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक के रूप में सम्मानित किया गया।
1: Continuing with the national program of regional folk and light music, we now bring you Malayalam light vocal songs presented by Sri Amal Antony. Sri Amal Antony is a playback singer, music composer, choral arranger, and vocal coach. He is an A-grade artist of Akashwani. A gifted musician with accomplishments in both Indian and Western music traditions, Amal Antony was a national winner in light vocal music at the University Youth Festival in 2012. He also won the Gandharva Sangeetam television reality show in 2006 and received the Peace Sushila Award for Best Male Singer at the state level.
0: Aaj raat, Shri Amal Antony char sugam geet prastut kar rahe hai. In charyom geetom ke bol, Malayalam ke prasidh film geetkar एवं कवि श्री रफीक अहमद ने लिखे हैं। इन गीतों का संगीत सुप्रसिद्ध संगीतकार तथा भक्ति संगीत के क्षेत्र में विशेष रूप से ख्याति प्राप्त श्री टीएस राधाकृष्णन ने दिया है।
1: Tonight, श्री अमल एंटनी presents four light vocal songs. The lyrics of all songs have been written by श्री रफीक अहमद, the renowned Malayalam film lyricist and poet. The music has been composed by Sri T.S. Radhakrishnan, a noted music director who is especially acclaimed in the field of devotional music.
0: Sri Krishna aur Radha ka sambandh matra laukik prem nahi hai, balki wo jeevatma aur paramatma ke divya milan ka prateek hai. Aaiye, sabse pehle Radha Madhav ke prem ka sundar chitran karne wala ek geet.
1: The relationship between Sri Krishna and Radha is not merely a worldly romance. It symbolizes the divine union between the individual soul and the supreme being. Let us begin by listening to a song that beautifully portrays the love of Radha and Madhava.

0: प्रेम मनुष्य को सपनों आशाओं और आनंद की दुनिया में ले जाता है, वही प्रेम वियोग उसे आत्मचिंतन और विरह वेदना की ओर ले जाता है। आइए अगले गीत में विरह की वेदना से व्याकुल एक प्रेमी हृदय की भावनाओं को सुने।
1: While love leads a person into a world of dreams, hopes and joy, the loss of love takes one into the realm of introspection and the pain of separation. In the next song, let us listen to the yearning heart of a lover grieving in the anguish of separation.

प्रथम प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मन में अमित स्मृतियां रिच देता है। उसमें जिज्ञासा, सपने, आशाएं और निष्कलुष

0: भावना एम भरी होती है। इत्र की मधुर सुगंध की तरह प्रथम प्रेम की यह सुगंध अब इस गीत के माध्यम से वातावरण में फैल रही है। आइए सुनिए।
1: फर्स्ट लव इज एन एक्सपीरियंस दैट क्रिएट्स अनफॉरगेटेबल मेमोरीज इन द हार्ट। इट इज फिल्ड विद क्यूरियोसिटी, ड्रीम्स, होप्स एंड इनोसेंट इमोशंस। लाइक द लिंगरिंग फ्रेग्रेंस ऑफ अटर, द स्वीट सेंट ऑफ फर्स्ट लव नाउ फिल्स द एयर इन दिस सॉन्ग।

0: वृश्चिक मास की शीतल प्रभात में जब प्रकृति नवजीवन का श्रृंगार धारण करती है, तब फूलों से फूलों तक उड़ती तितलियां रंग बिरंगे सपनों का ताना बाना बुनती है। वे हमें भी सपने देखने और जीवन की सुंदर कल्पनाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करती है।
1: इन द कूल फ्रेशनेस ऑफ अ वृश्चिक डॉन एज ने

0: क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत की अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप श्री अमल एंटनी द्वारा प्रस्तुत मलयालम सुगम गीत सुन रहे थे। इन गीतों के बोल श्री रफीक अहमद ने लिखे थे तथा संगीत श्री टीएस राधाकृष्णन ने दिए थे। उनके साथ संगत कर रहे थे श्री विल्सन केएक्स कीबोर्ड, श्री बाबू वर्गीस रिथम पैड, श्री सीएनके मूर्ति बांसुरी तथा श्री सी श्री कुमार तबला। उसके साथ ही आज का क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का समापन होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी त्रिशूर केंद्र में रिकॉर्ड किया गया था। यह प्रसारण आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया।
1: इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक You were listening to a presentation of Malayalam Light Songs by Sri Amal Antony. The songs have been written by Sri Rafiq Ahmed and composed by Sri T.S. Radhakrishnan. He was accompanied by Sri Wilson K.X. on keyboard, Sri Babu Varghese on rhythm pad, Sri C.N.K. Murthy on flute, and Sri C. Sri Kumar on tabla. With this, We come to the end of today's national program of regional folk and light music. This program was recorded in the studios of Akashwani, Thrissur. This broadcast came to you from the Delhi station
2: of Akashwani Samachar Seva ke saath main Aparna Singh. भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
3: India's development assistance.
4: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
2: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
5: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
2: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट बीएमएस इपोक आईआईएन और लॉसिगी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जाँच जारी है और सरकार इस पर लगातार नज़र बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।